0: ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि रोज नित सवेरे योग की शिविर में आकर के आसन, प्राणायाम, बहुत सारे ऐसे आसन आप हम सभी मिलकर के एक साथ करते हैं। आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी लोग मिलकर के जो इस योग शिविर में शामिल हो रहे हैं, उनसे होने वाले लाभों को जान रहे हैं, उनसे होने वाले विषयों पर बैठ करके हम अब मनन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार है हमारे जीवन का। तो हम सभी को मिलकर के योग करना चाहिए, आसन, प्राणायाम सभी एक साथ मिलकर के यदि हम करते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति और संपूर्ण शरीर को ध्यान में रखते हुए ही हम आसन और योग को बताते हैं। आप सभी को एक और बात पता है कि इस समय जो कि 30 दिवसीय योग शिविर चल रही है, उसमें हर एक आसन, हर एक प्राणायाम के आगे एक शब्द की उत्पत्ति की जा रही है। उस शब्द का अर्थ जो है वो हम सभी लोगों को हम बताते हुए ही और उसका विस्तार रूप से अर्थ बताते हुए, उसकी उपयोगिता बताते हुए ही हम आसन की उपयोगिता बताते हैं। आज जैसा कि हम आज आपको आसन करवाएंगे, यानी हम सभी मिलकर के करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम। त्राटक आसन भी कहा जा सकता है और त्राटक प्राणायाम भी कह सकते हैं। उज्ज्वल के साथ साथ हम एक शब्द की उत्पत्ति और कर देते हैं त्राटक प्राणायाम में, जो कि है तिराक्ष। तिराक्ष का मतलब होता है जो दूरदर्शिता से देखता है, यानी कि बिना किसी निशाने के बात करना, बिना किसी निशाने के हम दूर दराज बैठे हुए एक तीर से अपने शब्दवादी वेण को करना, यानी कि शब्द वेदी बाण। तो तिराक्ष का मतलब भी यही हुआ कि बिना आंखों देखा। सेम उसी तरीके से उज्ज्वल, जो कि हमने अभी साथ में हम करने जा रहे हैं उज्ज्वल त्राटक प्राणायाम। दोनों में क्या अंतर है, हम सबसे पहले आज उसकी भी पुष्टि करेंगे। लेकिन त्राटक के आगे आज हमने एक शब्द को जोड़ा है जो कि है उज्ज्वल। उज्ज्वल जैसा कि नाम से ही आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वल मीन्स क्या होता है, यानी श्वेत, सफेद और हर एक रंग के साथ मिल जाने वाला रंग। श्वेत का असर हम सभी को पता है कि हम किसी भी रंग में अगर उसे मिला दे तो वह उसमें घुलकर अपना कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आज त्राटक प्रक्रिया में भी हम उज्ज्वल को कुछ इस तरह देखेंगे कि वह किस तरीके से अपना असर एक आसन प्राणायाम पर छोड़ जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उज्ज्वल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक प्राणायाम के साथ क्या है और क्यों है इसका महत्व, क्या हमने क्यों जोड़ा इस अर्थ को हम जानेंगे। सबसे पहले उज्ज्वल नाम का मतलब दिव्य, लिट, शानदार, आकर्षक, सनशाइन होता है। अधिकतर आपने देखा है कि हम अपने बच्चे का नाम उज्ज्वल जरूर से रखते हैं, क्योंकि उज्ज्वल का जो अर्थ है वो ही अपने आप में शानदार, आकर्षक होता है। कई मायने में हम देखते हैं कि उन लोगों का असर भी उसी नाम के साथ में होने लगता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि यह क्रिया विशेषण, और यदि आप किसी को प्रतिभाशाली बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वह चीज सीखने में तेज है। इसी तरीके से एक बुद्धिमान, चतुर, जानने वाला और अधिक सम्राटी शब्द भी हर एक शब्द के आगे आता है और उसका भी कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। उज्ज्वल त्राटक शब्द के आगे हम लोगों ने इसलिए जोड़ा क्योंकि त्राटक एक महत्वपूर्ण प्राणायाम और आसन है। त्राटक को हम कई रूपों में जानते हैं, एकादशी या फिर हम ये कह सकते हैं एक द्वादशी पर जब हम किसी एक को, किसी भी एक वस्तु को काफी देर तक निहारते रहना, देखते रहना, एक द्वशीय यानी कि त्राटक प्राणायाम। वह चीज कुछ भी हो सकती है, आप चाहें तो अपने घर में एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप मोमबत्ती पर कर सकते हैं, या आप अपने कमरे में बैठे हैं तो किसी भी तस्वीर को लेकर के भी हम त्राटक कर सकते हैं। त्राटक की प्रक्रिया, विधि, सावधानियां और होने वाले लाभ पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम

आपको बता दें कि त्राटक उज्जवल कैसे बना। उज्जवल का अर्थ अभी हमने आपको बताया, शानदार, सनशाइन, श्वेत और वह ऐसा रंग जो कि सभी में मिलकर एक रंग बनने वाला। आपने आंखों का रंग देखा है, यानी कि काला और सफेद। किसी की पुतलियां ब्राउन होती हैं, किसी की पुतलियां कत्थई होती हैं और किसी की नीली होती हैं। अब नीली पुतलियां किसकी हैं? ये तो आप बखूबी ही जान गए होंगे कि हम सभी के जुबा पर सिर्फ एक ही नाम आता है, जो कि है विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। तो आप समझ सकते हैं कि इन पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी, जैसे कहते हैं ना कि सागर के बीच में अगर एक नाव है और नाव के रंग अलग अलग हैं, लेकिन हमें सागर के रंग पर ही ज्यादातर हमारी दृष्टि रुक जाती है, जैसे कि श्वेत, मटमैला या फिर मिट्टी जैसा रंग। श्वेत यानी सफेद हमारी आंखें और हमारी पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी दृष्टि हमारी आंखों की एक श्वेत पर ही जाती है। उसके आसपास जो काला रंग यानी हमारी भौहें, हमारे आंखों के आसपास की पुतलियों का रंग भले ही भिन्न हो, लेकिन हमारी सबसे पहली दृष्टि सफेद और श्वेत पर ही जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि त्राटक स्थिति में जब हम करते हैं तो त्राटक आंखों से जुड़ करके आंखों से ही प्राणायाम है ये। आइए अब हम सभी मिलकर के त्राटक प्राणायाम की प्रक्रिया विधि को बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम, त्राटक को उज्जवल रूप से करना है, एक शानदार तरीके से, एक सनशाइन की तरीके से, जिस तरीके से हम किसी भी अवस्था में जा करके अपने उस प्राणायाम को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए त्राटक प्राणायाम की स्थिति में हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम किसी मैट या चद्दर बिछा करके किसी एक ऐसे हॉल में बैठ जाएंगे जहां पर अगर हम कोई भी, मान लीजिए, दिया जलाते हैं या फिर मोमबत्ती जलाते हैं, तो उससे होने वाले कुछ ऐसे प्रदूषण से हानि ना पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर के कुछ ऐसे एरिया में बैठ जाएं जहां हवा का आदान प्रदान ना हो, तो आप किसी भी अपने घर के कोने में या फिर घर के किसी ऐसे आंगन में बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमें एकाग्र चित होकर के ही बैठना है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम वातावरण को बनाते हैं और उसके बाद त्राटक की विधि बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम को करने के लिए हम किसी भी योगा मैट या फिर हम किसी साफ सुथरी चद्दर को बिछा करके बैठ जाएंगे। अगर आप सामूहिक रूप से त्राटक कर रही हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप एक सर्कल बना लें, यानी कि गोलाकार, क्योंकि हम जिस वस्तु को त्राटक बनाने जा रहे हैं वह सामूहिक रूप से अगर हम त्राटक कर रहे हैं तो सभी को एक ही दृष्टि में ले जाने के लिए वह सिद्ध साबित होगा। और यदि हम एकाकी कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो हम आराम से कहीं भी बैठ करके अपने घर में, यानी कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हम किसी भी वस्तु को त्राटक बनाते हैं तो वस्तुओं के नाम है, आप दिया ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं, आप किसी किताब को ले सकते हैं, आप किसी दीवार पर टंगी हुई सीनरी को ले सकते हैं, आप किसी मनुष्य को भी बैठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हम जब त्राटक करते हैं तो हमें एकाग्र चित होकर के बैठ जाना है। तो पहली विधि, सबसे पहला पॉइंट, कि हम अपने आप को यानी अपने मन को स्थिर करते हुए एकाग्र चित होकर के बैठ जाए। तत्पश्चात हम अपने मन की सारी वृत्तियों को शांत करते हुए ओम का उच्चारण 1 से 3 बार, तत्पश्चात हम यदि दिए की लौ को लेकर के त्राटक कर रही हैं, तो उस कमरे का जो भी वातावरण होगा वह इस तरीके से होना चाहिए जैसे पूरा अंधकार। अंधकार करने का मतलब ये है कि हमारी पूरी की पूरी दृष्टि जो है वह उस त्राटक की प्रक्रिया पर आएगी, यानी कि त्राटक की उस लौ पे आएगी। यदि आपने दिया लिया है तो हम दिए की लौ को देखेंगे, यदि आपने मोमबत्ती लिया है तो आप मोमबत्ती की लौ को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात त्राटक की यही होती है कि यदि हम अगर दिया और मोमबत्ती ले रहे हैं तो हमारे त्राटक का पूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हमने दिया जला लिया है और अपनी ही हाइट के हिसाब से आपको वह दिया रखना है या मोमबत्ती, यानी आप नीचे से कुछ भी आप डब्बा रख लें या फिर आप कुर्सी रख लें या फिर एक मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके बराबर, आंखों के बराबर ही वह त्राटक का वस्तु होनी चाहिए। चाहे आप रख सकते हैं दिया और चाहे आप मोमबत्ती,
आपकी सीध के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधे बिल्कुल अपनी गर्दन करनी है और उसी वस्तु को सीधे आपको देखना है, कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 1 से 1.5 मिनट। प्रारंभिक अवस्था में हम 1 से 1.5 मिनट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आसन प्राणायाम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, आंखों की पुतलियों में हल्की सी झुंझुनाहट। तो ये सारी परेशानियां जब आपको प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, तो हम प्रारंभिक अवस्था को 1 से 1.5 मिनट तक ही करते हैं। साथ ही साथ जब हमें इन सारी परेशानियों से जब हम निवृत्त होकर हम आगे की अवस्था में आ जाते हैं, तो हम अपना टाइम इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2.5 मिनट 3 मिनट बिना पलक झपकाए हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यानी कि हम अब आते हैं त्राटक की दूसरी विधि पर। एकाग्रचित होकर के सीधे हमें आंखें खोल करके बिना पलक झपकाए, यानी कि आप अपनी आंखों की पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाएंगे और सीधे आप उस मोमबत्ती को या दिए की लौ को देखते जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था जैसे आपकी 1.5 मिनट की पूरी हो जाती है, हाथों की हथेलियों में घर्षण करना है और अपनी आंखों पे चेहरे पे लगा करके आंखों को स्वतः ही बंद कर देना है। 30 सेकंड के बाद आंखें खोलने पर ही हम अपने कमरे की जो लाइट है उसे हम जलाएंगे। तुरंत ही आप उठ करके ये काम ना करें क्योंकि अभी आपने त्राटक किया हुआ है और उसके बाद में आप जाकर के अपने कमरे में रोशनी कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सवेरे और शाम को कर सकते हैं। आइए त्राटक प्रक्रिया के लाभ जान लेते हैं। छोटे बच्चों को आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं और छोटे बच्चों को चश्मा लगना आजकल एक आम बात सी हो गई है। 3 से 4 साल के बच्चों को भी हमने देखा है कि उन्हें उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। तो इसका सीधा कारण सिर्फ आंखों में ये इस प्रकार की कमजोरी नहीं हो सकती है, मोबाइल नहीं हो सकती है। कुछ बच्चों को जेनेटिक भी होता है, उनके माता पिता के द्वारा ही आंखों की कमजोरी मिलती है। ठीक वैसे ही यदि हम स्टार्टिंग से ही, हम प्रारंभिक अवस्था से ही हम अगर अपने बच्चों को इस तरीके से त्राटक करवाएं, तो चश्मा भी उतर सकता है। और दिन में 2 बार त्राटक अवस्था में जरूर से करें। इसके बाद में हम दूध का सेवन करें। साथ ही साथ में जब हम सवेरे उठें, तो अपनी आंखों में ठंडे पानी का छिनकार करें। ठंडे पानी के छिनकार से भी आंखों में होने वाली परेशानियां और साथ ही साथ जो कि आईएसवी की प्रॉब्लम होती है वह भी दूर होती है। आइए अब हम आपको बता दें इसकी सावधानियां। सावधानियां ये हैं कि हम किसी भी प्रकार में जब हम त्राटक करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सावधानी यही है कि हम मोमबत्ती या दिए की लौ को अपने बराबर रखें। इस तरीके से नहीं कि हमारी आंखें नीचे झुक करके देखें या फिर छत पर बिल्कुल ऊपर। आप अगर अपने कमरे में किसी तस्वीर को भी देख रहे हैं त्राटक के रूप में, तो भी बिल्कुल आंखों की सीध यानी आपकी नाक की सीध तक होना चाहिए। तो ये है उज्जवल प्राणायाम। तो आपने सुना उज्जवल त्राटक प्राणायाम हम सभी ने मिलकर के आज किया और इसका संपूर्ण लाभ हम सभी मिलकर के कर सकते हैं। जिनके भी घर छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें चश्मा लगा हुआ है, या हम बड़े भी हैं मोबाइल फोन्स आजकल यूज करते करते, टीवी ज्यादा देखते देखते, या फिर पढ़ाई ज्यादा झुक करके करने से भी, जो कि त्राटक अगर आप करेंगे और आईज वीक की समस्या होने लगती है, तो उज्जवल त्राटक करेंगे तो हमारी आंखें भी उज्जवल होंगी, साथ ही साथ हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। 30 दिवसीय योग शिविर में हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम त्राटक की अवस्था से वापस आने के बाद में हम सभी 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे सभी लोग मिलकर के। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियां जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि ये प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आए, यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे, पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हो या घुटनों में दर्द हो, तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और, जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है,
भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाश में वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज विश्व योग दिवस पर योगा एजुकेशन न्यू सीरीज रेडियो ज्ञान असली स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आसनों को बताते हुए अभ्यास भी कराएंगे। और आपको बता दें, इस अभ्यास को वीडियो फॉर्म में देखने के लिए रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर भी हम देख सकते हैं। तो आइए 8 आसनों के अभ्यास को हम एक साथ मिलकर करेंगे, जिसमें पहला है अधोमुख स्वासना, जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। सबसे पहले योगा मैट पर हम दोनों हाथ को नीचे करके खड़े हो जाएंगे। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आपको घुटनों के बल जमीन पर आ जाना है। दोनों हाथ जमीन पर टिके होते हैं। अब हाथों पर जोर डालते हुए दाएं पैर पर फिर बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाना है। कान हाथ के समांतर रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि समांतर रहेगी। हाथ के पंजों को और पैर की उंगलियों को प्रेशर करते हुए जितनी आपके हिप्स ऊपर जा सकते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हुए इस आसन को करेंगे। श्वास लेंगे मध्यम गति से, श्वास को छोड़ते हुए मध्यम गति से। इस मुद्रा में आपको छाती और कंधों पर अत्यधिक खिंचाव महसूस होगा। दृष्टि एक जगह समांतर केंद्रित करते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटते हुए घुटनों के बल आते हुए हाथों को घुटनों के पास ऊपर रखते हुए प्रारंभिक अवस्था में खड़े हो जाना है। तो ये था हमारा पहला आसन अधोमुख श्वासना, जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, जो कि है ऊर्ध्व मुख श्वासन, जिसे अपवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले ताड़ासन की स्थिति में आ जाना है। दोनों हाथ हमारे पैरों के समांतर रहेंगे। धीरे धीरे हमें घुटनों के बल जमीन पर नीचे बैठ जाना है। अपनी बाहों को शरीर की लंबाई के साथ सीधा रख के हाथों को जमीन से सटाकर, छाती को जमीन से लगाकर, हाथों पर वजन डालकर कंधों को ऊपर उठाएं और बाजुओं को सीधा करके श्वास लें अथवा श्वास को मध्यम गति से

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: झलक क्या दिखलाना है भाई, सीधे सीधे आ जा, सीधे सीधे आ जा। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग की स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और आज का शो थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल शो है आपके रेडियो 11.6 FM पर। और जिस तरह से कल वापस से बारिश और आंधी ने माहौल बनाया है, इस वक्त बड़ी ही ठंडी सी हवाएं जो है वो चल रही है और मुझे लगता है ये मौसम जो है सच में मौसम बदलने के अब आगाज़ सामने से दिखाता जा रहा है। और ज़रा सोचिए कि भाई जब इतना खूबसूरत सा मौसम बनता जाएगा तो सच में कहाँ पहुँचेगा। सो चलिए भाई, मौसम सरमा का हम ज़रूर इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे और इसी शो के ज़रिए भी करेंगे। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और अभी वक्त है एक थॉट को आप तक पहुंचा देने का, यानी थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट आप तक पहुंच जाए। सो आज का थॉट क्या है और आपसे क्या कहता है, चलिए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट क्या कहना चाह रहा है? दरअसल आज का थॉट जो है वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि दिल के पास अपने कारण होते हैं। क्या? दिल के पास अपने कारण होते हैं जिन्हें बुद्धि नहीं जानती है। वाओ, दिल के पास अपने कारण होते हैं जिन्हें बुद्धि नहीं जानती है। अब यहाँ कारण, बुद्धि, दिल, ये आखिर इनका कॉम्बिनेशन क्यों बन रहा है? चलिए बताते हैं आपको। दरअसल दिल की अपनी वजह होती हैं। सो कहते हैं ना कि जो चीज़ हम दिल से करते हैं वो हमको बड़ी ही प्यारी लगने लगती है, काफ़ी अलग सी, और ऑफकोर्स उसका जो अलगपन है वो हम सबको भाने लग जाता है, हम सबको पसंद आने लग जाता है। तो ये जो अलगपन है, ये जो भाना है, यही दिल की वजह होता है, बनता है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो इन कारणों को नहीं जानती। जैसे अब किसी को खुला आसमां देखना पसंद है, अब खुला आसमां देखना पसंद है तो पसंद है, दिल की अपनी वजह है, लेकिन बुद्धि क्या करेगी, क्यों देखना, क्या मिल जाएगा इससे, ऊपर क्या रखा है। अब आप सॉन्ग सुनते हैं, आपको पसंद आता है, आपको कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है जो आपको हील करता है, जो आपको बेहतर फील कराता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। अब वहाँ पे अगर आप बुद्धि को यूज़ करेंगे तो कहेगी क्यों, क्या मिल रहा है इस सॉन्ग से, क्या फ़ायदा है इस सॉन्ग का। तो मतलब ऐसे बहुत सारी बातें होती है जिनको जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में ही आएगा कि दिल के पास अपने कई सारे कारण होते हैं, कई सारी वजहें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ करना टाइम वेस्ट होता है। मुझे आप ये बताइए, अगर आपकी लाइफ से रिश्तों को निकाल दिया जाए, फील को निकाल दिया जाए, टेस्ट को निकाल दिया जाए, आपकी उन चीज़ों को निकाल दिया जाए जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, और सिर्फ काम करिए, सिर्फ काम करिए, सिर्फ आपके पास चीज़ें बनती हुई दिखाई दे, तो क्या वो लाइफ है? सच में वो लाइफ है? अच्छा, आप खुद ही समझ रहे हैं वो लाइफ नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको भी अंदाजा है वो आपकी लाइफ नहीं हो सकती है। दिल की अपनी हर चीज की वजह होती है। कोई भी चीज उसको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उसकी वजहें हैं। उसमें ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ज्यादा बुद्धि लगाएंगे वो चीजें अच्छी लगनी ही बंद हो जाएगी, और हम इतने ज्यादा बेजान हो जाएंगे, हम इतने ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाएंगे, हम एकदम मशीन की तरह काम करने लग जाएंगे कि लाइफ में जो वजह से इंसान इंसान है वो चीज़ें ही ख़त्म होने लग जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मशीनों की तरह जुटे रहेंगे, है ना। तो ये एक बात है। सो कभी कोई अगर कोई चीज़ बहुत छोटी सी बताता है कि उसको ये चीज़ बहुत पसंद है ऐसे, तो उसका मजाक बनाने की बजाय, उससे ये सवाल करने की बजाय, इसमें क्या ही है, बल्कि उसके एक आप क्यूरियस होकर ज़रूर पूछ सकते हैं कि वैसे इसमें सच में मैं ये जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ कि इसमें मिलता क्या है, मुझे जानना है। बस ये सवाल बहुत अच्छा हो सकता है, ना कि इसको ऐसे कहा जाए कि अरे इसमें क्या ही मिल जाता है, इसको क्या करते हो। तो किसको कहाँ क्या चीज़ पसंद आ रही है, वो किन चीज़ों से फील ले पा रहा है, वही जान सकता है। और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। इसीलिए थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि दिल के पास अपने कारण होते हैं जिन्हें बुद्धि नहीं जानती है। सो आपके लॉजिकल माइंड को नहीं पता है कि आपको ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है, और आपके दिल के किसी भी चीज़ के पीछे होने के कारण क्या है। आई होप कि अब हम कारण और दिल की चीज़ों को अलग समझेंगे, और बुद्धि को एक अलग तरह से, शायद तभी जब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी हमारे सामने ऐसी चीज़ों को होना लाजिम होगा जिनके बीच में हम फ़र्क कर पाएंगे और दोनों ही का फील ले पाएंगे। यानी जहां बुद्धि की सच में आवश्यकता होगी वहां बुद्धि लगेगी, अदरवाइज जहां हमको फ्रीली चीज़ों को करते जाना है, खुश रहना है, वहां दिल और उसके रीज़न हमारे साथ में है ही। तो चलिए भाई, दिल के अगर आपके पास अपने कारण हैं तो जाहिर है आपको भी सॉन्ग्स पसंद ज़रूर हैं, तो क्यों ना एक खूबसूरत सा गाना आपको भी सुना ही दिया जाए, आपकी ही मनपसंद का, आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। क्या ख्याल है?

0: सो भाई चलिए चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ जो कि आप भेजते हैं हमको रेडियो 11.6 FM से सुनते हुए चैट पर। और चैट पर क्या कुछ लिखा है आज की सुबह और आज के थॉट ऑफ द डे को लेकर के, चलिए आप सबको बताते हैं। लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अखान।

अंजी तो भाई फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अब जो है वो आपके मैसेजेस पढ़ने का टाइम है। आज की जो डेट है वो है 10 तारीख, यानी देखते ही देखते 10 तारीख हो गई हैं सच में। नहीं, यही तो हम सोच रहे थे कि आप देखें, आप नोटिस करते हैं कि नहीं आप करते हैं। फिलहाल दरअसल हम बता दें आपको कि बात यह है कि भाई आज जो है वो 8 तारीख है और महीना जो है वो 10वां है, राइट। चलिए, इन सारी चीज़ों के बीच में फिलहाल बढ़ते हैं अपने आज के मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि भाई मैसेजेस में क्या कुछ आया है। तो यस, सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो सुशील यादव जी के मैसेज से हो रही। सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात आपको भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आपका। और इसके बाद आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, आप लिखती हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। सुबह की हवा तुम्हारा नाम ले आए, दिल की प्यारी सी मुस्कान दे जाए, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि तुम्हें ज़िंदगी तुम पर फिदा हो जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच टू यू। एंड सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। फिर लिखती हैं कि आपकी मिष्टी आवाज़ रेडियो पर बहुत ज़्यादा मिष्टी लगती है सर, इंतज़ार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपको आवाज़ पसंद आती है, स्पेशली जब बात आती है रेडियो पर सुनने की। अनुष्का जी श्रावस्ती से हैं, हाउ आर यू, बढ़िया गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी ज़रूर अच्छी होंगी। प्रीति जी लिखती हैं बहराइच से, सर जी प्यारा सा सुप्रभात, आपको भी प्यारा सा सुप्रभात। एंड प्रीति जी ने बोला है मौसम की तरह बहुत ही प्यारा सा थॉट, दिल तो है दिल, दिल का क्या कहना, दिल है बड़ा मन चला, यस। एंड आशु जी ने भी थॉट को अप्रिशिएट किया है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, जो आपने अभी एक अपडेट दी है ये दरअसल बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा झटका है बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि नाना पाटेकर जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और आज सुबह ही जो है कुछ वक्त पहले उनकी डेथ हो गई है। नाना पाटेकर एक ऐसा बड़ा नाम जिनको न जाने कितने सारे लोगों ने कॉपी करके अपने करियर को बनाया, न जाने कितने सारे लोग अपनी बातों में नाना पाटेकर के डायलॉग्स यूज़ करके उसको और भी इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और न जाने कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नाना पाटेकर से जो है ले करके एक्टिंग की क्लासेस, एक्टिंग के गुर सीखे और उसके बाद आज वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो ऐसे दिग्गज अभिनेता का जाना सच में एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर माना जा रहा है, और बताया जा रहा है कि भाई उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और फिलहाल अगर एक का करियर की बात करें तो 100 से ज़्यादा फिल्म्स की है, 3 नेशनल है, 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी है, और साथ ही में कारगिल युद्ध में सेना के साथ भी रहे हैं नाना पाटेकर, जी हाँ। सो इनका जन्म जो हुआ था वो 1 जनवरी 1951 को हुआ था और इनका जो निधन हुआ है वो 8 अक्टूबर 2026 यानी आज ही के दिन हुआ है। इसके अलावा हम बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम बताने वाले हैं नाना पाटेकर जी के बारे में। सो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की तरफ से भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से, क्योंकि ऐसे सच में शख्सियत का मिल पाना, ऐसी शख्सियत का हो पाना किसी भी आर्ट की विधा में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और नाना पाटेकर हमेशा हमेशा हम सभी के दिलों में ज़िंदा रहने वाले हैं अपनी आर्ट्स की वजह से, अपनी बनाई गई मूवीज़, अपने डायलॉग्स और अपनी एक्टिंग की वजह से।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: सो दिग्गज अभिनेता कहलाने वाले नाना पाटेकर साहब का आज सुबह ही 75 साल की उम्र में जो है वो कार्डियक अरेस्ट आने से निधन हो गया है, और उन्हें गोवा में मौजूद अपने घर पर कार्डियक अटैक हुआ था। करीब 45 मिनट तक CPR दी गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी हाँ, मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि नाना पाटेकर सुबह 5:20 पर इनका निधन हुआ। उसके बाद मेडिको लीगल केस यानी MLC दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। जी हाँ, सो अगर करियर की बात करें तो करियर तो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि नाना पाटेकर कोई ऐसा नाम है जिसको किसी ने सुना ना हो या जिनके बारे में कोई जानकारी ही ना हो, राइट? फिर भी कुछ चीजों को हम जरूर आप तक जरूर साझा करना चाहेंगे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो नाना ने 100 से ज़्यादा फिल्में की है और 1989 की फिल्म परिंदा में नाना पाटेकर ने अन्ना का किरदार निभाया, जिसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। 1994 की बात करें तो क्रांतिवीर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 1996 की अग्नि साक्षी के लिए भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड मिला। इस तरह इन्हें करियर में 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए नाना पाटेकर को 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सो अपने लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने हिंदी के साथ में मराठी फिल्मों में भी ज़रूर काम किया। अगर एक नज़र में बताएं तो आपको इनका जन्म 1 जनवरी 1951 मुरुंड जंजीरा महाराष्ट्र में हुआ और पूरा जो नाम है वो है विश्वनाथ पाटेकर। ऑफकोर्स हम लोग नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। फादर दिनकर पाटेकर, माँ संजना बाई पाटेकर, पत्नी जो है वो है नीला कांति पाटेकर और बेटा मल्हार पाटेकर। एक बेटे के 2 साल की उम्र में ही चूंकि निधन हो चुका था, अभी एक बेटा है मल्हार पाटेकर। एजुकेशन की बात करें तो मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट अप्लाइड आर्ट्स से जो है इन्होंने एजुकेशन वहां से ली और फिल्मी करियर जो है वो 1978 में फिल्म गमन से फिल्मी सफ़र इनका शुरू हुआ। डायरेक्शन की बात करें तो प्रहार द फाइनल अटैक से इनके डायरेक्शन की शुरुआत हुई। पद्मश्री की बात करें तो 2013 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भाई बहुत सीरियस किरदार के लिए तो जाहिर सी बात है नाना पाटेकर को हम सब जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसा किरदार जिसने बहुत ज़्यादा हंसाया भी। क्या आपको याद है कि किस मूवी की हम बात कर रहे हैं, किस मूवी में नाना पाटेकर ने अपना बदला हुआ अंदाज दिखाया और वो मूवी आज तक इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है, आज तक उसके कई सारे अलग अलग सीन्स कट करके हमको वायरल वीडियोस में नज़र आते हैं या मीम्स में लोग यूज़ करते हैं। सो ऐसी कौन सी मूवी है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और नाना पाटेकर का बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप देखा? चलिए अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप भी टाइप करके चैट पर बता सकते हैं।

सो मैं नाना पाटेकर की बात कर रहा था और मैंने पूछा था कि कुछ ऐसी मूवी, कोई ऐसा सीन जो कि अभी लगातार मीम्स में भी लोग यूज़ करते हैं और उनसे उनके बदले हुए किरदार के बारे में कहीं ना कहीं हमने उनको जाना था। प्रीति जी ने बताया है नट, सम्राट और शक्तिशाली। बेशक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दोनों मूवीज़ में हमने देखने को मिला, चाहे नट सम्राट हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड शक्तिशाली में भी बहुत बेहतरीन अलग किरदार निभाया। लेकिन अगर अभी हम कॉमेडी मूवी की बात करें जिसमें बिल्कुल पहचान अलग करके रख दी और यंगस्टर्स के साथ में भी उन्होंने बहुत बखूबी सारे जो सीन्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से निभाए और आज भी याद किया जा रहा है, वो है 2007 में आई वेलकम। जी, सोदय शेट्टी बनकर के कॉमेडी में भी छाए रहे नाना पाटेकर। 2007 में आई फिल्म वेलकम में नाना पाटेकर ने गैंगस्टर उदय शेट्टी का किरदार निभाया और इस कॉमेडी रोल को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद इसके सीक्वल वेलकम बैक में भी उदय शेट्टी के किरदार में साफ नज़र आए थे नाना पाटेकर। सो फिल्म प्रहार के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उनको हम बता दें कि नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक में आर्मी मेजर की भूमिका निभाने के लिए भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ में सैन्य प्रशिक्षण लिया था और इस दौरान उन्हें करीब 3 साल तक ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नाना पाटेकर टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े और उन्हें मानद कैप्टन के रूप में कमीशन मिला। बाद में इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद तक सेवाएं दी और 2013 में रिटायर भी हो गया। इसके अलावा अगर हम फेमस फिल्मों की बात करें तो कोई एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी मूवी है जो कि बहुत ही लोगों के ज़रिए पसंद की गई, लेकिन फिर भी अगर हम नाम लें तो गमन है, आज की आवाज़, अंकुश, सलाम बॉम्बे, परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, शक्ति द पावर, अब तक 56, वेलकम, राजनीति, द अटैक ऑफ 26/11। सो इतनी सारी जो ऐसी मूवी हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस हुए नाना पाटेकर। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ भी थे। जी हाँ, शायद बहुत कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि नाना पाटेकर का सेना जुड़ाव 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी सामने आया। रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने तत्काल रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से स्पेशल परमिशन लेकर के करीब 2 से 3 हफ्ते तक, यानी 15 से 20 दिन तक सेना के साथ अग्रिम इलाकों में बिताए भी, और इस दौरान ये द्रास, लेह, कुपवाड़ा और सुपोर जैसे एरियाज़ में गए। रिपोर्ट्स में ये भी है बताया गया कि इन्होंने सेना के क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT के साथ भी वक्त बिताया है। सो नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के लिए हर इंसान को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेना के जवानों के प्रति उनका सम्मान कई मौके पर सामने आया और 2016 में इन्होंने कहा था कि उनके लिए देश सबसे पहले है और जवान ही देश के असली हीरो हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं तो आपको हम बता दें कि भाई नेशनल अवार्ड्स में परिंदा के लिए 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। क्रांतिवीर के लिए 1995 में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा आपको बता दें अग्नि साक्षी के लिए 1997 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और पद्मश्री सम्मान जो प्राप्त किया वो 2013 में मिला है। तो इतना कुछ मिला नाना पाटेकर को और आज फिलहाल वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हमेशा

अपने मूवीज़, अपने सीन्स, अपने डायलॉग्स, अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, अपनी एक्टिंग के चलते हमेशा हमारे बीच में रहने वाले हैं। और गीता श्रीवास्तव जी ने कहा है कि खामोशी था द म्यूज़िकल भी बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच सजेशन देने के लिए। एंड प्रीति जी लिखती हैं, हाँ वेलकम बैक, मैंने देखी है, बहुत हंसी वाली मूवी थी। हाँ बेशक। सो ऐसे कैरेक्टर निभाना और उसके बाद इतनी बेहतरीन तरीके से करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ऑफ कोर्स दिग्गज ही अभिनेता है, यानी बड़े बड़े जो ज़बरदस्त लेजेंड एक्टर्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ही नाम नाना पाटेकर, जिनको हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन सुबह 5:20 के आसपास उनकी डेथ हुई है, उनके ही अपने गोवा यानी राज्य में जहाँ पर फ़िलहाल वो रह रहे थे। और कार्डियक अरेस्ट इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल चलिए चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस से आते हैं, आने के बाद बातचीत जारी रखने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी गोंडा अपडेट्स भी आज आपको मिलने वाली है।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9876 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: तो भाई चलिए, वक्त हो गया है आपको बताने का कि इस वक्त गोंडा अपडेट्स में क्या कुछ है जो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

तो आपको हम बता दें कि LBS PG कॉलेज में स्नातक पंचम सेमेस्टर बैक पेपर यानी विषम सेमेस्टर में परीक्षा आवेदन जो है वो बुधवार से शुरू हो गए हैं और स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद जो प्रवेश रसीद की छाया प्रति है समेत आवेदन की प्रति कॉलेज में जमा करनी होगी और कॉलेज में आवेदन 8 से 30 अक्टूबर तक हर वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा होंगे। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो बारिश, जलस्तर बढ़ने से और फसल ख़राब होने की, बाढ़ की, इन्हीं की अपडेट है। सो ज़िले में जो है कल दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया था और तेज़ आंधी के साथ बारिश भी शुरू हुई। तकरीबन 2 घंटे तक रुककर हुई बारिश में कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते भी जो हैं वो बंद हो गए और करनैलगंज में बिजली गिरने से एक महिला घायल भी हो गई हैं। वहीं बारिश से शहर और कस्बों की जो जल निकासी की व्यवस्था है वो भी प्रभावित हुई है और सड़कों पर पानी भर गया है। सो आपदा विशेषज्ञ ने बताया उनके हिसाब से बुध को नवाबगंज और मनकापुर क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हुई जिसे कुल्ले में कुल मिला करके 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि भाई बिजली आपूर्ति को लेकर के है, 113 दिन बाद भी 150 गांव की बिजली आपूर्ति अभी ठप है। ज़िले में बुधवार को आंधी और बारिश ने बिजली विभाग की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। करीब 13 दिन बाद भी 150 से ज़्यादा गांव में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इसी बीच दोपहर तक बाद तेज़ हवा और बारिश से कई जगह पेड़ और डालियां बिजली लाइनों पर गिर गईं जिससे कई एरियाज में आपूर्ति ठप हुई है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है 13 वेटलैंड को पहचान देने की और परिवेश को संवारने की बात। सो ज़िले की जो 13 वेटलैंड हैं उनको संरक्षण और उनके विकास को चिन्हित किया गया है। सो फिलहाल संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत चयनित इन वेटलैंड का कुल क्षेत्रफल 287.98 हेक्टेयर है। सो पहले चरण में इनकी भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा, इसके बाद संरक्षण और विकास की कार्य योजना तैयार होगी। DM ने बताया है कि वेटलैंड के आसपास के प्राकृतिक परिवेश को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा और प्रवासी पक्षियों के अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश होगी। संभावनाओं के हिसाब से पक्षी दर्शन और प्राकृतिक भ्रमण जैसे पर्यटन सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी। DFO ने बताया है कि वेटलैंड को नियमावली के हिसाब से पहचान दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके लिए संबंधित स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। सो कहाँ कहाँ होना है ये ऑफकोर्स आपको बताते हैं। तो जो एरियाज हैं वो है कोलर, टिकरी, तरफगंज, तेलियानी, उपाध्याय, पंडित कृपाल, गोंडा सदर, पूरे सबसुख, पंडित कृपाल, पटीत, टिकरी, मनकापुर, मोकलपुर, गोंडा सदर, ताजपुर, गोंडा सदर, टिकरिया, पंडित कृपाल, कोनगवा, इसके अलावा पंडित कृपाल, गोंडा सदर और भीटी पटकौली, देवरिया अलावल और पंडित कृपाल, मई दुबे, पूरे देवनाथ, टिकरी, पेरी पोखर, ये सभी जो एरियाज हैं वो 13 मिला करके सेलेक्ट किए गए हैं जहां के वेटलैंड को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन बढ़ाने को भी लेकर के काम किया जा रहा है। सो वेटलैंड के संरक्षण से इन प्राकृतिक क्षेत्रों में पक्षियों और बाकी जलीय जीवों के लिए बेहतर आवास डेवलप हो सकेगा। भविष्य में यहाँ पक्षी दर्शन, प्राकृतिक भ्रमण और पर्यटकों के लिए ज़रूरी सुविधाएं डेवलप करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और इससे प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं कि भाई अगली अपडेट क्या है। सो फिलहाल मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट बंद होने से मरीजों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में लगी लिफ्ट 12 दिन से बंद है। इससे बुज़ुर्ग जो हैं या दिव्यांग हैं या गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में परेशानी हो रही। कई मरीज रैंप के सहारे जा रहे हैं तो कुछ डॉक्टर्स को दिखाए बिना ही लौट रहे हैं। सो लिफ्ट ठीक करने को लेकर के अयोध्या और बहराइच से
टेक्निकल टीमें भी आई लेकिन समस्या दूर नहीं हो सकी। अब लिफ्ट लगाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। सो कल बुध को खरगुपुर के पटखौली निवासी कन्हैयालाल लिफ्ट के पास खड़े होकर के बटन दबाते मिले और उन्होंने बताया कि ऊपर उनके रिश्तेदार भर्ती हैं, पैर में दर्द होने की वजह से सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का सहारा लेना चाहते थे लेकिन बंद होने से परेशानी हो रही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर इन्वेस्ट करने और नौकरी के नाम पर साइबर ठगी से को लेकर के आ रही है। सो साइबर जागरूकता माह के तहत पुलिस ने भी बुध को टेलीग्राम के ज़रिए होने वाली साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया। ज़िले के 18 थानों में अभियान चला करके पुलिस ने फर्जी निवेश, नौकरी, क्रिप्टो और कस्टमर केयर के नाम पर होने वाली जो ठगी है उससे सावधान रहने की अपील की है। सो एसपी अभिषेक ने लोगों को अनजान इंसान या ग्रुप पर तत्काल भरोसा नहीं करने और शर्तिया या बहुत असामान्य मुनाफे के झांसे से बचने और अनजान एपीके और संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी है। सो ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और बैंक से रिलेटेड गोपनीय जानकारी किसी से साझा ना करने और टेलीग्राम पर टू स्टेप वेरिफिकेशन सक्रिय रखने को कहा है। सो संदिग्ध अकाउंट या ग्रुप को ब्लॉक करने, रिपोर्ट करने की भी अपील की गई है। बताया गया है कि साइबर ठगी होने पर तत्काल जो इसका नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930 इस पर ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि ठगी की जो रकम है उसको होल्ड कराने पर कोशिश की जा सके। सो ये जो है अगली अपडेट थी जो कि आप तक हमने पहुंचा दी है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई त्योहारों को लेकर के फ़िलहाल तैयारियां शुरू हो गई है। सो दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को जो है तेज़ कर दिया है और कल बुध को पुलिस लाइन सभागार में एसपी ने सैनिक सम्मेलन और अपराध गोष्ठी की थानावार कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की थी। पुलिस बल तैनात करने और लगातार गश्त करने के निर्देश भी फिलहाल दिए गए हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें अगली अपडेट की तरफ स्पोर्ट्स जुड़ी हुई आ रही है। सो बहराइच और निंदनी नगर में शतरंज ने बाजी मारी है। सो माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में बुध को अंतर महाविद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला और पुरुष वर्ग में हुई प्रतियोगिता में 5 महाविद्यालयों के 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शानदार प्रदर्शन करते हुए KDC बहराइच और नंदिनी नगर PG कॉलेज की टीमों ने अपने अपने वर्ग में विजेता बन करके खिताब हासिल किया। इसके बाद लेकर के चलते हैं ऑफ कोर्स अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है NH 330 को 10 मीटर चौड़ा करने की मांग। जी हाँ, सो विदेश राज्य और गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 330 को मौजूदा 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेज करके मार्ग को 2 लेन के रूप में डिवेलप करने का अनुरोध किया है। सो पत्र में बताया कि NH 330 प्रयागराज से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, नवाबगंज होते हुए गोंडा, बलरामपुर तक जाती है और ये रास्ता जो है अयोध्या धाम और नेपाल सीमा से और जाने वाले प्रमुख रास्तों को जोड़ता है। सो मस्कनवा के पास स्वामी नारायण छपिया धाम होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही भी रहती है। NH करीब 4 किलोमीटर हिस्सा गोंडा शहर की घनी आबादी से होकर गुजरता है। इसके आसपास का विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल और बाकी सार्वजनिक संस्थान हैं। सो विद्यालय, मरीजों और स्थानीय लोगों की आवाजाही की वजह से यहाँ यातायात का दबाव ज़्यादा रहता है जिसको लेकर के सड़क चौड़ी करने की मांग की है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑफ कोर्स देवरहवा बाबा की पर बनेगी फिल्म। गोंडा में होगी फिलहाल इसकी शूटिंग। सो आपको बता दें कि देवरहवा बाबा के जिंदगी और व्यक्तित्व पर आधारित फिल्म देव देवरहवा बाबा जल्द ही पहले पर्दे पर दिखाई देगी और फिल्म के जो निर्देशक हैं सनोज मिश्र ने बुध को इसकी जानकारी पत्रकारों से बातचीत करके दी। सो फिल्म में देवव्रत सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सिनेमा के कई बड़े चेहरे भी फिल्म का हिस्सा बनेंगे और फिल्म की शूटिंग गोंडा, देवरिया, वृंदावन, ओडिशा में की जाएगी। सो फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा गोंडा ज़िले में फिल्माया जाएगा।
लोकेशन देखने के बाद निर्देशक सनोज मिश्र ने स्थानीय कलाकारों के साथ बैठक करके फिल्म के विषय और किरदारों को लेकर चर्चा की है। बैठक में महेश सिंह, प्रदीप शर्मा, अजय कुमार त्रिपाठी, करमचंद ओझा, मानस सिंह, विदित शर्मा, विकास गोस्वामी, राजन, ये सभी मौजूद भी थे। इसके अलावा आज होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में भी आपको अपडेट कर देते हैं। सुबह 7 बजे से आज आवास विकास कॉलोनी में प्रेरणा पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा सुबह 10 बजे से लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के ललिता सभागार में रेड क्रॉस की तरफ से संगोष्ठी का आयोजन भी किया जा रहा है, यानी शुरू हो चुका है। इसके अलावा रोजगार शिविर की बात करें तो इटिया थोक ब्लॉक परिसर में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर पदों भर्तों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और सुबह 11 बजे से चंद्रभान मेमोरियल इंटर कॉलेज मल्लापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी कराया जा रहा है। सो फिलहाल ये जो अपडेट्स थी वो गोंडा से थी, और हमने आपको बता दी है कि क्या क्या अपडेट थी, क्या क्या आज होने वाले इवेंट हैं, और साथ ही अब तक क्या कुछ चल रहा है। तो ये सारी जानकारी आई होप आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी और ज़रूर आपके काफ़ी सारे काम की भी होगी। अब फिलहाल चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान, आपसे बातचीत कर रहा हूं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। कई सारी ऐसी स्टोरीज, ऐसी बातें होती हैं जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और ऐसे कई सारी स्टोरीज़ के साथ हम हाज़िर होते हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। जी हाँ, सो भाई चलिए फ़िलहाल आपको ले चलते हैं एक ऐसी स्टोरी की तरफ जो आपको सच में सोचने पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मजबूर करने वाली है। कहाँ? आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, विद योर मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

जब सोशल मीडिया का बोलबाला है, जब हर कोई एडवाइस कर रहा है कि भाई आप भी ज़रा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझे जाने और ऑफ कोर्स आगे लेकर चले, जिसमें आपको बता दें कभी पहले ही डेमो लेक्चर में कह दिया गया था कि आप टीचर नहीं बन सकते, आज वही संजय अपन लाखों स्टूडेंट्स के फेवरेट प्रोफेसर हैं। सो मुंबई की चौल से शुरू हुआ सफ़र कॉल सेंटर और बैंक की जॉब से होते हुए क्लासरूम और इंस्टाग्राम तक पहुंचा। आज 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं। सो संजय अपन एकेडमी के ज़रिए उन बच्चों तक भी एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश है जो सिर्फ पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। संजय ने अपने सफ़र से एक बात साबित की है, आप कहाँ से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। एंड लिटरली सोचने वाली बात है कि भाई कब कैसे हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के हम समझ पाते हैं कि भाई कितना बड़ा कोई बन जाता है ना। सो फिलहाल ऐसे ही डेमो लेक्चर्स में अगर आपको कह दिया जाए कि आप टीचर नहीं बन पाएंगे, और सोचिए वो टीचर जब पढ़ाने लग जाए तो उसके लाखों जो हैं वो फॉलोअर्स हो जाए, यानी 2.2 मिलियन फॉलोअर्स, व्यूज तो छोड़ ही दीजिए, कितनी बड़ी बात है। सो कई बार क्या होता है ना, कहने का बस इतना सा सेंस है इस स्टोरी के पीछे, बस इतनी सी बात है कि कितनी बातें तो आपको भी कही जा रही है पर आपको न जाने क्यों अंदर से लगता है कि आप अपनी इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कर सकते हैं, आप शुरुआत तो करें क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ही है और आपके लिए ही मौजूद है। जी हाँ, सो मुझे लगता है कि फ़िलहाल आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिनके बारे में आपके ख्याल हैं, और ऐसी चीज़ों को करना भी दुरुस्त है और ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं तो आपके पास भी और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपसे भी कुछ कहा जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, आप ऐसे नहीं हो, बट आपको कहीं ना कहीं बिलीव हो रहा है, आपको उस तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है, आपको ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं संजय अपन के बारे में, जिनके 2.2 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर हैं, वो फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगता है कि बात यहाँ पे 2.2 मिलियन फॉलोअर्स की नहीं है, बात ये है कि आपको भी ऐसा ही कोई कमेंट ज़रूर मिला है जिसमें ना शब्द आया है, और उस ना से हाँ करने का काम आपका है क्योंकि आप खुद को ज़्यादा बेहतर जानते हैं दुनिया में किसी भी और शख्स के मुकाबले। कोई भी इतना नहीं जानता जितना आप जानते हो, 100% ये बात बिल्कुल सच है आपके बारे में, है ना।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर।

0: भाई बाजार में आज भीड़ बहुत ज्यादा है। ओफो,
1: अरे अरे अरे भाई साहब।
2: हाँ बताइए।
1: अरे अरे भाई साहब जरा ये बताइए कि हाँ। जूते कहाँ मिलेंगे?
2: जूते हाँ, जूते हाँ, चाहिए
1: हाँ।
3: तनी को पद्धर कह के देखो या तनी जूता मिलिए कि ना पाइयो। वो सामने दुकान जा लेंगे।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली का मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। और फिलहाल 10:47 हो गए हैं आपके 89.6 FM के स्टूडियो में। फिलहाल एंजॉय करते हैं बैक टू बैक अपना मॉर्निंग वाला शो।

0: सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

क्यों ना चलते चलते एक यूनिक लेकिन बड़ी अच्छी सी खबर आप तक पहुंचा दे। सो फिलहाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म वीडियो के दौर में किताबें पढ़ने की आदत चूंकि कम होती जा रही, और इसी बीच में सिंगापुर की सरकार ने लोगों को दोबारा किताबों से जोड़ने के लिए 5 साल का राष्ट्रीय रीडिंग अभियान शुरू किया है। खास बात यह कि इस अभियान के तहत किताब पढ़ने वालों को पैसा भी मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए लोगों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रीडिंग टाइम दर्ज करना होगा। 15 मिनट या उससे ज्यादा पढ़ने पर उन्हें 20 वर्चुअल क्वाइन मिलेंगे। 1000 क्वाइन जमा करने पर 1 सिंगापुरी डॉलर यानी तकरीबन 75 रुपये मिलेंगे। हालांकि एक दिन में सिर्फ एक रीडिंग सेशन दर्ज किया जा सकता है। सो सिंगापुर का जो उद्देश्य है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बढ़ती आदत के बीच लोगों में कंसंट्रेशन, आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल एनालिटिकल सोच और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। सरकार चाहती कि नागरिक जिज्ञासु, विचारशील और समझदार पाठक बने, जिसके चलते वो ऐसा काम कर रही कि रील की लत छुड़ाने के लिए लोगों को किताब पढ़ने का पैसा दे रही है सिंगापुर सरकार। हालांकि हमको पता है कि भाई कितना ज़्यादा ख़राब है और कितना ज़्यादा रिस्की है सच में हर वक्त रील में फंसे रहना। सो किताबों की तरफ बढ़ने का अपना अलग एक दौर है, एक मज़ा है, और मुझे लगता है उसको आप भी फील कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। सो डेफिनेटली आप इसको फील कर पाएंगे। तो क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा ही करें और ख़ुद के लिए करें, यानी कोई हमको पैसे दे उस लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम भी जो है वो प्रोसेस में आ सके, हम भी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डिवेलप कर पाएँ, हम भी जो है वो कंसंट्रेट कर पाएँ अपनी चीज़ों को, और वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल के रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अपनी चीज़ों को हम बेहतर कर पाएँ। फिलहाल आपके क्या ख्याल हैं ये आप हमको ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आज का शो कैसा लगा ये भी आप हमको ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई,
9: थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
10: समता दी, आज आप सभी को इमलिया गांव जाने की तैयारी करनी है। हम सभी यानी किरण दीदी, गीता दीदी और आपको मेरे साथ साक्षी की शादी में जो जाना है।
11: पर जया, अभी तो उसकी शादी में काफी समय है, और किरण दीदी आपकी तो नंद के घर ही शादी है, वो इमलिया गांव वाली, जिनके गांव को जाते समय रास्ते में पावर हाउस भी पड़ता है, जहां से पूरे शहर की बिजली की सप्लाई होती है।
12: हाँ समता और जया, केवल इतना ही नहीं, वहाँ तो पावर हाउस के बगल में ही जिला कारागार भी है। ये वो जगह है जहाँ जिला कारागार में स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी दी गई थी। उन्हें काकोरी कांड से जुड़े होने के कारण 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई है। आज भी इस दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के हर विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस दिन जनता को वो हर जगह घूमने की विशेष अनुमति दी जाती है।
13: अरे तो का, हम सबे हुए तो घूमे जावा जात है, चलो फिर से तैयारी कर लिया जाए। हुए जाए की शादी और सात वचन ना हो, ये कैसे हो सकत है।
10: हाँ सही कहा आपने,
12: बिल्कुल सही। और आज का पहला गीत जो हम साक्षी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, वो है पता क्या, सात वचनों की लाज बचाना। सात वचनों की लाज बचाना, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पति पत्नी का वो भरोसा है जो दो दिलों को जोड़े रखता है।

0: समता दी, ठंड का मौसम चल रहा है, मक्के की रोटी और सरसों का साग तो गांव में खूब बनता है। लगता है इस बार हमें इमलिया गांव में चूल्हे पर बनी मकई की रोटी, सरसों का साग, गाय का शुद्ध मक्खन और सर्दी वाली सजाव दही के साथ आंवले की चटनी, अचार, कई चीजें खाने को मिलेंगी। आहा, सोच के ही मजा आ गया।
1: अरे जया, बस करो ख्याली पुलाव के शेफ। दरअसल बात ये है कि अब वो पहले जैसी खेती नहीं रही और ना ही फसलों में वो बात रही, क्योंकि अब अनाज को ज्यादा उपज के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एक गाना हो जाए।
2: आज

0: हाँ समता, सच में बहुत ही दुखद है ये हमारी धरती और आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे इतना रसायन, उफ़ो, इससे धरती माँ की उर्वरा शक्ति छीण हो जाती है और तो और मिलावटी उपज से बीमारी इतनी फैलती है कि क्या बताऊँ, और हमारी उम्र में भी कमी देखने को मिलती है।
1: अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब ये बताओ कि ये बार कौन खेत घूमे जाए मिली वहाँ जाए पर। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तनिक कौनो ठीक गौ नहीं हुई जाए तो नीक लागे।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब हम सब चलते हैं दिव्यता की ओर, उस पल की ओर जब बेटा दूल्हा बनता है, माँ की आंखों में भीगती खुशी होती है, जैसे माँ कौशल्या रानी के गोद आज राम दुल्हा बने। अरे भाई, आज हर माँ को लगता है कि उसका लाल राम जैसा दूल्हा है, और दामाद को देखते ही ससुराल वाले खुद को दशरथ समझ लेते हैं।

0: जया पता है इस समय दिसंबर चल रहा है तो रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, मटर, मूली ये सब लगाई जाती है और इसी के दौरान तुरैया और कद्दू जैसी फसलें जो है पक्के तैयार भी हो जाती हैं और साथ ही बरसीम भी लगाई जाती है जिसकी इस समय कटाई चल रही है। अच्छा तो इके साथ साथ अब की बार साक्षी की शादी भी देखे का मिली। वाह भाई वाह, खूब मजा आई।
1: अरे इतना ही नहीं, खाने को सारे शुद्ध पकवान, दही, दूध, घी और बहुत कुछ होगा।
2: हाँ समता, पर आजकल वो स्वाद कहाँ जो चूल्हे की बनी रोटी साग और रात की बासी सगपहता वाली दाल को चूल्हे पर घी, हींग, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च आदि के तड़के के साथ जब गरम किया जाता था, आहा मजा आ जाता है भाई, मेरे मुंह में तो लार गिर रही है।
3: हाँ दी, अब तो कोई चूल्हा जलाना जानता ही नहीं है। पहले तो पूरा घर और चूल्हा चिकनी मिट्टी का होता था, द्वार पर नीम आम जैसे बड़े पेड़ होते थे। अब तो गांव भी शहर सा बनता जा रहा है, कोई पेड़ लगाना ही नहीं चाहता।
0: हाँ जया, पर हमारी गांव की गूंज की टीम अपने उसी प्राकृतिक परिवेश को पुनः जीवित करने का काम कर रही है। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वो दिन याद दिलाते हैं कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, शुद्ध वातावरण भी होता था और उम्र सबकी लगभग लगभग 80 पार हुआ करती थी, कुछ तो 100 और उससे भी अधिक जीवित रहते थे। अब आजकल देखो 60 पार हो जाए तो जानो तो ये बड़ी बात होगी कि अगर कोई 60 की उम्र पार कर ले।
1: एकदम सही कहा दीदी। अच्छा जरा एक और गीत सीखते हैं। अरे भाई दुखड़ा लेकर आप कहाँ बैठ गई? आप भूल गई कि हम सब शादी की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर से वही अपने जमाने का वार्तालाप।
2: अरे अरे अब हल्दी की बातचीत कर लेते हैं। देखो भाई ढोलक बजेगा, सखियाँ उस दिन गाएंगी और क्या गाएंगी, लागी लागी रे बन्नी को हल्दी आज अरे शुभ होवे, ऐसे ही कुछ गाएंगी। और पता है हल्दी की चमक और बन्नी की जो निखार, फिर गांव के लड़के लाइन लगाते दिखते हैं, काकी हमको भी थोड़ी हल्दी लगा दो, शायद लाइफ चमक जाए।

0: वाह दीदी, तो शादी हल्दी की तैयारी पूरी हो गई।
1: हाँ, तो इस बार इमलिया गांव में खूब धूम मचेगी। जिधर आसपास की गोंडा मेडिकल कॉलेज, सर्किट हाउस और बादशाह बाग भी पड़ता है।
2: अरे आजकल गांव गांव कहाँ रह गया है। जहाँ परिवहन के साधन हो तो गांव और शहर की दूरियां ना के बराबर हो जाया करती हैं।
1: जाते जाते एक और गीत हो जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, अब आते हैं शादी के सबसे हंसी मजाक वाले रस्म की ओर, सुहाग रात के किस्सों पर। अंजोरिया की रात पिया काहे डराए गयो। आओ ये गाना सुनते हैं किरण की आवाज।

0: अजमी।
1: अरे पिया डराएंगे नहीं तो क्या करेंगे, भाभियां कमरे के बाहर खड़ी हैं, दोस्त फोन पर लाइव अपडेट मांग रही हैं, और इधर दुल्हन भी सोच रही है, और ये तो ऐसे ही चुपचाप है जैसे इंटरव्यू देने आए हूँ।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी का। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो कैनस की खूबसूरत पहल है, जिसके अंदर आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिटनेस पर। फिटनेस ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जिम में भारी वजन उठाते लोग या फिर रैम वॉक करती हुई जीरो फिगर की मॉडल्स? सही कहा ना, सबसे पहले यही ख्याल में आता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि कोई फिट है तो हमें लगता है लड़कियां हैं तो जीरो फिगर वाली होंगी और लड़के हैं तो बॉडी बिल्डर होंगे या तो वो कहीं भारी वजन उठा रहे होंगे। बट क्या सच में यही फिटनेस होती है? क्या फिटनेस का मतलब बस इतना ही होता है या फिटनेस का मतलब कुछ और होता है, अंदरूनी ताकत या फिर जीरो फिगर? क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है कि ये फिट है, या जब भी हम किसी को देखते हैं और उसका वजन ज्यादा होता है तो हमें लगता है ये अनफिट है। बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीजें वो लोग कर जाते हैं जिनका वजन ज्यादा लगता है, और कुछ चीजें वो लोग कर जाते हैं जिनका वजन देखने में बहुत कम लगता है। और हमें लगता है कि फिटनेस का सीधा एक पैमाना होता है, बट वो नहीं होता। तो आज जानने वाले हैं कि फिटनेस क्या है, जो किसी मॉडल के लिए नहीं, हमारे घर में हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए, हमारे भाई के लिए, और जो कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं या जो घर में रहती हैं, वो किस तरह से अपने फिटनेस लेवल को चेक करने वाली हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फिट हैं या नहीं है, और फिटनेस की असली परिभाषा क्या है। क्यों हमारी दुनिया में ऐसा हो गया है कि हर दूसरा इंसान फिटनेस की सिर्फ एक ही परिभाषा निकाल कर बैठ चुका है? अगर आपका वजन कम है, आप दिखने में बहुत पतले हैं, इसका मतलब आप फिट है। बट वहीं पर फिटनेस का दूसरा मतलब ये भी निकल के आता है कि आपका BMR क्या है, यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स क्या कुछ कहता है आपके बारे में, आपका BMI क्या कहता है आपके बारे में, आपका शरीर क्या कहता है, क्या आप काम कर पाते हैं। यदि फिटनेस रूल से कोई भी अपनी फिटनेस बरकरार रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग दिखने में तगड़े होंगे उनकी फिटनेस भी उतनी ही अच्छी होगी, या जो लोग बिल्कुल दुबले पतले होंगे उनकी फिटनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। कई बार दुबला पतला आदमी वो काम कर जाता है जो शायद एक हट्टा कट्टा आदमी नहीं कर पाता। इसका सीधा संबंध फिटनेस से होता है। आप अपनी फिटनेस को कैसे चेक करने वाले हैं ये जानेंगे आज के आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगनी में। तो सुनते रहिए मेरे साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं और बात करते हैं फिटनेस के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि फिटनेस क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि फिटनेस को टेस्ट कैसे करना है घर पर बैठे बैठे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे रति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनसली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। और आज के आपके सेहत के स्पेशल वाले शो में जो हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले, उसमें हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। और जैसे ही आजकल ये शब्द हम सुनते हैं ना, फिटनेस, लगता है पतली सी कमर, डोले शोले, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स वाले बंदे, और हमको लगता है ओए ओए यही फिटनेस है। बट क्या सच में ये फिटनेस होती है? या फिर वो महंगी ग्रीन टी पीने वाले लोग जो पहला ही घूंट लेते ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे करेले का जूस मुंह के अंदर चला गया है और बिल्कुल क्या ही टेस्ट आया है। अब ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि भाई इनकी फिटनेस तो क्या ही लेवल पर होगी, बट सच हमेशा इसका उल्टा होता है। तो चलिए जान लेते हैं, थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं मजाक से हटकर, क्या वाकई यही फिटनेस होती है? बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि फिटनेस का हिंदी में असली मतलब है आपके शारीरिक और मानसिक योग्यता, यानी आपके शरीर के अंदर आप कितने तैयार हैं। अगर आपके पास सिक्स पैक एब्स नहीं है लेकिन सुबह उठकर आपके पीठ में दर्द नहीं रहता, आप चिड़चिड़े नहीं रहते, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और काम की एनर्जी आप में बनी रहती है, तो इन्हें आप फिट कह सकते हैं। बट अगर आपके अंदर एब्स तो हैं, आपके बाइसेप भी हैं और हो सकता है कि भैया पतली कमर भी हो और वो जो 11 लाइन दिखती है पेट पर वो भी दिख रही हो, लेकिन आप फिट ना हो, क्योंकि आप सुबह उठते हैं तो कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, चिड़चिड़े से हमेशा गुस्से में रहते हैं। और इसको अगर आप फिटनेस के लेवल पर देखेंगे और सिर्फ ये सोचते हैं कि सेल्फीज में तो हमारी फोटोज बड़ी सुंदर आ रही हैं, पोस्ट कर रहा हूँ बड़ी लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं फिट हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल साइंस आपको तुरंत नकार देगा और कहेगा कि ना ना जनाब ना, अभी तो आप फिट नहीं हो, फिट करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत लगेगी। और इसीलिए हमेशा वर्कआउट के साथ डाइट का नाम आता है कि डाइट कीजिए। अब डाइट में लोग सोचते हैं कि बस जंक फूड खाना बंद कर दो, घास फूस चबाते रहो और इससे हमारी डाइट हो जाती है, जो कि असल खाना होता है। सही मायने में देखा जाए तो सब्जियां और फल खाना असल खाना होता है, जिसको हम हमेशा से खाते आए हैं। बट क्योंकि हमारी जिंदगी में जंक फूड इतना ज्यादा नॉर्मल हो चुका है कि हमें लगता है कि नॉर्मल फूड का मतलब है पैकेट वाले फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना, समोसे चाट ये सब एंजॉय करना, ये होता है नॉर्मल फूड। और अगर कोई इंसान फलों पर ज्यादा ध्यान देता है, सब्जियां ज्यादा खाता है, तो वो डाइट कर रहा है। अब बताइए कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर फिटनेस का मतलब हो चुका है सिक्स पैक्स एब्स और डाइट का मतलब हो चुका है कि घास फूस खाना, क्योंकि असल चीज होती ही नहीं है। सच्ची फिटनेस तो वो होती है जब आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी घर पर आए तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो, थकान की लकीरें नजर ना आ रही हो, हालांकि आप थक जरूर जाते हैं लेकिन आपकी एनर्जी बरकरार है, आप चिड़चिड़े नहीं होते, आपके पास जब आपके बच्चे आते हैं या आपसे कोई बात करने आता है तो आप बौखला कर चिल्ला नहीं देते कि अरे चुप नहीं रहा जाता तुमसे, दो मिनट चुपचाप बैठ जाओ, पूरा दिन का थका हुआ हूं। आप उनसे ठीक से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं और थकान के चक्कर में आकर लेट नहीं जाते। आराम करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि आपने आराम किया है, आपने रेस्ट किया है, आपने पावर नैप लिया है, लेकिन चिड़चिड़े रहना, काम ना कर पाना, उठने का मन ना करना, आलस चढ़ा रहना, ये अलग ही चीज हो जाती है और इसको हम फिटनेस नहीं कहते। तो आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई वजन कम करने में लगा हुआ है और वजन कम करके ही लोग सोच लेते हैं कि हाँ हमारी तो फिटनेस बन गई, जो कि ऐसा होता नहीं है। अब भले ही कितनी ही अच्छी पिक्स क्यों ना देख ले, भले ही आप कितने अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, भले ही आपके अंदर कितनी ही बढ़िया फिगर आपको नजर क्यों ना आ रही हो सकता है आपकी बॉडी शेप अलग हो, किसी का पियर होता है, किसी का एप्पल होता है, फलाना ढिमकाना, आपको हजार टाइप के बॉडी टाइप दिख जाएंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर एक बॉडी टाइप को आर ग्लास बनना ही जरूरी होता है और आर ग्लास बनके ही हर कोई फिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर सोशल मीडिया के जमाने में यूं तो लोगों ने प्रोटीन, फाइबर और न जाने कितनी ही चीजों को हाइप तो दे रखी है, बट जो असल फिटनेस है उसकी बात कोई भी नहीं करता। कोई कहता है कि सुबह उठ के नींबू पानी पी लो, आप आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी। कोई कहता है कि शहद पीने से फिटनेस बरकरार रहेगी, कोई कहता है शुगर छोड़ दो तो फिटनेस बरकरार रहेगी। अब इस जमाने में जहां हर दूसरा इंसान हमें कुछ ना कुछ नई बातें बता रहा है, तो कुछ आकर ये भी कह देते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे और पानी नहीं पी रहे तो भी बीमार पड़ जाओगे। उस दौर में एक आम इंसान जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या? क्या फिटनेस के लिए हमें सच में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? क्या जीरो फिगर दिखना या फिर आ ग्लास बॉडी होना या सिक्स पैक्स एप्स होना यही सब फिटनेस का कारण होता है? इसी के होने के बाद हम फिटनेस में माने जाएंगे कि हम फिट होते हैं, हम काम कर सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जिस बॉडी बिल्डर इंसान को आप देख रहे हो वो शाम तक घर आते आते आते आते इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उससे बात करने वाला कोई नहीं, क्योंकि बार बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। हो सकता है जिन्हें आप रैम वॉक करते देख रहे हो, जो अभी तक आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनकी कमर 25 इंच की हो रखी है और आपको फोटोज में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट उनके पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं होते हैं, उनके हेयर फॉल्स होते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती और इसकी वजह से वो डॉक्टर्स के साथ आए दिन कंसल्ट किया करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इन सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते करते रियल फिटनेस का मतलब भूल जाएं। तो रियल फिटनेस होती क्या है? क्या महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर लेना, जिम में जाके सेल्फीज लेना ये फिटनेस है, या जिम की सेल्फी छोड़ देना ये फिटनेस है? ये सारे सवाल जब दिमाग में चलते हैं तो हमें लगता है कि हम आजकल के इस फेक न्यूज के दौर में रियल चीजों को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। आजकल अगर कोई कह दे कि थोड़ा सा पैदल चल लो तो लगता है ओए पैदल कौन चलेगा यार, बाइक है, ऑटो है, रिक्शा है, कुछ भी चल सकते हैं, किसी से भी चल सकते हैं। यानी कि पैदल चलना हम छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो लोग जिम जाते हैं वो भी अपनी बाइक पे बैठ के जाते हैं, 2 घंटे का रास्ता 15 मिनट में कवर करके 2 घंटे जिम में पसीना बहा के कहते हैं हम तो बड़े फिट हैं। और कोई कोई ये भी कहता है कि 10,000 कदम दिन के पूरे कर लो तो बाकी कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बट ये सब फिटनेस के एक पैमाने में आते हैं, यानी कि आप अपने आप को फिट करने के बहाने ढूंढ रहे हो, आप खुद को बढ़िया दिखा रहे हो। और ये एक अच्छी आदत है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट हो। फिट होने का मतलब है कि आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपकी मांसपेशियां भी स्वस्थ होनी चाहिए, वो भी काम कर रही होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कई लोग जिम में जाकर हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो कई लोग घर बैठे ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वॉक कर रहे हैं और इसके बाद भी उनके पास इतनी ताकत होती है कि जिम वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इसी पैमाने को समझते हुए आज हम जानेंगे कि असल फिटनेस क्या होती है, यानी कि फिटनेस जो आपके शरीर की योग्यता, इस पर मायने रखती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 4 सीढ़ियां चढ़ते हो और आपकी सांसें फूल जाती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके दादाजी के अंदर नजर आती है, अगर आपने भी 10 सीढ़ियां चढ़ी हैं और आप हाफने लग गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट तो भले ही कर लिया है लेकिन आपका शरीर अंदर से फिट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप में खून की कमी हो सकता है आपको अनीमिया हो, या हो सकता है आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, या कोई और बीमारी हो जो आपके आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो भाई आज फिटनेस टेस्ट तो हम यहीं पे कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि लाइव फिटनेस टेस्ट वो कैसे होने वाला है, घर पे बैठे बैठे फिटनेस टेस्ट कैसे करा जा सकता है? तो आइए बताते हैं कि घर पे बैठे बैठे आप अपने फिटनेस को कैसे टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबकी स्ट्रेंथ, सबका इंड्योरेंस और फिटनेस स्ट्रेंथ जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही लगा था ऑलमोस्ट लोग घर पर बैठकर अपनी इन सारी चीजों को खो चुके थे जिसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फिटनेस आ रही थी। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आप फिट हैं या नहीं हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: is a Nick Wintersing production.
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश।
5: हाँ जी, तो एक बार वापस इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के शो में फिटनेस की, यानी कि जर्नल फिटनेस, जो हर किसी को पता होना चाहिए। फिटनेस पता करने के लिए अब हम जा रहे हैं कुछ टेस्ट करने, कुछ टेस्ट की जानकारी देने, जो आप घर बैठे बैठे अभी कर सकते हो। अब आप भी अगर सोच रहे हो कि घर बैठे बैठे कैसे टेस्ट हो सकता है, यूं तो सारे टेस्ट जाके लैब में होते हैं, बट हमारे टेस्ट लैब में नहीं होने वाले हैं, आपके बेड पे ही होने वाले हैं। अगर आप कहीं पर हैं और मौजूद हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास कहीं कुर्सी है, बेड है, चेयर है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे पहले आराम से बैठ जाइए और उसके बाद कोशिश कीजिए सिट एंड रीच की, यानी कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से अपने दोनों पैरों को सीधा करिए, सामने की तरफ ले जाइए और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए झुकें और अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। क्या आप आसानी से अंगूठे छू पा रहे हैं या आपकी पीठ और घुटनों में खिंचाव हो रहा है? अगर आप बिना घुटने मोड़े अंगूठों को छू लेते हैं तो बधाई हो, आपकी बॉडी का लचीलापन अच्छा है, यानी कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल तो है बॉस, ये तो आप मानते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। पहला आता है BMI मेजरमेंट, यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला। बॉडी मास इंडेक्स जो आपके वजन और लंबाई के आधार पर शरीर के फैट परसेंटेज का अनुमान लगाता है, ये शरीर के अंदर कितना फैट है इसके बारे में बताता है। अगर आप अपना BMI निकालते हैं और आप 20 या 24 के बीच में आते हैं तो नॉर्मल माना जाता है, और अगर उसके नीचे हैं तो आप कुपोषित माने जाते हैं, यानी कि आप अंडरवेट माने जाते हैं। उससे भी नीचे जाते हैं भाई तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और अगर आप ऑरेंज जोन में जाते हैं तो आपको ओवरवेट माना जाता है। यानी कि नॉर्मल होना आपकी हाइट से आपका वेट मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उससे पता चलता है कि आप फिट हैं या नहीं है। BMI में मसल्स के वजन और फैट का वजन पता कभी नहीं चलता, ये सिर्फ ये बताता है कि आप फिट हैं या नहीं है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। अब इसमें आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये आपके मसल्स का वेट है या आपके पानी का वेट है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर आप शाम के वक्त वजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का वेट आता है। आपने जो कुछ भी खाया पिया है उसका वेट आता है, पानी का वेट आता है। तो भाई अगर आप अभी तक कॉन्स्टिपेशन से शिकार चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन से परेशान

ये अपर बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज है। इससे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ आप पता कर सकते हैं क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, क्या आपकी अपर बॉडी में वो स्ट्रेंथ है। पुशअप आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने और साथ ही बॉडी को सही शेप में लाने में मदद करती है। इससे आपके फिटनेस लेवल को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बिना रुके 15 से 20 पुशअप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फिटनेस अच्छी है। हालांकि अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो वो इतने पुशअप नहीं लगा पाएगा। कोशिश करें कि आप कम से कम 10 पुशअप जरूर लगाएं। इसी के साथ बात कर लेते हैं स्टेयर्स टेस्ट, यानी कि अक्सर लोग सीढ़ियां चढ़ते वक्त थक जाते हैं या उनकी सांस फूलने लग जाती है। हम आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित विनर डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक अगर आप अपने घर की सीढ़ियां लगातार 2 बार चढ़कर उतार लेते हैं और आपकी सांस नहीं फूलती तो आप खुद को फिट साबित कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप फिट हैं। क्योंकि जब भी हम अपने घर की सीढ़ियों को ही चढ़ते हैं, भले ही वो 15 से 18 सीढ़ियां ही होती हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है, हम थक जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है और बीच में ही कई कई बार तो रुकना भी पड़ता है। अगर आप बिना रुके 2 बार लगातार ऊपर जाकर नीचे आ सकते हैं तो मुबारक है, आप फिट हैं, आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं 12 मिनट रन टेस्ट का। जी हम आपको बता दें कि अगर आप 12 मिनट बिना किसी थकान के, बिना सांस फूले दौड़ सकते हैं एक स्पीड में, तो आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और इसी के अलावा आता है वॉक टेस्ट। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर से ज्यादा चल सकते हैं तो आप फिट हैं। लेकिन अगर आप 6 मिनट में सिर्फ 200 मीटर चलते हैं या उससे कम चलते हैं तो आप अस्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत भी हो सकती है। यदि आप 200 से 500 मीटर के बीच चल सकते हैं तो आपको अपने फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप घर पर बैठे बैठे या फिर घर पर ही कहीं चलते फिरते आप टेस्ट कर सकते हो। 10,000 कदम की बात नहीं की जा रही है। 6 मिनट में आप अपना टाइमर सेट कीजिए फोन में और देखिए क्या आप 500 मीटर चल पा रहे हैं, क्या उससे ज्यादा चल पा रहे हैं, या 200 से सिर्फ 500 मीटर के बीच में है या उससे भी कम है। अगर उससे कम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। और अगर बीच में है तो वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, डाइट सुधारिए, जंक फूड को बाय बाय कीजिए, टाटा कीजिए और अपने तेल वाली चीजों को जरा साइड में कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर तेल की बात की जाए तो तेल हमारे लिए दुश्मन और दोस्त दोनों हो सकता है। अगर आप एक सही मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके टेस्ट को भी ठीक करता है, प्लस आपको गुड फैट भी देता है। बट वहीं पर क्योंकि हमारे भारतीय खानों में तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और फ्राइड फूड हम बहुत ज्यादा खाते भी हैं, तो इसकी वजह से हमारी फिटनेस खराब होती रहती है। एक चम्मच तेल के अंदर 120 कैलोरीज पाई जाती हैं और अगर आप इन कैलोरीज को ध्यान में रखकर खाना खाते हैं तो आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। हम आपको बता दें कैलोरीज आपके वजन को भी निर्धारित करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो आपका वजन आए दिन बढ़ता जाता है, फिर चाहे आप कितना ही वर्कआउट क्यों ना कर ले। और इसी वजन को कम करने के लिए कई लोग बहुत सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी ट्रिक्स आती हैं। और लोगों को लगता है कि अगर हम हफ्ते भर के अंदर वजन कम करना चाहते हैं तो 16 घंटे फास्ट रह लेते हैं और 8 घंटे के अंदर हम कुछ भी खा लेंगे। 8 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं खाना होता है। अगर आप सेम कैलोरीज भी खा रहे हैं तो भी आपके वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 16 घंटे भूखे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आगे आने वाले 8 घंटे या फिर आगे आने वाले 7-6 घंटों के अंदर फिर से वही चीज़ें खाने वाले हैं जो हाई इन कैलोरीज हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो मदर नेचर जो आपको चीज़ें देती है जिनमें फल और सब्जियां आती हैं, ये खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कैलोरीज हमेशा कम होती है। आप कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने खाने को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। अब बात कर लें अगर खाने की ही, तो खाने में क्या कुछ खाना चाहिए। एक आम इंसान जो शायद जिम नहीं जा रहा, जो बॉडी बिल्डर नहीं बन रहा, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करना ही आपके लिए जरूरी है, या फिर आप एक फ्लेक्सिबल डाइट रख कर जिसमें आप अपना पसंदीदा चीज भी खा सकते हैं, फिर भले ही वो बर्गर क्यों ना हो, भले ही वो चाउमीन क्यों ना हो, और उसको रखते हुए अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखें। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के उस पार, उसके बाद बताते हैं कि आपको अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी में फिट रहें, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ना करना पड़े, आप अपने पसंदीदा खाने के लिए तरस भी ना जाएं और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करके अपना वजन भी ना बढ़ा लें, प्लस खुद को बीमार भी ना करें। क्योंकि धीरे धीरे इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिलहाल आइए रहते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनवास 96.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए आपकी इस खास पहल को, जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की है, जिसके अंदर बात करते हैं आपके सेहत की, आपके स्वास्थ्य की। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज का हमारा विषय था, आज का हमारा टॉपिक था जर्नल फिटनेस, यानी कि वो फिटनेस जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिटनेस में खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यूं तो हम बचपन से न जाने क्या क्या खाते आ रहे हैं, पहले के और आज के खाने में बहुत फर्क हो चुका है। पहले जहां लोग फल और सब्जियों को ज्यादा खाते थे, वहीं आजकल ट्रेंड में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सैंडविच न जाने क्या क्या आ चुका है। बच्चे भी लंच में सब्जी पराठों की जगह पर न जाने क्या लेके जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लोग अपनी फिटनेस को ध्यान तो देने लगे हैं, प्रोटीन को हाइप मिल चुकी है और अब हर इंसान प्रोटीन पर ध्यान दे रहा है। हर दूसरा इंसान सोच रहा है कि भाई मेरे एक मील में कम से कम 40 ग्राम प्रोटीन तो हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटीन से ही काम चलेगा? क्या कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने हैं या खाने हैं? क्योंकि वर्कआउट के पहले और बाद में अपने शरीर को सही आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी अपने शरीर को सही आहार देना, सही न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये आहार आपको मिलेगा कहाँ से? क्या आपको जो लोग कहते हैं कि मैदा आपकी सेहत के लिए खराब है, क्या ये उतना खराब है जितना हम सुनते आए हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है? या अगर सही मात्रा में लिया जाए तो मैदा भी आपके लिए उतना ही ठीक है जितना आप गेहूं? चलिए यही बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं सही पोषण क्या होता है और सही पोषण से क्या क्या होता है। आपका शरीर अपनी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन और बाकी चीजों के लिए आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए फैट की जरूरत मांगता है। बट अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देते हैं तो आपका शरीर अंदर से कमजोर होने लग जाता है। अगर आप वर्कआउट से पहले सोचते हैं सिर्फ प्रोटीन खाने से काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। प्रोटीन आपको हमेशा वर्कआउट के बाद में लेना चाहिए। हम आपको बता दें, वर्कआउट करने से पहले आपको नाश्ते में या फिर अगर आप शाम में वर्कआउट करते हैं तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो कि जटिल हो, उनमें प्रोटीन हो लेकिन फाइबर की मात्रा उनसे थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पच जाते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे भूख बहुत तेजी से लगती है। वहीं पर अगर आप फाइबर ऐड कर लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के साथ तो बहुत धीरे धीरे इसकी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत धीरे धीरे खाना पचता है और आप फुल महसूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप ओट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं या एक उबला हुआ आलू भी खा सकते हैं, और उसी के साथ आप दही, अंडे या फिर प्रोटीन शेक जैसी चीजों को शामिल भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप ब्राउन ब्रेड या फिर कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट में अच्छी है लेकिन वो फ्राइड नहीं है तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। आप उबली हुई सब्जियां भी ले सकते हैं, उसके साथ शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है और आप वर्कआउट जल्दी करने वाले हैं तो आप केला खा सकते हैं, और केला खाकर भी आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है और आप वर्कआउट के बीच में आपको चक्कर नहीं आता, कमजोरी महसूस नहीं होती है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि क्या वर्कआउट से पहले भरपेट खाना खाना चाहिए। जी नहीं, आपको सिर्फ 80% खाना खाना चाहिए ताकि आपके पास एनर्जी रहे। आप भरपेट खाना खाने के बाद तुरंत वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। भरपेट खाना खाने के बाद आपको कम से कम 2-3 घंटा इंतजार करना चाहिए। इवन अगर आप खाना खा भी रहे हैं, 80% ही आपने खाना खाया है, तो 1.5 घंटा आपको ऑलमोस्ट रुकना चाहिए और उसके बाद ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या खाएं। वर्कआउट के बाद सबसे पहले कोशिश करें कि 30 से 60 मिनट के अंदर आप कोई अच्छा प्रोटीन का सोर्स लें। प्रोटीन के सोर्स में आप सोया चंक्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन आपके लिए बेहतर है, आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप पनीर, टोफू की तरफ जा सकते हैं। इससे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और वर्कआउट के बाद जो भी आपका लॉस होता है उसमें रिकवर करने में आपकी मदद मिलती है। हम आपको बता दें कि इसके बाद आपको लेना चाहिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं और उस पसीने में हमारे कुछ बहुत ही जरूरी तरल पदार्थ भी निकल जाते हैं जिसमें मेनली सोडियम और पोटेशियम आता है। तो उनके स्तर को बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या थोड़ा सा नमक अपने पानी में मिलाकर पी सकते हैं। थोड़ा सा का मतलब है एक चुटकी, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको वर्कआउट के बाद लेनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं, जो घर में हैं और घर में रहकर काम कर रहे हैं, जो जिम जाकर पसीना नहीं बहा रहे। क्या उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन का ध्यान रखना है। आप जब भी अपनी प्लेट सजाते हैं या फिर जब भी खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले चीज जो आपको लेनी है वो है प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन को सोर्स में सिर्फ दाल को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि दाल कंप्लीट सोर्स नहीं होता। चावल के साथ वो कंप्लीट हो जाता है लेकिन हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना हमें एक बार में चाहिए। आप 25 से 40 ग्राम प्रोटीन एक बार के मील में जरूर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी प्लेट लगाएं तो सबसे पहले प्रोटीन का ही कोई सोर्स रखें। या तो आप पनीर शामिल कर सकते हैं या फिर आप टोफू शामिल कर सकते हैं। आप अंडे खाते हैं तो अंडे ले सकते हैं और अगर आप चिकन खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइबर को ऐड करना। फाइबर जो आपको सब्जियों में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, हलिम सीड्स में मिलता है, जो आपको बीजों में आसानी से मिल जाता है या फिर इसबगोल में मिलता है, तो फाइबर को अपने खाने में जरूर शामिल करें। फाइबर के लिए आप फलों की तरफ जा सकते हैं। फलों में 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं, 250 ग्राम के करीब आप अमरूद ले सकते हैं या फिर नाशपाती ले सकते हैं। ये वो तीन फल हैं जिनके अंदर फाइबर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। तो आप अपने खाने में सब्जियों के साथ साथ पनीर को जरूर ऐड करें, यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फाइबर और फाइबर के बाद आता है आपका कार्ब्स। कार्ब्स में जो आपके सोर्सेज हैं वो है आलू, स्वीट पोटैटो, रोटी, चावल। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। इसके बाद आप अपने दाल में एक चम्मच घी ऐड कर सकते हैं जो गुड फैट का सोर्स होता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें और इससे आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा गुड फैट के लिए आप बादाम, अखरोट भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, यानी कि सुबह उठकर आप खाली पेट बादाम अखरोट ले सकते हैं। बादाम की संख्या होनी चाहिए 4 से 5 और अखरोट 2 से 3। इससे ज्यादा ना लें, क्योंकि इससे ज्यादा आप लेते हैं तो सिर्फ आपका फैट बढ़ता है, कैलोरीज बढ़ती हैं और आप पूरे दिन में जो चीजें खाते हैं उनमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो ये वो बातें थी जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये है आपकी जनरल फिटनेस, यानी कि वो फिटनेस जो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप जिम जाते हो, भले ही आप जिम ना जाते हो, भले ही आप एक मेल हो, आप एक फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप कोशिश करें कि अगर आपके खाने से जो चीजें पूरी ना हो रही हैं उन्हें सप्लीमेंट से जरूर पूरा करें, जिसमें हमारी कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। 30 साल के बाद हर फीमेल को कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी चाहिए। जी हाँ, आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सप्लीमेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं और उनसे कोई बढ़िया सी सप्लीमेंट पूछ भी सकते हैं। अगर आप अपने डाइट में सप्लीमेंट भी शामिल करते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले उन सप्लीमेंट्स की, यानी कि उन चीजों की आपके अंदर कमी हो। बिना ब्लड टेस्ट कराए उन चीजों को मत लीजिएगा, और अगर आप ले रहे हैं तो एक सही समय पर लीजिएगा, जैसे कि सुबह खाली पेट आयरन और विटामिन सी लीजिएगा, रात में सोते समय आप मैग्नीशियम, और अपने खानों के बीच में विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स या बायोटिन, जो भी आपको शामिल करनी है। लेकिन जरूरत तभी है जब इनकी जरूरत आपके शरीर में हो, यानी कि आपके शरीर में जब इनकी कमी होती है तभी आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा सोर्स यही है कि आप अपने प्रोटीन, अपने फाइबर, अपनी बाकी चीज़ों की जितनी भी पूर्ति है वो खाने के जरिए करें। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार मुलाकात करते हैं आपसे वापस से। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्टेशन 106 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। जी हाँ, दरअसल 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती है और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेहतिया भैया।
3: नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद आरजी अदनान। जैसे किसी बगीचा में सही समय पर यानी पानी और खाद न मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
3: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा, अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है।
2: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
3: देखो भाई, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की को और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
2: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
3: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए।
2: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन इसका बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
3: बिल्कुल आरजी अदनान, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई हो तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
2: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो क्या ये खतरनाक हो सकता है?
3: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक सिमट जाती है।
2: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छिपे गर्भपात करा लेती है, ये कितना खतरनाक है भैया?
3: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती है तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
2: ठीक कहा भैया। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है?
3: किशोरा अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वो बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वो कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
2: भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है?
3: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है, रो नहीं सकता या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बात मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो या घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
2: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपने फैसले समझदारी से ले सके?
3: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
2: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी कि गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
3: बिल्कुल दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
2: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया, तो कहीं वो गलत रास्ते पे ना चल पड़े।
3: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
2: सेहतिया भैया, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हुई है?
3: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKS के, इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
2: आखिर इस योजना में सुविधा क्या क्या मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
3: RKS के बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला, किशोर या अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहाँ किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अन्नपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बात कर सकें।
2: अच्छा भैया, ऐसा क्या है?
3: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKS के से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है कि सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझक के सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना है, इसमें सरकार सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसा देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKS के सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं है, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, NM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
2: भैया, अगर RKS के जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचा दिए जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे, क्या कहते हैं?
3: देखिए भैया, ARSH, इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना है, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
2: ये तो बहुत बढ़िया है भैया।
3: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थीं, शर्मा जाती थीं। फिर एक दिन गांव में RKS के योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन NM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
2: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खास तौर पर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
3: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनबाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद एनम रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
2: मतलब ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं।
3: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनबाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने माता पिता को समझाया, 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग भी देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और गांव और आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
2: वाह भैया, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने हौसले खुद लेने लगते हैं।
3: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते हैं और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वो बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा भैया। दोस्तों, ये ठान लो कि हम अपने किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब सही जानकारी होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे अंशिका रहती हैं। पर आप सभी को पता है कि अभी वो किसी विशेष काम में व्यस्त हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, तो मिलेंगी वो हमसे जल्दी ही। हम सभी की दुआ है कि वो जल्दी से आ जाएं। पर आज हमारे स्टूडियो में फिर से एक गेस्ट आ गई हैं। उन गेस्ट का नाम मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। मैं हूं आपकी आज समता और इस प्यारी सी दोपहर में आप सभी का, यानी हमारे लिसनर्स का, हमारे सभी दोस्तों का आह्वान करते हुए सभी को प्यार भरा शुभ दोपहर। आइए तो बता दें कि आज है थर्सडे एंड थर्सडे के दिन हम लेकर के आते हैं कुछ सीनियर सिटीजन्स की ओर, उनकी ओर रुख करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी केयर के बारे में बात करते हैं, उनकी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, उनके खान पान को लेकर के बात करते हैं, उनके रहन सहन को लेकर के बात करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आज, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की बात है। तो भाई, घर के बड़े बुजुर्गों की बात है तो यूं ही थोड़ी हम प्रोग्राम को जाने देने हैं वाले हैं। बहुत ही कुछ लेकर के आए, लेकिन हमारे प्रोग्राम की औपचारिकता रहती है कि सबसे पहले हम उस दिन के साथ शुरू करते हैं एक प्यारी सी पोयम। तो आज कहानी है कि कहानी कह लें या फिर हम एक छोटी सी पोयम कह लें, जो कि है हमारे बुजुर्ग। तो हमारे बुजुर्ग के ऊपर आज बहुत ही प्यारी सी एक कविता है, आइए सुना देते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम को। उम्र बढ़ी तो क्या हुआ, अनुभव उनका खास है, उनकी हर एक बात में जीवन का एहसास है। जिन हाथों ने हमें संभाला आज वही सहारे हैं, उनकी दुआओं से ही तो रोशन हमारे किनारे हैं। थक गए हैं कदम मगर हौसले अब भी जवान हैं, उनकी आंखों में छिपे कितने सुंदर अरमान हैं। वक्त मिले तो पास बैठो दो पल बातें कर लेना, वक्त मिले तो पास बैठो दो पल बातें कर लेना, उनके बीते कल से अपने आज को बेहतर कर लेना। बुजुर्ग की घर की छांव है, बुजुर्ग ही घर की छांव है, उनका मान बनाए रखना, उनके रहते घर में हमेशा प्यार सजाए रखना। झुरियों में छुपी हुई जीवन की कहानी है, झुरियों में छिपी हुई जीवन की कहानी है, बुजुर्गों की हर बात में अनुभव की निशानी है। कल तक जो हाथ हमारे उंगली पकड़ कर चलते थे, कल तक जो हाथ हमारे उंगली पकड़ कर चलते थे, वही आज वही हाथ प्यार से बस साथ हमारा चाहते हैं। उन्हें चाहिए नहीं दौलत न महंगे उपहार, बस दो पल बैठकर कर लो उनसे दिल की बात। उनके किस्सों में बीता कल, उनकी आंखों में संसार, उनकी दुआओं से मिलता है जीवन को नया आधार। वो घर की जड़ हैं, उन्हें कभी अकेला मत करना, वो घर की जड़ हैं, उन्हें कभी अकेला मत करना, जिन्होंने हमें बनाया उनका हमेशा सम्मान करना, जिन्होंने हमें बनाया उनका हमेशा सम्मान करना। बिल्कुल, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही हमारे घर की नींव होते हैं, हमारे घर की शान और हमारे घर की रौनक होते हैं। तो उनसे, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ चाहिए होता है कि दो पल का प्यार, बैठकर बातें और एक सुकून भरा एहसास। तो हम कोशिश करें कि हमारे घर के जो भी हैं घर में बड़े बुजुर्ग, तो उनको हम ये सारी चीज़ें दे सकें और बदले में ढेरों आशीर्वाद और ढेरों प्यार उनसे पा सकें। तो आइए इसके आज के प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे और इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम जानेंगे आज की गेस्ट को, क्योंकि आज की हमारी गेस्ट कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, आप उन्हें जानते हैं, बहुत ही जिनके हाथों में रस, चलो मैं आपको एक दे देती हूँ, क्लू दे देती हूँ, जिनके हाथों में है रस, जिनकी बातों में है मिठास। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे पास कौन बैठी है खास। तो इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। और जैसा कि अभी मैं आपसे करके गई थी वादा कि अभी हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो आइए पहले सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद आज के प्रोग्राम को करते हैं शुरू। मैम स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो सुन सहेली में आपका। और कैसी हैं पहले तो ये बताएं।
3: बिल्कुल ठीक है समता
2: जी। तो मैम ये आज का टॉपिक जो है आपको बेहतर से अभी मैंने आपको बताया था, और हम जिस दिन आपने हम लोगों को बताया था बालकों के लिए शिशु अवस्था का पोषण बताया था, और उस दिन से वाकई में मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इसीलिए मैंने आज आपको फिर से बोला कि कई नई नई जानकारियां आपसे हमें मिलती हैं। तो आज है हमारा बुजुर्गों के लिए एक हमारा जो है आज के दिन का सेक्शन होता है। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों की जब उनके 60 प्लस हो जाती है, एज 70 हो जाती है, तो उनका ख्याल हमारे जो घर वाले हैं मतलब हम सभी लोग छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से करना संभव हो पाता है।
3: तुमने तो आज बड़ा करंट टॉपिक ले लिया है क्योंकि आजकल के समाज में बेचारे बुजुर्ग, कितने सारे वृद्धाश्रम खुल गए, सब कुछ हो गए। तो जिन बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ मिला आज वही लोग बहुत दुखी हैं। तो अब क्या कहें उसके लिए, तो वही वो खुद भी जिम्मेदार हैं, उनका समाज भी जिम्मेदार है ना। ये नहीं है कि बुजुर्गों की गलती नहीं रही, बहुत कुछ बुजुर्गों की भी गलती रही जिसके कारण कि आज वो वृद्धाश्रम में है ना। क्योंकि ये तो अगर आप बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं तो आपको हर चीज में लगा कि मैं ही आगे रहूं, मैं ही, आपने परिवार को पलट के नहीं देखा। ये सबसे बड़ी कमी रही,
2: बिल्कुल
3: अहम की भावना रही। और अगर आपने थोड़ा पैसा अपने भाइयों से या परिवार से ज्यादा कमाया तो आप में घमंड आ गया, ये भी बात रही
2: जी।
3: और दूसरे, ऐसा नहीं कि आप ही गलत हैं, कुछ बच्चे भी नालायक निकल ही जाते
2: हैं।
3: क्योंकि उनको दोस्त कैसे मिले, दोस्त का परिवार कैसा है, वो क्या देख रहा है, या अपने आसपास कौन कैसा रह रहा है। सबसे बड़ी बात तो है आसपास का वातावरण बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव।
2: बिल्कुल आजकल मैम एक बात और भी है कि हमारे कहते हैं ना कि जो बड़े करते हैं वही बच्चे सीखते हैं।
3: हाँ, वो तो कुछ ना कुछ हद तक रहता है, पर ऐसा नहीं है कि कोई पहले अपने माँ बाप को बांटता था, वृद्धाश्रम भेज देता था, ये नहीं था,
2: ये सब नहीं।
3: लेकिन अब देखो कितना, एक तो ये जो आजकल मोबाइल पे सब पे रील चलती है, ये बहुत खराब है। ये तुमको देखो किसी को मुंह दबा के मार रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, बहू टेढ़े मुंह, ऐसे कैसे बहू खराब बात बोलेगी।
2: बिल्कुल
3: है ना, ये सब गलत चीजें नहीं दिखानी चाहिए। छोटा मन छोटी छोटी चीजें पहले सीख लेता है ना।
2: कहते हैं ना कि खराब जो खराब चीजों को जो भी चीजें वो जल्दी
3: जल्दी
2: कर,
3: और वो ज्यादातर मन में बसी रहती है। तो एक तो ये हम जो भी रील डालता है कि बीबी को मार रहा है, पैर दबा रहा है, या अलग से संबंध दूसरे हस्बैंड के संग नहीं, उसके दोस्त के संग या कहीं उसके प्रेमी के संग है, उसको दिखाने के दबाने के लिए वो अपनी नंद को मार रही है, नौकर को दबा रही है, माँ को पैर से दबा रही है, ये सब चीजें इतनी गलत है। समाज को हमेशा एक अच्छा आईना देना चाहिए जो कि आगे बच्चों को भविष्य दे अच्छा सा।
2: बिल्कुल।
3: तो इसमें अब बुजुर्गों की बात क्या कहें, बुजुर्ग लोगों का भी बताया तुम्हें कि आधी बातें तो वो लोग अपने मन से करते रहे और उन्होंने भी बच्चों की बातें बहुत सारी नहीं सुनी
2: जी।
3: और कभी कभी हमने ये देखा, एक बच्चा हमारे घर के आसपास रहता था, उसके पापा बहुत अच्छे मतलब अफसर थे
2: जी।
3: पर वो अब जो भी कारण रहा होगा, दिवाली पे पटाखे वो नहीं लाते थे और वो जो छोटा बच्चा था उनका, वो पटाखे के लिए हमेशा जिद करता था। और लेकिन उन्होंने बस वही फुलझड़ी और चुटपुटिया पहले चलती थी, वो दो चार चीजें बस लाके देते थे कि उसी समय बजे और खत्म हो जाए। लेकिन हमने देखा कि वो जब बच्चा बड़ा हुआ नौकरी करने लगा
2: जी,
3: तो वो बहुत सारे पटाखे अपनी तनख्वाह से लेके आता था और दो तीन दिन तक छुड़ाता।
2: और कितने महंगे आते हैं।
3: हाँ,
2: कितने
3: अब तो दिन पे दिन महंगे हो गए
2: होते जा
3: और अब तो बैन भी हो रहे हैं पटाखे अटाखे। पर देखो बचपन बाल मन में जो भावना बैठ गई वो बैठ जाती है। अब आजकल देखो पितरों का चल रहा है श्राद्ध, सब लोग अच्छा अच्छा बना रहे हैं, कौआ खिला रहे हैं, कुत्ते खिला रहे हैं, अपने संबंधियों खिला रहे हैं। पर देखो यही बहुत सारी चीजें हैं कि बुजुर्ग लोग एक एक गिलास पानी मांगते रहते
2: जीते
3: हैं,
2: जी उनको गिलास पानी नहीं।
3: और बहुएं हैं घर के, बच्चे कैसे बच्चे ऐसा कर सकते हैं ये हमारी समझ में नहीं आता।
2: सही कह रही है।
3: पर बच्चे भी जो है अपनी दादी को नहीं देखते हैं, बाबा को, वो बेचारे अगर कोई अपाहिज है, घंटी दबा रहा है, दरवाजा पीट रहा है और ये गिलास बजा रहा है तो भी कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर हम गुस्सा भी है मान लो अपने बुजुर्गों से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन्हें खाना पानी ना दें।
2: एग्जैक्टली बिल्कुल
3: है ना
2: मैम। लेकिन ये आजकल के जैसे आपने अभी बोला मैम, ये हर घर की एक समझ लीजिए कि ये ट्रेंड हो गया है।
3: बिल्कुल,
2: कि शादी करके आएंगे तो सबसे पहला उनका काम रहेगा कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अलग कर देना,
3: अलग कर देना। और आजकल की लड़कियां ये नहीं सोचती हैं कि कल को उनका लड़का भी तो उन्हें बाहर निकालेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ,
3: क्योंकि
2: बिल्कुल।
3: ये हमारा जो साइकिल ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है।
2: बिल्कुल।
3: तो इसमें अब जैसे लोगों के अभी यही गोंडाई का था कि मालवीय नगर में एक जन थे, उनके बच्चे दोनों बाहर, बड़े गर्व से कहते थे मेरे बच्चे तो दोनों बाहर हैं, बाहर हैं। पता चला जब वो बीमार पड़े मरे, बच्चों को कितना भेजा गया लेटर और ये सब, नहीं आए तो नहीं आए, पास पड़ोसियों ने ही उनकी अंत्येष्टि करी, जो भी थे उनके सगे संबंधी, लाश तो कितने दिन पड़ी रहती
2: बिल्कुल,
3: है
2: बिल्कुल,
3: ना
2: बिल्कुल।
3: तो माँ बाप को भी हमेशा अपनी ही दायरे में रहना चाहिए।
2: और मैम आपने एक न्यूज सुनी थी अभी की तीन बेटियां थी।
3: तीन बेटियों का महाराष्ट्र वाली वो तो बहुत ही मतलब बताओ कितनी खराब। लड़कों को तो हम लोग कह ही देते हैं, पर लड़कों को कहना दोष नहीं है। अगर हर माँ अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे तो चाहे वो बहू बने चाहे वो लड़की रहे, तो अच्छे संस्कार उसको मिलने ही मिलने चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप से सीख के आती हैं, भाई बहुएं तो वही बनती हैं, लड़का लेके अलग हो गई, हस्बैंड को अलग कर दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया या अपना अलग मकान लेके रहने लगी कि हम तो यहाँ रह रहे हैं। हमने कहीं कहीं देखा यही शहर हमारा तो गोंडा इतना छोटा शहर है, हम दूसरों जगह क्यों उदाहरण करने जाएं। इस शहर में हमने देखा कि सास ससुर अपना बना के खाना खा रहे हैं, अब बेचारी नहीं बूढ़ा बना पा रही हैं तो खिचड़ी बना दे रही हैं, नहीं दाल और दाल का पानी से ही रोटी भिगो के खा रही हैं। हमने कितने घर ऐसे कहे, पर हम उनको कहेंगे नहीं, पर उनके घर का परिवार समझ गया होगा कि वो किसे कह रहे हैं। तो बताओ क्या ऐसा होना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं।
3: अरे नहीं, हमको बड़ा उन्होंने करा है माँ बाप ने, तो हम चाहे खुश रहें चाहे नाराज रहें, पर दो रोटी के हकदार तो बेचारे है ही हैं।
2: बिल्कुल हैं। और कहीं ना कहीं मैम जिस मकान में, जिस घर में, जिस जायदाद में वो रह रहे हैं तो आखिरकार तो वो उन्हीं का ही है।
3: नहीं, और चलो जायदाद की बात नहीं, बहुत लोग नहीं भी घर द्वार बनाते, पर आपको उन्होंने पैदा करा, बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, आज आप सबल हैं।
2: बिल्कुल।
3: और वो बेचारे निर्बल हो रहे हैं।
2: निर्बल हो रहे हैं।
3: अब निर्बल हो रहे हैं तो इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनको कहीं नहीं, लोग रास्ते में हमने देखा कि वृद्धा आश्रम जाओ तो पता चलता है कि कोई लड़का अपनी माँ को लेके चला, उस ट्रेन में छोड़ा या जहाँ भी हो, गायब हो गया कि बैठो अभी आ रहे हैं। कितनी रीले हम लोग देख रहे हैं कि बेचारी इंतजार कर रही है, वो आ ही नहीं रहे हैं। ये सब क्यों,
2: ये सब कितना मतलब?
3: अपनी ही माँ बताओ जरा, वो भीख मांगे, पागल ऐसी घूमे, क्या ये मानवता है?
2: मानवता नहीं, नहीं। और आजकल तो मैम ये सब ट्रेंड में हो गया है कि बच्चे बाहर अगर जा रहे हैं तो उनको क्या कर रहे हैं कि आप माँ बाप को पहले अपने घर में छोड़ के जा रहे हैं, फिर उनको बहला फुसला के वो मकान भी बेच रहे हैं और उनको छोड़ के जा रहे हैं वृद्धाश्रम में।
3: बिल्कुल।
2: तो
3: ये जो है अच्छी बात नहीं है और इससे समाज दिन पे दिन बिगड़ता ही जाएगा आने वाले समय में ही नहीं। इसके लिए हमें जरूरी है कि देखो संयुक्त परिवार, अगर हम मान लो अलग अलग घर भी लेके रह रहे हैं
2: जी,
3: तो भी हमें अपने घर के आसपास ही सबको रहना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: और कोई तीज त्यौहार, कोई एक एक बार एक के घर मना ले, दूसरी बार दूसरे के घर, और सब आपस में आना जाना जरूर रखे।
2: बिल्कुल, और कितना अच्छा लगे मैं।
3: बिल्कुल हाँ। और ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो दिन पे दिन वृद्धाप भी हो रहे हैं। अगर वो 60 साल के हो रहे हैं तो आप भी 35, 36, 40 के हो गए हैं।
2: बिल्कुल, और नहीं तो क्या?
3: ये ना सोचिए कि आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है। और हम प्रौढ़ावस्था के बाद सीधे वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, है ना? 60 साल की उम्र आपको दी गई है कि वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है।
2: बिल्कुल।
3: पर आप भी तो 45-50 के हो रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आप भी तो उसी के करीब हैं। तो सबसे पहले तो हमको घर से ही शुरू करना।
2: बिल्कुल, अपने घर से ही शुरू करना चाहिए।
3: और बचपन में जब भी रहे, छोटा बच्चा आपका रहे, आप उसको दादी, बाबा, नानी, जो भी आपके बुजुर्ग, कभी कभी भाई नहीं, किसी के लड़के हैं तो लड़की के घर रह रहे हैं, नानी भी रहती है, ऐसा नहीं है, तो दादी, नानी, बाबा जो भी हो, आप सबसे पहले बच्चों को उनके संग रखिए।
2: बिल्कुल।
3: और छोटी छोटी बातें, जाओ दादी को पानी दे आओ, जाओ दादी को टॉफी खिलाया, जा दादी को ये खिलाया।
2: मैम आजकल तो बच्चे अगर कर रहे हैं ना, कुछ तो घर ऐसे भी हैं कि जहाँ बच्चे कर रहे हैं तो उनकी माँ कह रही है कि तुम दादी के साथ क्यों जाके बैठ रही हो, तुम्हें दादी ने खराब किया हुआ,
3: खराब किया।
2: और जबकि सही संस्कार की ओर अगर दादी
3: नहीं, अगर तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर हम ये छोटी छोटी बातें करेंगे, उसके बाद अगर बच्चे दादी के पास जाके लेट रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, लेट दे, फिर दादी से कह दो कि आप जाओ मम्मी के पास, तो दादी की बात तुरंत मानेंगे, नानी की बात तुरंत मानेंगे। और बच्चों को उनके हाथ से खाना पीना सब अच्छा लगता है। और दादी और वो तो जब शरीर थोड़ा अशक्त हो रहा है तो बेचारे अलग से तो काम नहीं कर पाएंगे।
2: बिल्कुल।
3: पर ये छोटे छोटे काम तो वो लोग खुद ही अपने बच्चों का कर लेती हैं, और कितना भी हो वो खाना भी बच्चों को बना के खिला सकती हैं।
2: Exactly.
3: उतनी ताकत रहती
2: है उनमें।
3: तो ये संस्कार आपको बचपन से देने पड़ेंगे। और माँ बाप भी घमंड और इतरा करके ना चले। बिल्कुल,
2: एक नए दिन उनका भी वैसा ही
3: आएगा।
2: बिल्कुल। तो चलिए यहाँ लेते हैं मैम एक ब्रेक, और क्योंकि बातें इतनी अच्छी हो रही हैं कि ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बातें और खुलती जाती हैं। लेकिन हम इसी बात को और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे अपनी मास्टर शेफ मयूरंजना मैम, जो कि आज बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर के आई है। एग्जैक्टली आजकल जो समाज में चल रहा है, और हमारी जो जैसे कहते हैं ना कि वर्तमान स्थिति जो ये चल रही है, उसी स्थिति पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सुनते रहिए, और भी इसको एक्सटेंड करेंगे। बस हम यू गए यू आए। Stay tuned.

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में हमारे हैं हमारी रंजना मैम यानी हमारी मास्टर शेफ। तो चलिए फटाफट अपने उस टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा आज बड़े बुजुर्गों को लेकर के है। तो मैम, अब हम जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के साथ में कि बड़े बुजुर्गों के खान पान की ओर क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे एज बढ़ती है तो क्या खान पान और क्या पोषण होना चाहिए।
5: देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, बेचारों के कुछ करने लायक तो रह नहीं जाते हैं।
4: बिल्कुल।
5: अच्छा, 60 साल की उम्र ऐसी नहीं होती कि रिटायरमेंट दे दे। पता नहीं सरकार ने क्या नियम बनाया, 65 साल से कम तो रिटायर करना नहीं चाहिए। 60 साल को देखो लगता है कि अरे अभी तो काम करने लायक है,
4: लायक है।
5: चलिए ठीक है, फिर भी अगर 60 साल हो ही गई है तो रिटायरमेंट आपको मिल गया, अब आप ऑफिस से निकल ही लिए। लेकिन ये तुम देखो, 45, 47, 48 साल की उम्र होते होते वो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी डायबिटीज, कभी ब्लड प्रेशर, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन ही जाती है।
4: हाँ,
5: तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो भी चीज बीमारी आती है हमारे पेट से आती है, है ना
4: जी।
5: अगर हमारा पेट सही है तो सब कुछ सही है।
4: बिल्कुल।
5: तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको आप तो एक बार में ज्यादा चीज नहीं दे खाने को। उनके सिरहाने थोड़ी थोड़ी चीजें, चाहे मठरी है, टॉफी है और या नमकीन या मीठा खोरमा है, गुड़ है, या है ना दलपट्टी है, जो भी वो मुंह में घुला के खा ले। अगर दांत हैं ठीक है, हमने देखा लोगों के 80-80 साल तक दांत रहते हैं।
4: मेरी दादी की डेथ हुई है मैम 75-9 थी और उनके भरपूर पूरे दांत थे, एक भी दांत टूटा नहीं था।
5: अगर उनके दांत हैं तो ऐसी कोई भी चीज उनके सिराने छोटी छोटी शीशियों में भर के रख दीजिए कि वो, चूंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पाचन शक्ति कमजोर होती जाती है। तो एक तो पहले आप उन्हें सुबह नाश्ते में चिल्ला दीजिए, है ना, या उबला हुआ कोई भी खाना दीजिए, इडली आप दीजिए, उन्हें सांभर दीजिए। ऐसा करें कि उनका पेट भी भर जाए और वो आराम से खा ले,
4: हल्का भी लगे।
5: हाँ, अब मूंग की दाल की भपौरी, भाप में आपने भगोने में कपड़ा बांधा या छन्नी लगाई, उसमें पकौड़ी तोड़ दी, उनके हिसाब से आप बनाइए खाना। और वो आपके लिए भी बता, आप अपना खाइए तो छौंक के खा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बनाना पड़े। असल में लेडीज ज्यादा चिड़चिड़ जाती हैं कि लो अब हम अपना अलग बनाए, उनका अलग
4: बनाए,
5: वो बहुत बड़ा भार है। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है भार, आप अपने ही उसी खाने को अपने स्वाद के अनुसार बना लीजिए, ठीक है ना। और इस समय पस्ता कम है तो उनको पाचन वाली चीजें दीजिए, दाल आप जरूर दीजिए, साग दीजिए, पेट उनका साफ रहेगा। तो क्या कहते हैं, उनकी बीमारियां भी नहीं रहेंगी। ब्लड प्रेशर समय समय पे चेक कराती रहिए।
4: बिल्कुल।
5: ये थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना,
4: या फल फ्रूट उनको जो पसंद है तो वो खा सकते हैं।
5: अगर राख खा पा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं तो आप जरा सा इस समय अनार, सेब, सब कितना सस्ता है, आप जरा जरा सा, आप उनको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आप बस एक चौथाई गिलास आप छोटा सा करके आप दे दीजिए, एक तो वो उसी में खुश हो
4: जाएंगे, उनको लगेगा कि मेरी केयर हो रही है,
5: मेरी केयर हो रही है। नहीं है आप थोड़ा करके छान के रख दीजिए, अगर आप नौकरी करती हैं या आपके पास समय नहीं है, आप उनके पास, जैसे हमने कहा उनके पास जो चीज़ें आप रखेंगी उनका हैंकी आप उनके पास रख दीजिए, रुमाल आप रख दीजिए, पीने के लिए पानी आप गिलास में हल्का फुल्का गिलास दीजिए, भारी गिलास बिल्कुल मत दीजिए, नहीं है तो आप कटोरी रख दीजिए, कटोरी में डाल के पी लेंगे वो
4: बिल्कुल
5: पानी।
4: बिल्कुल
5: ऐसी चीज, तो उससे उनको एक तो आत्म संतुष्टि मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को खाने का मन करता है, जैसे हमें भी अच्छा अच्छा बनाते तो हमें हमेशा लगता है रोज नया बनाओ कुछ खाओ, है ना
4: जी।
5: अभी तो अपने हाथ पैर है, हो सकता है आगे ना कर रखा है तो, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ी छोटी चीजें पे ध्यान देंगी तो ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं रह पाएंगे, वो आपको देख नहीं पाएंगे।
4: कहते हैं मैम कि जो खुशी जो एक ऐसी चीज है कि उससे ना उम्र भी अगर कम होती है तो वो बढ़ने लगती है।
5: और खुशी इस समय उनको बहुत सारी चीज, जैसे प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्रोटीन का काम है टूट फूट की मरम्मत और नए सेल बनाना।
4: बिल्कुल,
5: अब इस समय उनको वो नहीं है। हाँ, अब बेचारे गिर पड़ जाए या ऑपरेशन हो जाए तब तो देखो स्पेशल केयर सबको करनी है। नहीं है तो आप अपनी हैसियत के अनुसार एक प्याला एक गिलास जैसा भी हो आप उनको दूध जरूर दीजिए। बिल्कुल, जरूर दूध दीजिए। दूध पीने से उनमें थोड़ी ताकत रहेगी, कैल्शियम की भी कमी हो जाए, मतलब जो है वो नहीं होगी, खनिज लवण भी धीरे धीरे योग हो जाएगा। और ये होता है कि पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण आप उन्हें बांध दीजिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मूंग की, और क्या कहते हैं मसूर की दाल दीजिए,
4: या खड़ा मूंग मैम उसको बना करके,
5: अंकुरित कम पसंद करते हैं,
4: अंकुरित नहीं, जैसे जो खड़ा मूंग होता है उसको बॉईल करके
5: वो करके करने उसकी आप हल्की हल्की टिकिया बना लीजिए।
4: हाँ,
5: आलू में साथ दे, आलू जो है वो सबको पसंद रहता है और वो लोग हजम भी कर लेते हैं आलू।
4: बिल्कुल,
5: हमने देखा कि आलू हजम कर लेते हैं। तो आप उनको आलू दीजिए। अब ये नहीं कि चार छह दो, आप दो टिकिया दीजिए, अगर बहुत शौक रखते तीसरी दे दीजिए, बाकी आप उनके पास बना के टिफिन में रख दीजिए। आप देखेंगे सारा दिन में वो आधी या एक ही खाएंगे, ये नहीं कि बहुत सारी खाएंगे, पर आत्म संतुष्टि बनी रहेगी,
4: बस वो उसी कारण से वो खुश रहेंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, पर्याप्त अगल बगल है मेरे पास।
5: और अगर आप नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी दवाएं जैसे उनकी चल रही हैं, आप एक पुड़िये पे लिख दीजिए ये सुबह का है, ये खाना खाने के बाद दोपहर में, ये रात का, तो आप वो पढ़ करके अपना खुद खा लेंगे दवा, आपको उनके पास रखनी है बस। तो देखो अगर छोटी मोटी जिम्मेदारी आप निभाएंगी तो ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था बहुत खराब अवस्था मानी जाएगी,
4: ऐसा नहीं है,
5: अच्छी मानी जाएगी और एक आप लायक बहू बेटी भी कहलाएंगी।
4: बिल्कुल,
5: और सबसे बड़ी बात जो आपके बच्चे देख रहे हैं वही कल आपको मिलेगा, उस चीज को आप लेने का कोशिश करिए। और हम तो हमेशा कहेंगे आप बड़ों से नारा, बड़े भी बहुत कभी कभी बहुत झक लड़ाते हैं। तो चिड़ मच जाती होगी
4: असल में। हाँ, कहते हैं ना कि वो जैसे ये अवस्था होती है कि ज्यादा बोलने की, तो ये अवस्था और बाल्यावस्था को क्यों सेम कहा गया है, क्योंकि वो बच्चे बूढ़े एक समान
5: नहीं, वो अलग चीज है बच्चे बूढ़े, लेकिन अब ये तो सीखे सिखाए बूढ़े रहते तो बूढ़े
4: तो
5: होते हैं, तो है ना, तो
4: लेकिन मैम उनको सामने कहने वाला भी नहीं होता है, अगर आप
5: कहने वाला भी नहीं है
4: कि कह दीजिए कि आप बहुत बोलते हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं,
5: तो ये कहने वाली बात ही नहीं है। अब जब उनको तुम खाना खिला रही, उनको कुछ दे रहे, देखिए थोड़ा कम बोला करिए, है ना, दूसरे लोगों को खराब लगता, हमारे कहने का ढंग जब बदलेगा तो वो भी तो बदलेंगे, ऐसा नहीं है। और कुछ बूढ़े तो सच में बहुत झक्की होते हैं, उनसे तो पार पड़ना बड़ा मुश्किल है, अगर उन्होंने जिद कर ली कि हमें ये खाना है तो वो खा के ही मानते हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो बेचारी बहू, लेकिन सबके संग ऐसा नहीं होता है और ये बात भी कभी कभी होती है, तो बेचारी बहू बेटियों को भी हमेशा ये ध्यान रखना। और इसमें सबसे बड़ा रोल घर के लड़के का होता है ना। बहू तो दूसरे घर की आई है, पर आपको ऑफिस से आ करके अपने फादर बाबा उनके पास जरूर बैठना चाहिए, उनका हाल चाल लेना चाहिए, दवा देख लो खत्म तो नहीं हुई है, आज दिन में क्या खाया, आप पूछिए, आप बात करने के लिए आपके पास क्या है, उनके पास भी नहीं है क्योंकि वो घर में रहते हैं, तो आप उनसे क्या खाया, कुछ खाने का मन कर रहा तो हमें बताओ, ऐसी छोटी छोटी बातें आप उनसे करा करिए। उसके बाद जैसे आप सुबह उठ रहे हैं तो आप ऑफिस जाने से पहले पूछ लीजिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कोई फल खाना है, अगर आप 10-20 रुपए खर्च कर देंगे उनके ऊपर तो क्या चला जाएगा,
4: बिल्कुल
5: कुछ नहीं चला जाएगा।
4: कुछ नहीं,
5: आप अपना पिज्जा जो खाते हैं बर्गर पिज्जा कूड़े ऐसा, उससे आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है,
4: बिल्कुल।
5: पर आप और आपके बच्चे होटल जाएंगे खाएंगे, आप थोड़ी आदतें खुद की भी बदलिए,
4: अपनी खुद
5: और अपने माँ बाप को सुख देने की कोशिश करिए, है ना। और बुजुर्गों को हल्का फुल्का खाना दीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता दीजिए, और सबसे बड़ी बात है इज्जत और प्यार।
4: प्यार सबसे बड़ा यही है मैम, क्योंकि अगर इज्जत प्यार भी मिले ना तो कहते हैं ना कि इंसान ऐसे ही अंदर से बहुत खुश हो जाता है।
5: हाँ
4: बिल्कुल।
5: थोड़ा सा और पपीता दीजिए उन्हें,
4: हाँ।
5: थोड़ा सा बहुत महंगा भी नहीं, ये सब फल महंगे नहीं है,
4: हाँ।
5: या और जो आपके देसी फल आ रहे हैं सीजन के अनुसार
4: जी,
5: वो सब ठीक फल है, आप उन्हें दीजिए और वो थोड़ा ही खाएंगे, ये थोड़ी ना आप किलो भर पपीता हाँ। लाए तो एक
4: बार भी खत्म कर देंगे,
5: कोई नहीं, हमने आपसे कहा बहुत थोड़ा थोड़ा उनको, हाँ थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, धोएंगी काटेंगी थोड़े टिफिन में रखेंगी, छुरी कांटा चम्मच जैसे वो हाँ, खा लेते हैं उनके लिए तौवेल रखिए कि वो अपना लगा के खा लें, या एप्रन बना के दे दीजिए कि वो लगा खाए। देखो खाते समय कोई कोई का हाथ बहुत हिलता है, गिर भी जाता
4: हाँ,
5: है,
4: बिल्कुल।
5: तो
4: बिल्कुल।
5: इन सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा,
4: बिल्कुल।
5: और जो लोग इन सब चीजों का ध्यान रख लेते हैं, और सबसे बड़ी बात आज हमने देखा है कि आजकल लोग अपने माँ बाप को अपने संग रखे हैं,
4: हाँ।
5: तो कौन है, गेस्ट आए हुए गेस्ट
4: हाँ,
5: नहीं है, आप उनके घर में हैं,
4: सच में मैम, कितनी दिल तक बात चली जाती है ना, कि
5: और
4: जब
5: ये
4: कोई...
5: बहुत खराब बात है, हाँ। गेस्ट नहीं, आप अब कि मेरे माँ बाप आए हैं, हम कहते हैं नहीं अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, नहीं उन्हें बात करने का ढंग है, उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप समाज में खड़े हो रहे हैं, तो आप अपने फादर को वैसे ही रखिए, कोई नहीं कहता है कि उनके फादर इतने गंदे थे, इतने गंदे से बोल रहे थे, सबके घर में बुजुर्ग हैं, और उसूल करना चाहिए, आप एक तो वो गेस्ट नहीं है, दूसरे अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं जो भी है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबसे पहले आप कहो आइए, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप से आपको मिलाता हूँ, 10 मिनट उनको दीजिए उनके पास, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे हैं कुछ भी, अपने घर में जो भी आपकी वाइफ बहन जो भी उनसे कह दो लाके यहीं दे दो, वो मेहमान
4: भी लगेगा कि हाँ, हाँ, मेरा सम्मान हो रहा है,
5: वैसे नहीं है, फिर अपना हालचाल देंगे पूछेंगे उसी में वो खुश हो जाएंगे,
4: बिल्कुल।
5: तो देखिए आप भी बदलिए थोड़ा, वो भी बदलेंगे, हाँ। ऐसा नहीं है कि आपके व्यवहार से वो नहीं बदलेंगे, वो भी बदल जाएंगे। तो मेरी आज की यही इच्छा है कि आप सब लोग अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए और प्यार दीजिए,
4: बहुत ही
5: बस,
4: मतलब
5: और अपने बच्चों को
4: हाँ।
5: जरूर से जरूर उनके संग रखिए,
4: उनके संग रखिए ताकि वो सीखें, वो संस्कार सीखेंगे तो
5: और,
4: आगे हाँ।
5: और उनसे वो प्यार सीखें,
4: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम,
5: आज के लिए बस इतना ही,
4: बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी लगती है कसम से मैम, मैं आपको क्या बता दूं, आपके संग बात करना और बैठना और इस तरीके से इतनी ज्यादा जानकारी, कहते हैं ना कि एक गुण जानकारी जो होती है ना वो आपसे,
5: हम लोग तो परिवार में रहते हैं तो परिवार से संबंधित ही बात करेंगे, तो वो अपने ही घर का देखा हुआ रहता है, पास पड़ोस का देखा रहता है, बस उसी का उदाहरण दे दिया। फिर भी मेरे श्रोताओं आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार
4: जी, थैंक यू सो मच मैम, और ये थी हमारे साथ हमारी रंजना मैम, जो कि इतनी बढ़िया वाली जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है, तो आई होप सो कि आप सारी जानकारियों को समझेंगे और उसके हिसाब से ही अपने घर और समाज के होने वाली जो चेंजेस हैं उनमें चेंजेस करेंगे और अपने आप में भी चेंजेस करेंगे। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे, बहुत कुछ लेकर के अभी बाकी है, तो आप सुनना ना भूले 9.6 FM पे, मैं हूँ आपकी आज समता, शो चल रहा है सुन सहेली, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो अभी आज है मास्टर शेफ आई थी हमारे पास, यानी हमारी रंजना मैम। तो बहुत ही बढ़िया से उन्होंने अभी हमें बुजुर्गों के लिए बहुत सारी जानकारी दी भाई, मतलब पोषण को लेकर के। मैं एक बात बताऊं आप सभी से, मेरा कसम से मेरा उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब उस स्टेज पे कोई होता है और उनसे ही बातें की जाएं, तो हमारी मास्टर शेफ हमारी रंजना मैम भी एजदार हैं, लेकिन उनकी बातों से, उनके रहन सहन से और उनके खाना बनाने की जो एक टेक्निक है ना, उनसे कोई भी नहीं समझ पाता है कि वो भी 60 प्लस है। मतलब उनसे मिल करके तो ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है यार। मैं सच्ची बताऊं, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि किस कदर टाइम निकल गया। तो आइए अब हम चलते हैं एक मॉरल स्टोरी की ओर, जो कि है हमारी खास करके उन बुजुर्गों के लिए जिनका आत्मसम्मान इतना है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी घर बैठना उन्होंने नहीं समझा कि हम लोग घर बैठे। तो अपने हाथ की कमाई, रामदीन जी 68 साल के थे, रिटायरमेंट के बाद बेटे के साथ रहते थे। बेटा एक महीने उनके हाथ में पैसे रख देता और कहता, पिताजी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नहीं है। रामदीन जी मुस्कुरा देते, लेकिन मन ही मन उन्हें लगता कि जैसे उनकी पहचान ही खत्म हो गई हो। एक दिन उन्होंने घर के बाहर छोटी सी मेज लगाई और अपने हाथ से बनाई कुछ लकड़ी की छोटी छोटी खिलौने गाड़ियां बेचने लगे। शुरुआत में लोग कम आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत की चर्चा होने लगी। एक शाम बेटा बोला, पिताजी आपने ये सब क्यों शुरू किया? रामदीन मुस्कुराकर बोले, बेटा पैसा कमाना बहुत जरूरी नहीं है, बेटा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हाथों से कुछ कमाने का एहसास इंसान को बहुत आत्मसम्मान देता है और उनका आत्मसम्मान जिंदा रखता है। उस दिन बेटे को समझ आया कि बुजुर्गों को सिर्फ सहारे की नहीं, सम्मान के साथ अपनी पहचान बनाए रखने की भी जरूरत होती है। तो इस कहानी से हम ये प्रेरणा लेते हैं भाई कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो प्यार, मोहब्बत, आत्मसम्मान, इज्जत, इन सभी को लेकर के ही साथ में चलते हैं। और अगर हम बच्चे उन्हें अगर इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उन्हें लगता है कि हमारा जीना ही समझ लो कि बिल्कुल बेकार है ना। तो इसीलिए आज का टॉपिक हमारा यही था और हमारा आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी यही है, यही कहता है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, प्यार करें, उन्हें इज्जत दें और उनका अकेलापन दूर करें। तो आइए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 81 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

बैक दोस्तों, अभी तक आपने सुना पूनम जी का ये वाला सॉन्ग, क्या क्या नए सितम ढाती है चूड़िया। अब आप सुनिए देवी प्रसाद जी का ये वाला सॉन्ग, चुरा के ले जा, भगा के ले जा, उठा के ले जा यार, जो कि कायनात जी को डेडिकेट।

सुन रहे हैं धर्मेंद्र मोहन जी के लिए, धर्मेंद्र मोहन जी के डिमांड पे ये वाला सॉन्ग, तुम हमको दिलबर जानी क्यों माने। तो अब चलिए सुनते हैं मोहम्मद मुसीब जी के लिए, जीता हूँ।

0: कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो एवरीवन, वक्त हो चला है शाम होने का। शाम मतलब आज का हमारा थर्सडे स्पेशल, आपका अपना खेत खलियान शो, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की। और आज हमारे बीच बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे को होस्ट इरफान शाह जी। पहले तो हम वेलकम करेंगे इन दोनों का। नमस्कार दोस्तों।
2: तो हमारे श्रोताओं को नमस्कार। हमारा
3: नमस्कार मैम, और श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोधूली, और गोधूली कार्यक्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे खेत खलिहान, यानी खेत खलिहान कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को हम लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि किसी दिन हमारे साथ साइंटिस्ट होते हैं, तो किसी दिन हमारे साथ किसान होते हैं, तो किसी दिन हमारे साथ विद्यार्थी होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ पीएचडी स्कॉलर हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सर, आप अपने बारे में बताएं, और कहां से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और आप इस क्षेत्र में कैसे आए, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
3: सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री लाल साहब सिंह, ग्राम पोस्ट भिटौरा मनकापुर का रहने वाला हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, वो मेरी बीएससी की जो मेरी शिक्षा है, वो आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से हुई है, जो कि कुमारगंज अयोध्या में है। मेरी एमएससी की भी पढ़ाई आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से ही हुई है, और मैं अभी पीएचडी शोध छात्र हूँ, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से कर रहा हूँ।
2: तो आपने सर ये बताया अपनी पढ़ाई लिखाई की जर्नी की, अब आप ये बताइए कि इसको ही क्यों आपने चुना, और क्षेत्र था?
3: शुरू से ही पापा जी हैं या बाबा थे, सब लोग घर से शुरू से ही खेती करते हैं। फार्मर बैकग्राउंड हमारा, मतलब जो बैकग्राउंड हमारा है वो खेती ही है, इसलिए कृषि में थोड़ा रुचि था, इसलिए हमने कृषि विषय चुना।
2: मतलब कहने का मतलब है कि फैमिली जो हमारी थी वो कृषि से जुड़ी थी, और हमें कृषि में ही मतलब आना पड़ा। और कोई चीज़ होता है, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस उसको करने के लिए हमारे पास हौसला होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है। अब सर, आज हम लोग जो बात करेंगे वो कद्दू वर्गीय फसलों का प्रबंधन एवं उत्पादन बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ गोंडा में अवध में जो है, सब्जी की भी खेती होती है, गन्ने की भी खेती होती है, धान की और गन्ना की। तो हम जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों से उसका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या है, इस विषय पर जानकारी दें सर।
3: सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार कहता हूं, और नारी ज्ञान स्थली का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे और आपके माध्यम से किसान भाइयों के बीच यथासंभव सही बातें पहुँचाने का काम कर रहा है। आज आप सभी ने विषय बहुत अच्छा चुना है, कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज हम ये देखेंगे कि उत्पादन में हम क्या क्या चीज़ें सुधार कर सकते हैं, और क्या क्या प्रबंधन करके हम अपने फसल उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं।
2: कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
3: कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख प्रजातियां जैसे कद्दू हो गया, लौकी, खीरा, परवल, तुरई, नुआ, करेला, पेठा, तरबूज, खरबूज आदि फसलें इसमें कद्दू वर्गीय फसलों में लगाई जाती हैं।
2: आपने कहा कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, अब अगर किसान भाई अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और खेत की तैयारी जो है वो कैसे करें?
3: किसान भाइयों को सबसे पहले तो अपना जो खेत की तैयारी करें, वही शुरुआती दिशा और दशा होती है खेती की। तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6 से 7.5 तक होना चाहिए। पीएच मान का मतलब ये हुआ कि एक पीएच पैरामीटर है, 0 से 14 तक इसकी एक स्केल होती है, जो कि मिट्टी की जांच जब कराएंगे तो पता चलती है। अगर 7 से नीचे है तो मिट्टी हमारी अम्लीय होती है, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होती है। दूसरी चीज़ है कि जल निकास एकदम से अच्छी रखें, अपने खेत से जल भराव ना होने पाए, और जैविक पदार्थों का खेत में उर्वरता अच्छी होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए क्या है, गहरी जुताई करें, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें और 20 से 25 जुताई के साथ ही 20 से 25 टन गोबर की खाद डालें और कतार एवं पंक्ति में बुआई करें ताकि लता फैलने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो सारी लताएं जब आपस में मिल जाएंगी फैल के तो उससे उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा।
2: जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें सही से और समय पे बुआई करना है। आप जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है?
3: सैंडी सॉइल होती है हमारी, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है कद्दू वर्गियों के लिए, ताकि इसकी जड़ें, जैसे कोई भी फसल है जितनी अच्छी उसके जड़ का ग्रोथ होगा उतनी अच्छी फसल का ही भी ग्रोथ होगा और उतना ही अच्छा हमारा उत्पादन होगा।
2: जी, तो सर जानना चाहेंगे कि इन फसलों की बुआई का जो समय है वो समय क्या है और किस समय में हमारे किसान भाई बहन इसकी बुआई करें कि जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिले और अच्छी फसल उनका जो है वो अच्छा हो सके।
3: देखिए, कद्दू वर्गीय फसल जो गर्मी गर्म मौसम की फसलें होती हैं, इनको हम जनवरी के लास्ट से और फरवरी माह के अंत तक बुआई कर देना चाहिए ताकि हमें मार्च और अप्रैल में, इससे अप्रैल तक मतलब फल मिल जाएं। और जो हमारी वर्षा मौसम होती है ये जून और जुलाई में, इसकी हमें जब भी वर्षा मौसम हमारा आएगा जून और जुलाई में इसकी हमें सोइंग कर देनी चाहिए।
2: जी, अब सर अगर बुआई कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
3: जैसे बुआई कर रहे हैं आप तो सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है उसमें भू परिष्करण जो क्रिया होती है वो बहुत अच्छी से की जानी चाहिए। जो आप गोबर का खाद डाले हैं वो जुताई से पहले डाल दीजिए ताकि जुताई करते टाइम पूरे खेत में मिल जाए, ताकि हमारी जो फसल हम लगाएं उसका जो पोषक तत्व है वो फसलें आराम से ले सकें।
2: जी, तो आप सर जानना चाहेंगे कि बीज उपचार कैसे हमारे किसान भाई बहन करें?
3: बीज उपचार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है कोई भी फसल लगाने से पहले, तो जैसे हम एक फंजीसाइड से भी बीज उपचार करते हैं और इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार करते हैं। फंजीसाइड का मतलब हो गया कि जो हम कवकनाशी का उपयोग करते हैं, जैसे हम थीरम का उपयोग करते हैं तो थीरम की मात्रा जो होनी चाहिए वो 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम उपयोग करना चाहिए। और अगर थीरम नहीं मिल पा रहा है तो आप कैप्टान की आती है एक दवा, वो भी आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी,
3: प्रयोग करने से पहले आप क्या करेंगे कि बीज को आप हल्का गीला करेंगे। अच्छा, बीज हल्का का गीला नहीं करेंगे आप तो अगर आप 2.5 से 3 ग्राम अगर दवा डाल रहे हैं तो वो दवा पूरे बीज में अच्छे से मिल ही नहीं पाएगी। और जब अगर बीज हम हल्का गीला कर लिए रहेंगे तो 3 ग्राम दवा जो हमारी है वो बहुत अच्छे से पूरे बीज में मिल जाएगी। दूसरा है इंसेक्टिसाइड, अगर हम यूज करते हैं तो इमेडाक्लोरोपिड आता है 70WP के नाम से, तो इसका हम 4 ग्राम लगभग प्रति किलो सीड वैक्स के हिसाब से उपयोग करते हैं। और अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ सावधानियां भी बरतेंगे, जैसे दवा की मात्रा जितना बताया गया है उतना ही प्रयोग करें, क्योंकि शाह जी आपने सुना होगा कि 2,4-D एक दवा आती है जो कि बीड के लिए आती है, खरपतवार के लिए। अगर उसी दवा का उपयोग हम 20 PPM से नीचे करते हैं तो वो दवा हमारी एक ग्रोथ रेगुलेटर के हिसाब से काम करती है, लेकिन अगर हम 20 PPM से ऊपर दवा का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी खरपतवार नाशी के हिसाब से काम करेगी। तो जो दवा का मात्रा मैं आपको बताया हूँ अगर इसी मात्रा में उपयोग करेंगे तो दवा अच्छे से काम करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उपचारित जो बीज है उसको बच्चों से दूर रखिए, बच्चों के साथ साथ पशुओं से भी दूर रखिए। और जो हमारे घर की खाद्य सामग्री है, जैसे कि आपका बीज जो उपचारित कर लिए हैं और भी बीज रखा है, आप ध्यान नहीं दे दोनों बीज मिल गया और अगर आप खाने के लिए उसका उपयोग कर लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए आप एकदम से इसको कहीं अलग जगह रखें और बीज उपचारित करने के बाद बीज को अच्छे से सुखा लें छाये में, धूप में नहीं सुखाना है, छाये में सुखाना है, और छाये में सुखाने के बाद इसकी बुआई तुरंत करवा दें।
2: तो अवसर हो गया बीज उपचार एवं कैसे करें और कौन कौन सी दवा करें। कभी कभी देखा गया है कि बीज उपचार करते समय हमारे किसान भाई बहन कुछ जैविक खादों का उपयोग करते हैं, तो क्या ये सर सही है? मतलब
3: जैसे जो हम बीज उपजा अगर जैविक तरीके से करते हैं तो 5 ग्राम ट्राइकोगर्मा 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं, और अगर कोई दवा नहीं मिल पा रही है तो हम पानी में 20% गौमूत्र मिला के 12 घंटे के लिए बीज को भिगो देंगे, तो उससे भी बीज के जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड जनित बीमारी हैं ये दूर हो जाते हैं
2: जी। अब सर जानना चाहेंगे कि पौधशाला नर्सरी की तो तैयारी है वो कैसे हमारे किसान भाई बहन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पौधशाला जो है नर्सरी जो है वो डालना।
3: जी ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि नर्सरी, देखिए जैसे अगर नर्सरी देखा जाए तो टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, इन फसलों की नर्सरी तो किसान करता है, लेकिन अभी अपने गोंडा में देखा जाए या अगल बगल तो जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं इनका नर्सरी का प्रचलन बहुत कम है। तो अगर नर्सरी का प्रचलन कम है यानी किसान को जानकारी का अभाव है थोड़ा सा, अगर नर्सरी का उपयोग करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या है पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई क्रॉप है आपकी, जैसे आप कद्दू या लौकी लगा रहे हैं, मान लीजिए कद्दू वर्गीय जो आती हैं, आपको ये लगाना है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट तक लगाना, जनवरी के लास्ट से फरवरी के लास्ट तक, तो आप क्या करिए एक पोर्ट्रे आता है जो कि आप किसी भी बीज की दुकान पर जाएंगे तो बहुत सस्ता 30-40 रुपए का आ जाएगा
2: जी।
3: तो लगभग एक पोल्ट्री में 30 सीडलिंग तैयार हो जाएंगे यानी आपके 30 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि अगर आप पोल्ट्री में तैयार करेंगे तो एक छायेदार कमरे में आप उसको जो फसल आपको लगाना है, जैसे हमें लगाना है 15 फरवरी को, तो हम 15 से 20 दिन पहले उस पौध को तैयार कर सकते हैं छायेदार कमरे में, या अगर हमें गर्मी में लगाना है कोई तो छायेदार कमरे में अगर लगाएंगे तो पौध को नुकसान भी नहीं होगा और पौध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम अन्य किसानों से 20 दिन हम जल्दी अपना पौध तैयार कर रहे हैं। अगर हम अभी 20 दिन जल्दी कर रहे हैं तो हम मार्केट में भी 20 दिन जल्दी पहुँचेंगे उन किसानों से, तो इससे हमारा उत्पादन तो अच्छा होगा ही, हमें मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर सारे किसान मार्केट में एक साथ आ गए तो उससे क्या होगा कि हमें रेट अच्छा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, तो हमारी लागत जो है ज़्यादा लग जाएगी और जो हमें पैसा आना चाहिए मार्केट से वो कम आएगा। तो नर्सरी के लिए क्या करें कि जो आपको पोर्ट्रे लेंगे उसमें 3 चीज़ मिलाना रहता है, एक कोकोपीट आता है और बर्मी कोलाइट और परलाइट, इनका अनुपात जो होता है 3:1:1 होना चाहिए। जैसे कि अगर जिस पात्र से आप इसको निकाल रहे हैं उस पात्र से 3 गुना ज़्यादा रहेगा आपका बर्लाइट, और परमिकुलाइट से 3 गुना ज़्यादा आपका कोकोपिट रहेगा। ये बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। कोकोपिट का मतलब ये होता है कि जो आप देखे होंगे कि जो ठेले पे ये नारियल बेचते हैं
2: जी।
3: तो इसी का जो छिलका रहता है उसी का हम मशीन से रिफाइन कर लेते हैं बहुत बारीक। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है यानी जल जो रोकने की क्षमता होती है कोकोपिट में मिट्टी से कई गुना ज़्यादा होती है। तो अगर हम बहुत हल्की भी पानी का बौछार डाल देंगे उस पर या फुहारा डालेंगे हजारा से तो काफ़ी दिन तक हमारा अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद लगाने के बाद जैसे ही 4-5 दिन बाद हमारे सीडलिंग आ जाएँ तो उसके बाद क्या करें आप, लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद 19-19-19 का एक स्प्रे आता है NPK का यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का, मार्केट में 19-19 के नाम से स्प्रे आता है, तो उसको आप स्प्रे कर दें ताकि जो पोषक तत्व है वो भी हमारे नर्सरी को अच्छा मिलता रहे। और बीच में क्या करें, लगभग अगर कोई दिक्कत आ रही फसलों पे, जैसे नर्सरी पे कोई कीड़ा हल्का आ रहा है या नर्सरी को हमारे नुकसान पहुँचा रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, नीम ऑयल आता है जो कि बहुत सस्ता आता है, महंगा नहीं बिल्कुल, उसको 1000 से 1500 PPM पे स्प्रे करें। 1500 PPM का मतलब ये हुआ कि लगभग 1 से 1.5 ग्राम नीम ऑयल लें 1 लीटर पानी में, और उसको जो छोटा सा स्प्रे आता है उससे पौध पे स्प्रे कर दें ताकि नर्सरी हमारी स्वस्थ रहे और पौधे भी अच्छे रहें ताकि उत्पादन अच्छा हो सके।
1: अभी तक आप सभी ने सुना कि हमारे इरफान शाह जी ने हमारे एक्सपर्ट से इतने सारे सवाल पूछे जिनका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। अब मैं चाहूंगी कि क्यों ना एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक हो जाए यहाँ।

गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018935394 और 8072168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं थर्सडे स्पेशल खेत खलिहान। और आज हमारे साथ में बतौर एक्सपर्ट हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह जी। तो धर्मेंद्र सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है?
1: जी मैम, बिल्कुल। तो जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, इनमें कई फसलें आती हैं, तो मैं फसलों के हिसाब से इसकी किस्में बता रहा हूँ। तो किसान भाई इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि उन्हें इसका बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे हम लोग खीरे की फसल लगाते हैं, तो खीरे के लिए एक पूसा उदय के नाम से वैरायटी आती है, दूसरी है कल्याणपुर ग्रीन, तीसरा है पंत खीरा एक, पंत खीरा दो, पंत खीरा तीन, एक आता है पूसा बरखा जो कि वर्षा ऋतु के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरा हमारी फसल है पंपकिन यानी कद्दू, तो इसके लिए एक पूसा विश्वास के नाम से वैरायटी आती है, पूसा हाइब्रिड वन आती है, काशी हरित आती है जो कि एक काशी हरित वैरायटी हमारे यूपी में वाराणसी में IIBR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सब्जी विज्ञान का, वहाँ से निकाली गई है वैरायटी। और अगली वैरायटी है नरेंद्र अग्रिम। नरेंद्र अग्रिम हमारी जो विश्वविद्यालय है कुमारगंज में, नरेंद्र देव जी के नाम से, वहाँ से वैरायटी निकली है। फिर हम लौकी की फसल लगाते हैं, तो लौकी की प्रजातियाँ हैं ऐसी पूसा नबीन, पंजाब कोमल, काशी गंगा, अर्का बहार और नरेंद्र लौकी एक। तो ये जो प्रजातियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रजातियाँ उत्पादन में भी बहुत अच्छी हैं और मार्केट के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं। अगली प्रजातियाँ बताएंगे करेले की। तो करेले की जो प्रजाति है पूसा दो मौसमी, ये दोनों मौसम में लग जाती है, पूसा हाइब्रिड वन और पूसा हाइब्रिड टू, कल्याणपुर बारामासी जो कि ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वैरायटी है जो कि हमेशा लगती है, कल्याणपुर सोना ये वैरायटी भी हमारी यूनिवर्सिटी की है, अर्का हरित हो गई। इसी हिसाब से हम लगाते हैं परवल, तो परवल की वैरायटी है राजेंद्र परवल एक। जैसे कि कुछ वैरायटी हम ऐसी बता रहे हैं, किसान भाई हमारा फल तो तोड़ लेते हैं और मार्केट ले जाने में उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये राजेंद्र परवल जो वैरायटी है ये लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी अगर ले जाना है तो भी ये वैरायटी अच्छी रहती है। जी जी, दूसरी वैरायटी है काशी अलंकार, उसके बाद आती है नरेंद्र परवल 260, 307 और 604। ये मुख्य कुछ किस्में हैं जो हमने आपको बताई, किसान भाई इसको नोट कर लें ताकि उन्हें बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल है, कहिए तो आपसे पूछे।
1: जी बिल्कुल
0: जी, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी लाभदायक फसलें और उसकी प्रजातियां बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कई लोग हैं जो शुगर से मतलब ग्रसित हैं, तो हमारे घर में अगर हम गार्डनिंग करना चाहें तो उस दौरान हम किस तरह की किस्म का करेला लगाएं, और या फिर हमें कई दफ़ा होता है कि हमारे पसंद में आता है खीरा, या फिर हम बहुत लोग लेडीज ही हैं चूँकि हम एक महिला हैं तो हम लोग डाइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, तो ऐसे खीरे की कौन सी प्रजाति हो जो हम घर में गार्डनिंग के दौरान उगा सकते?
1: गार्डनिंग के दौरान जैसे मैं आपको बताया था एक वैरायटी पूसा उदय
0: जी,
1: ये वैरायटी ओपन फील्ड में भी बहुत अच्छी हो जाती है और अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करना चाहे तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। कल्याणपुर ग्रीन भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अगर इन वैरायटियों को लगाएंगे आप चाहे किचन गार्डन में लगाएं और चाहे ओपन फील्ड में लगाएं, ये बहुत अच्छा ग्रो करती हैं।
0: और करेला?
1: करेले के लिए पूसा दो मौसमी आप लगा सकती हैं और कल्याणपुर बारहमासी जो कि अगर ये वैरायटी आप लगाएंगी तो ये हमेशा आपको फल देती रहेंगी।
0: ओके, अच्छा कई दफा होता है सर कि हम मतलब उगा लेते हैं घर में गार्डन में फिर भी हमारी करेले जो होते हैं वो मतलब उग भी आते हैं, फल नहीं आते उसमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: फलों के लिए दिक्कत ये है मैम कि जैसे हमने भी बताया था कि जो एक तो गर्मी की फसलें हो गई
0: जी,
1: दूसरी वर्षा ऋतु वाली फसलें हो गई हैं, तो इनमें क्या होता है कि अगर हम फसल जैसे जो जनवरी फरवरी में लगाना था हमको, अगर वो फसल हम मार्च में लगा रहे हैं थोड़ा लेट कर दे रहे हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये कद्दू वर्गीय की खास विशेषता है कि अगर तापमान जितना बढ़ेगा उसका जो नर फूल होता है उनकी संख्या ज़्यादा आएगी, मादा फूल बहुत कम आते हैं और अगर आते भी हैं तो उतने स्वस्थ नहीं रहते हैं, इससे उनमें पॉलिनेशन जो परागण होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये फूल हमारे टूट के आप वैसे ही निकल जाते हैं।
0: इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम अगर हम माने कद्दू वर्गीय फसलों के लिए तो उसको गर्मी मान सकते हैं?
1: जी ऐसा नहीं है, दोनों मौसमों की फसलें हमारी बहुत अच्छी होती हैं, चाहे गर्मी की फसलें हों चाहे वर्षा ऋतु की फसलें हों। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर फूल गिरने या ज़्यादा झड़े तो 0.2% यानी 0.2% बोरान का स्प्रे कर दें, तो उससे जो हमारे फूल हैं वो कम गिरते हैं।
0: अब एक नेक्स्ट वाला सवाल आपसे हम करेंगे कि पौधों की आपसी दूरी कितना रखनी चाहिए हमें पौधे लगाते वक्त?
1: मैम, पौधों की दूरी जैसे हम दो प्रकार की वैरायटियां मार्केट में आती हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड आती है और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी आती हैं उनकी दूरी हम थोड़ी कम रखते हैं हाइब्रिड से, जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं या 75 सेंटीमीटर तक रखते हैं, और जो क्यारी की पंक्ति की दूरी होती है वो हम रखते हैं 2 मीटर या 2.5 मीटर, और जो हमारी हाइब्रिड होती है उसका हम 75 से 90 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो हम 3 मीटर तक रखते हैं। अच्छा, दूरी कम रखेंगे अगर पंक्ति से पंक्ति की तो लताएं आपस में उलझ के रह जाएंगी। जैसे पौधों को आप समझ लीजिए कि ह्यूमन, जैसे अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो हम लोग को सफोकेशन होने लगता है, एकदम से वहाँ से ऊब जाते हैं, तो वैसे पौधों का भी है, अगर लताएं आपस में उलझ गईं तो एकदम से उनका उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए अगर हम स्पेसिंग अच्छी रखेंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा और पौधों की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी।
0: मतलब ये नाराजगी खाली हम इंसानों में ही नहीं है, पौधों में भी पाई जाती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो अभी हमको तो लग रहा है इरफान शाह जी के मन में भी अभी काफी सवाल हैं इन आज के मतलब कद्दू वर्गीय फसलों को लेके, क्योंकि उनकी शक्ल पे साफ साफ उनकी जिज्ञासा झलक रही है। तो अब बाकी के सवाल हमारे इरफान शाह जी ही पूछेंगे। इरफान शाह जी,
2: तो दोस्तों अब हम जानना चाहेंगे सर से अपने, क्योंकि खाद जो उर्वरक होती है बहुत जरूरी होता है, कोई भी फसल है अगर खाद हम डालेंगे तो उसका विकास होगा, उसका उत्पादन होगा। तो अब जानना चाहेंगे कि सर की जो उर्वरक है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कब कब डालना चाहिए पौधों में?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है, ताकि किसान भाइयों उर्वरक का कभी कभी उपयोग ऐसे ही कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैसे हम जुताई करते हैं फसल की बुआई के दौरान ही, तो गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो 20 से 25 टन यानी 200 से 250 क्विंटल ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। दूसरा आपका है कि आप बर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आपका जो NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास रहता है इसकी मात्रा होती है 80-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो 80-50-50 का मतलब ये हुआ कि आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 80 किलोग्राम है तो 40 किलोग्राम और पोटास और फास्फोरस का पूरी मात्रा यानी 50-50 किलोग्राम, यानी शुरुआती दौर में आपको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के दौरान दे देना है। उसके बाद जो बचा हुआ नाइट्रोजन हमारा आधा भाग है 40 किलोग्राम, उसको हमें 2 डोजेस में बांट लेना है, और जो हमारा 25 से 30 दिन जब हो जाए तब हमें जो आधा हम अपना नाइट्रोजन रोक लिए थे 40 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम यूरिया हम वहाँ से दे दें, और जब 45 से 50 दिन हो जाए तो जो बाकी बची यूरिया थी वो हम दे दें। और दूसरा यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक सल्फेट से आप दे सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बोरान की कमी होती है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं जब पौधा बड़ा हो जाता है, तो आप देखे होंगे कोई भी पौधा हो जब पौधे की निचली पत्तियाँ जब पीली पड़ जाएँ काले दाग के साथ, तो कोई रोग नहीं लगा होता है पत्तियों में, आप ये मानिए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, चले जाते हैं जो बीज की दुकान है खाद की दुकान है वहाँ से दवा ले आते हैं, और वो दुकानदार भी ना जानता है ना बताता है, वो दवा बांध के दे देता है। तो किसान भाई दवा का उपयोग करते हैं जबकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर नीचे की पत्तियाँ अगर पीली हैं तो आप समझिए नाइट्रोजन की कमी है, और अगर यही ऊपर की पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही हैं तो बोरान की कमी होती है। तो इसीलिए आप खेत में बुआई के दौरान ही बोरेक्स जो आता है, बोरान आपका आता है, वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें, और जब फसल में फूल या फल की कोई समस्या आए, तो जैसे फूल अगर आपका गिरने लगे या फल आपका जब फूल आ जाए फल बनने लगे, तो आप बोरान, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन तीनों का एक घोल बनाइए 0.5 5% पे और इनका स्प्रे कर दीजिए। यानी जो एक टंकी आपका स्प्रेयर आता है वो लगभग आपका आता है 15 लीटर का, तो अगर 15 लीटर का स्प्रेयर आपका आता है तो उसमें 75 ग्राम का घोल बनाइए, यानी 25 ग्राम बोरान लीजिए, 25 ग्राम आप लीजिए कैल्शियम और 25 ग्राम आप लीजिए मैग्नीशियम, इन तीनों का घोल बना के उस पर स्प्रे कर दीजिए, ताकि फ्रूटिंग जो क्वालिटी होगी, फल की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। कुछ समस्याएं ये भी आती हैं कि जब फूल आ जाता है तो फूल गिरने लगता है या झड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करें, 0.2% यानी 0.2% बोरान का वो स्प्रे कर दें, या फिर 1919 का जो यूरिया आता है, एनपीके आता है 1919 का, रिसियो का आता है, मार्केट में मिलता है, किसी दुकान पे आप पा जाएंगे, उसका 1% के रूप में स्प्रे कर दें, ये कर सकते हैं किसान भाई।
2: सर अभी आपने कहा बोरान और नाइट्रोजन, तो सर अगर बोरान और नाइट्रोजन अगर हम ये दवा है जो छिड़काव खाद का कर रहे हैं, तो इस समय हमें किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे अगर हम डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी के साथ जिंक कभी ना दें। अगर डीएपी के साथ हम जिंक दे दिए तो वो खाद एकदम से बेकार हो गई
2: जी।
1: वो पौधों को नहीं लगेगी। दूसरा चीज़ ध्यान ये रखना है खाद देते टाइम किसानों को कि जैसे मैंने कहा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया मैंने कहा, तो जो हमारी यूरिया की बोरी आती है इसमें क्या होता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी अगर हम एक कुंटल यूरिया अगर हम मार्केट से खरीदे तो उसमें हम 46 किलोग्राम ही यूरिया पाएंगे। तो ये ना देखें कि 46 ग्राम यूरिया डाल दें। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा डीएपी होता है उसमें 46% फास्फोरस होता है और 18% यूरिया होता है, तो 18% यूरिया वहाँ से वो कवर कर ले रहा है और 46% यूरिया नाइट्रोजन से कवर कर ले रहा है। तो किसान भाई जब भी उपयोग करें तो ये देखते हुए उपयोग करें कि उन्होंने कितना खाद डाला है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाद डाल देंगे जैसे नाइट्रोजन
2: जी
1: अगर ज़्यादा डाल दे रहे हैं किसान, तो क्या होगा उसकी लताएँ बहुत बढ़ जाती हैं
2: जी,
1: और अगर लताएं बढ़ जाएंगी तो फ्रूटिंग उसमें कम होगा, खाली लता लता जैसे हम कैनोपी बोलते हैं
2: जी,
1: तो कैनोपी ही उसकी बढ़ जाएगी, बाकी उसमें फ्रूटिंग बहुत कम होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद हमको यूरिया नहीं देना है
2: जी।
1: उसके बाद आप बोरान थोड़ा दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, बाकी आपको यूरिया तो बिल्कुल नहीं देना है। और डीओपी की बात रही डीएपी की, तो डीएपी हमें बुआई के टाइम ही देना चाहिए, क्योंकि डीएपी जड़ों का विकास अच्छा करती है। जो खादें बनाई गई हैं वो पौधे को देखते हुए बनाई गई हैं, जैसे सल्फर हमारा बना है पौधों को क्वालिटी बढ़ाता है, प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाता है, और जो उसकी जड़ें होती हैं उन्हें रोग प्रतिरोधी बनाता है। तो जो भी फर्टिलाइजर्स दें वो टाइमली दें, ये ना दें कि डीएपी बाद में दे दें, यूरिया पहले दे दें, या यूरिया पहले दें डीएपी बाद में दें, तो इन चीज़ों का ध्यान किसान भाइयों को अवश्य रखना पड़ेगा।
2: अब तो ये खाद की

0: ड्रिप सिंचाई से करना फसल के लिए कितना फायदेमंद है, हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
1: जी बिल्कुल इरफान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी सिंचाई होती है, एक तो नॉर्मली जो गांव में अभी किसान कर रहे हैं फ्लड विधि से,
0: जी लपेटा जिसे
1: कहते हैं, मतलब जैसे पाइप लाए और क्यारी में या पंक्ति में जो हमारी लगाए हैं फसलें उनमें रख दिए, तो वो एकदम से फ्लड इरीगेशन उसका होता रहेगा। दूसरा क्या है, ड्रिप इरीगेशन हम कर सकते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, हम स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हैं। तो जो हमारी पुरानी विधि है, जैसे आप लपेटा बोल रहे हैं
0: जी,
1: जो पाइप से करते हैं या फ्लड इरीगेशन करते हैं
0: जी,
1: तो उसमें समस्या क्या आती है कि अगर मचान विधि से कोई आदमी कद्दू वर्गीय फसलों की खेती किया है तब तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका अगर हम पूरा खर्चा जोड़ेंगे तेल का या भूमि हमारी ऊंची नीची हुई तो उसकी समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि अगर हम फ्लड इरिगेशन कर दिए, चैनल हमारा कहीं टूट गया, जो क्यारी है टूट गई, तो पानी पूरे खेत में फैल जाएगा, तो उससे समस्या ये आएगी कि जो हमारे फल हैं या जो तने हैं वो सारे पानी में डूब जाएंगे, तो फल भी सड़ने लगता है और कई रोग हैं जैसे डाउनी मिल्ड्यू हैं आदि रोग हैं ये भी लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा है। जैसे ड्रिप इरिगेशन को टपक सिंचाई कहते हैं, टपक सिंचाई के लिए पौधे को क्यारी या पंक्ति में एक लाइन से लगाएं। दूसरी क्या है, पौधे से टपक विधि की जो पाइप होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर दूर लगाएं, और जो टपक सिंचाई का पानी का डिस्चार्ज होता है कि पानी कितना छोड़ेगा, उससे 2 से 4 लीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जब टपक सिंचाई आप लगवाएं ड्रिप इरिगेशन, जो लगाने आए उनसे किसान भाई बोल दें कि हमें 2 से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्चार्ज होना चाहिए। जब टपक सिंचाई से क्या होता है, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है। शाह जी अभी मैं बताना चाहूँगा आपको किस्सा क्या हुआ कि अभी मेरी मुलाकात विश्वविद्यालय में ही एक जेपी मेहता सर हैं जो कि प्रोटेक्टर का काम बड़ा अच्छा करते हैं, जो कि राजस्थान से आए थे। तो उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में पानी की इतनी दिक्कत है कि आपसे क्या बताएं, फसलों के लिए पानी नहीं मिला, वहाँ पीने की दिक्कत है। तो वो क्या करते हैं कि जितना वो खेती जितने एरिया में करते हैं उतना एरिया ही वो पॉलीथीन का मल्टिंग वाली पॉलीथीन लगा के एक गड्ढा बना लेते हैं, उसमें पूरे बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और उसी बरसात के पानी से वो अपनी 2 फसलें ले लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ जहाँ देखा गया है कि जैसे गन्ने की फसल है, जो मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ गन्ने की या धान की फसल है या कोई अन्य फसलें हैं, किसान भाई क्या करते हैं, पानी दिन भर मोटर रात भर मोटर चला देते हैं। उससे दिक्कत क्या होता है कि आपने चला तो जैसे आप ही हैं या हम ही हैं, मैंने पहले ही बताया कार्यक्रम में, मैं आपसे बताया था कि जैसे पौधों को मानो ही समझिए, जैसे हमें 2 रोटी की भूख है
0: जी बिल्कुल,
1: और हमारे सामने कोई 3 रोटी रख दे तो हम खा तो लेंगे कैसे भी, लेकिन या तो पलटी हो जाएगी या अन्य कोई दिक्कतें आ जाएंगी। तो वैसे हमारी फसलें भी हैं, उनमें क्या है कि अगर हमें जितने पानी की आवश्यकता फसलों को हैं वो उतना लेंगे, लेकिन हम लोग जैसे गांठी गांठी तक भर देते हैं पानी, पूरा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन में 60 से 70% तक पानी की बचत हो जाती है
0: जी।
1: यानी जो हम फ्लड से कर रहे थे कि जहाँ हमारी फसल नहीं लगी थी वहाँ भी पानी हम दे रहे थे, लेकिन ड्रिप से क्या करते हैं कि पौधों के जड़ों के पास ही पानी देते हैं। इससे क्या होता है, एक फ़ायदा और भी है कि रोग कम लगते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुके हैं कि फल भी कम खराब होते हैं, क्योंकि अगर फल पानी में नहीं डूबेगा तो फल में सड़न नहीं पैदा होगी, नहीं मिट्टी के संपर्क में अगर फल है और अगर पानी लग गया तो नीचे से सड़ने उसमें सड़न पैदा हो जाती है। दूसरी है कि उपज में लगभग 20 से 30 या 40% तक बढ़ोतरी देखी गई है, ये कई रिसर्चों में निकल के आया है। और अगर हम ड्रिप विधि से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो हम खाद को भी फर्टिगेशन के रूप में दे सकते हैं। और अगर स्प्रिंकलर की बात रही तो स्प्रिंकलर विधि में क्या करते हैं, उससे भी पानी की बचत होती है, लेकिन सबसे कम पानी की बचत होती है हमारी ड्रिप में। स्प्रिंकलर से क्या करते हैं कि जैसे ये 1-1 मीटर का बीच बीच में पाइप लगा रहता है, उसको हम 1-2 घंटे के लिए खोल देते हैं तो पूरे खेत में, स्प्रिंकल का मतलब ये हुआ कि वर्षा के रूप में जल मिल जाता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई बहुत अच्छी मानी गई है
0: जी। मतलब कहने का मतलब है कि पौधों के पास में नमी जो है वो बरकरार रहती है और पौधों को जितनी ज़रूरत है पानी उतना ही पौधा को पानी मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि लगातार हम लोग सिंचाई करते हैं तो पानी अगर बेवजह अगर बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले समय में पानी का संकट बहुत हो सकता है, क्योंकि खेती के लिए

0: पानी बहुत ज़रूरी है और सिंचाई प्रबंधन भी करना है किसान को। अभी आपने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी है, ऐसे कई राज्य हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं, तो हमें फसल भी लेना है और सिंचाई भी करना है, तो इसका ख्याल हमें रखना है। हमारे किसान भाई बहन जो कार्यक्रम सुन रहे हैं खेत खलिहान, उनको इस विशेष बात को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अगर सिंचाई हो रही है तो उसका जो रकबा है, रकबा के हिसाब से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो पानी की जो बर्बादी है वो कम होगी और उत्पादन जो होगा बहुत अच्छा मिलेगा। और ड्रिप के लिए सरकार कई सारी योजनाएं भी शुरू की है, आप उद्यान जी बिल्कुल उद्यान विभाग से भी आप ले सकते हैं
1: जी।
0: अब ये तो सर सिंचाई की बात हो गई, सिंचाई के बाद में क्या होता है कि पौधों में बहुत सारे रोग भी लगने लग जाते हैं। कभी कभी हम सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो कीड़े हैं, फूल वाले कीड़े हैं, जब उसमें फूल आ जाता है, सिंचाई होती है उसके बाद में पौधों में फूल आ जाता है, फल लग जाते हैं, तो उसमें देखा गया है कि कुछ जो फूल को खा जाते हैं, तो प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन जो है वो हमारे किसान भाई बहन कैसे करें और उससे कैसे बच सकें, हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
2: जी बिल्कुल, जो कद्दू और गेहूं के जो प्रमुख फल हैं, जो प्रमुख फसलें हैं, उनके बारे में जो प्रमुख रोग हम बता रहा हूँ आपको, जैसे एक डाउनी मिल्ड्यू लगता है जो कि कवक जनित रोग है, या उसे हम बोलते हैं फफूंद रोग बोलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू यानी फफूंद रोग में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और जो अगर जैसे कोई कद्दू की या लौकी की पत्ती अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके निचली सतह पर बैंगनी या भूरे रंग का फफूंदनुमा लेप आपको दिखेगा। तो इससे आप ये समझ जाइए कि आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू आ चुका है। अच्छा, अभी आपने सिंचाई की बात की थी, तो ये डाउनी मिल्ड्यू का क्या है कि अगर मौसम ठंडा रहा या अगर पानी पत्तियों में लगा रहा तो ये रोग आने का खतरा और ज़्यादा होता है। तो इसके हम प्रबंधन के लिए क्या करें कि एक तो प्रतिरोधी किस्में लगाएं, जो कि बहुत सी प्रतिरोधी किस्में आती हैं वो लगाएं। दूसरा क्या करें, जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी रखें अपने खेत से, कि खेत में जल भराव ना होने पाए, अधिक नमी ना रखें खेत में। और आखिरी में हम केमिकल का उपयोग जो करते हैं वो मैनकोजेब 75% WPP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम स्प्रे करें। दूसरा हमारा जो रोग है वो पाउडरी मिल्ड्यू है
0: जी।
2: ये भी कवक जनित रोग है जो कि पत्तियों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद या भूरे रंग का पाउडर जैसा धब्बा दिखाई देता है। जैसे जो किसान भाई देखते होंगे कि लौकी की पत्तियां हैं या कद्दू की पत्तियां हैं, खीरे की, जो कद्दू वर्गीय फसलों की पत्तियां हैं, उनमें जैसे पाउडर जैसा जम जाता है पत्तियों पे
0: जी।
2: तो वो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है उसका लक्षण है। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है ये, तो उसके तने पर भी ये फैलता है और फल पे भी आप देखेंगे कि सफ़ेद जैसे पाउडर जैसा धब्बा पाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, सल्फर 80% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। तीसरा क्या हमारा है, मोजैक रोग जो कि वायरस से होता है। इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिन पौधों में वायरस लग जाए उन पौधों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए खेत से, और वायरस लगने के बाद कोई दवा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वायरस जनित जो रोग होते हैं वो अगर एक बार लग गए तो जाएंगे नहीं। उससे पहले जो उसका प्रबंधन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें लक्षण क्या आते हैं, पत्तियों पर हल्के और गहरे रंग के चित्ते दिखाई देते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, और इसका आकार आप देखे होंगे तो जैसे पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं जैसे हम बोलते हैं, या दाने नुमा आकार पत्तियों पर आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। ये जो रोग होता है हमारा मुझे को, ये एफिड यानी जो माहू होता है कीट बोलते हैं, या जो सफ़ेद मक्खी होता है फल का, इससे फैलती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml, ये दवा किसान भाई नोट कर लें, इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें। दूसरा क्या करें, जैसे फूल आने से पहले ही किसान भाई इनमें ट्रैप लगा दें, जैसे येलो ट्रैप आता है, तो आप अगर दुकान पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। और अगर किसान भाई वो भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, जैसे जो टीन होता है घर में पड़ा रहता है, तेल का टीन आता है शाह
0: जी,
2: उसमें क्या करें, पीले रंग से उसको रंग दें
0: जी,
2: और उस पे जो कैस्टर यानी अरंडी की जो तेल आता है वो लगा दें कि चिपचिपा सा बन जाए
0: जी।
2: और एक हेक्टेयर खेत में कम से कम 25 से 30 जगह लगा दें
0: जी।
2: ये कम से कम अपनी फसल से एक दो मीटर ऊंचा खड़ा कर, डेढ़ मीटर दो मीटर ऊंचा खड़ा कर दें, तो जो ये मक्खियां हैं ये पीला रंग देके आकर्षित बहुत होती हैं
0: जी।
2: तो अगर आके हमारे ट्रैप पे बैठेंगे, उसी टीन पे अगर बैठ गई तो उसी पे चिपक जाएंगी। एक जो मक्खी होती है ये लगभग 3-4 हज़ार अंडा देती है एक बार में, और इसका लाइफ साइकिल 3 दिन होता है। तो अगर एक बार ये फसल पे आ गई तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। दूसरा होता है डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ के लिए मैंने आपको पहले नर्सरी में बताया था कि अगर नर्सरी लगाएंगे, होता क्या कि डैम्पिंग ऑफ में अगर हम पौधा लगा दिए हैं, पानी ज़्यादा पड़ेगा तो सड़ जाएगा। तो इसमें हम नर्सरी लगाएं, अगर कोई पौधा सड़ भी गया हमारा तो नर्सरी में वो तैयार पौधा है, जो सीडलिंग हमारी है, तो उससे किसान का समय नहीं खराब जाएगा। ये हो गया। अब हम कुछ क्या नाम है जो कीड़े हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे
0: जी।
2: तो जो मुख्य कीड़ा है, सबसे मुख्य कीड़ा तो कद्दू वर्गीय फैमिली का ये है, रेड पम्पकिन बीटल। ये पत्तियों में क्या करता है, छेद कर देता है, और जो कोमल कोमल फूल आते हैं नए नए उनको खा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, येल्लो स्टिक की ट्रैप लगाते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया पहले कि टीन पे पीला रंग रखे कैस्टर का तेल लगा दें, वो इस पे करें, और खेत की गहरी जुताई करें बुआई से पहले। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंट किस्में लगाएं। तीसरा में जो केमिकल का उपयोग करते हैं वो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें। दूसरा क्या है, जो फ्रूट फ्लाई आपको बताया था कि जो फल मक्खी होती है जो वायरस फैलाती है, इसके लिए क्या करें, यह एक मक्खी होती है जिसका रंग पीला या मतलब भूरा होता है, देखे होंगे आप लोग खेतों में, किसान भाई देखते होंगे जी बिल्कुल, ये अमरूद में, पपीते में, फसलों में, कई फसलों में लगती हैं। तो इसके कारण जो मादा मक्खी होती है ये फल के सतह पर अंडा दे देती है
0: जी।
2: तो वो क्या करते हैं, जो उससे लार्वा निकलता है यानी जो अंडा से बच्चा या जो कीड़ा निकलता है वो फल के गूदा में घुस के फल को खा कर सड़ा देता है। तो इससे हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करें, मेलाथियान 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें
0: जी।
2: या हम जैसे एक ट्रैप आता है हमारा मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप, ये ट्रैप का मतलब ये हुआ कि ये ट्रैप आता है एक सुगंधित आकर्षण पदार्थ इसमें होता है, जो ये मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप है जो नर मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर नर मक्खी ही नहीं रहेंगे तो प्रजनन की क्रिया भी बहुत कम होगी, और अगर प्रजनन की क्रिया ही नहीं होगी तो मक्खियों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। तो इसके लिए हम इसको बनाते कैसे हैं, एक बोतल ले लेंगे हम, उसमें हम 5 से 6 छेद कर देंगे कि मक्खी उसमें घुस सके, और मिथाइल यूजेनॉल का 0.1% ले लेंगे और मेलाथियान 50 EC 0.1% में ले लेंगे, और इसको हम पानी में मिलाकर 25 से 30 ट्रैप इसका हम अपने एक हेक्टर खेत में लगा देंगे। दूसरा क्या है, माहू यानी एफिड जो मैं आपको बताया था, ये जैसे अगर कोई पत्तियां उठाएंगे ना तो ये निचली सतहों पर पाई जाती हैं, तो पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती हैं और ये पौधों का रस चूसती रहती हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी आप इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। इसमें आप येल्लो स्टिक की ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो कि 20 से 25 या 30 ट्रैप तक आप अगर प्रति हेक्टेयर लगा देते हैं तो उसमें इन माहू का खतरा कम हो जाता है।
0: अब सर जानना चाहेंगे कि फूल गिरने की समस्या क्यों होती है और इसका उपाय क्या है। कभी कभी देखा गया है कि जो पौधे हैं उसमें में से फूल जो है वो गिर जाते हैं और हमारे किसान भाई के जो फसल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उत्पादन भी नहीं मिल पाता है, तो इसका निवारण कैसे करें और कैसे बच सकें।
2: जी, फूल या फल गिरने की जो समस्या होती है वो सबसे पहले होता है कि जो पॉलिनेशन होता है यानी परागण, उसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, जैसे लौकी हो गया आपका, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, इन सब में तो मादा फूलों की संख्या कम होती है, ये भी एक समस्या है। अधिक तापमान या वर्षा, ये भी एक समस्या है। खाद और पानी का असंतुलन न बनाए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। कीटों का प्रकोप जो होता है, फल मक्खी अगर आ जाएँ तो इनके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें, और जैसे मैंने आपको इसमें फर्टिलाइजर से बताया था कि फूल गिरने की समस्या अगर आप देखें या फल झड़ने की, तो 0.2% बोरान का स्प्रे कर दें।
0: आप जानना चाहेंगे कि सर खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि फसलों में देखा गया है कि खरपतवार जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे फसल जो है हमारी वो ग्रोथ नहीं हो पाती है और किसान भाई बहन को उत्पादन कम मिलता है। तो इसका निवारण हमारे किसान भाई बहन कैसे करें?
2: जी बिल्कुल, तो खेत की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो उसी टाइम लगभग हम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर दें। जो हम जून जुलाई में लगाते हैं, तो ये मई में अगर हम जुताई कर दें, एक महीने के लिए छोड़ दें खेत, तो इससे खरपतवार की समस्या बहुत कम रहती है। दूसरा क्या है कि अगर लताएं फैल गई हैं तो उससे फिर हम हाथ से ही खड़ निकालें, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम मल्चिंग कर सकते हैं, यानी एक पतली पॉलीथीन से मल्चिंग सीट आती है, उससे कवर कर दें फील्ड को, उससे खरपतवार की समस्या बहुत कम रहती है। उसके बाद हम केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेंडामिथिलीन का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का भी उपयोग करके खरपतवार की समस्या बहुत हद तक कम कर सकते हैं।
0: तो आप जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय की मिश्रित जो खेती है वो इंटरक्रॉपिंग हमारे किसान भाई बहन कैसे करें?
2: जी, इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि एक ही खेत में उसी समय दो या दो से अधिक फसलें एक साथ इस तरह लगाएं कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि हमें वे लाभ दें। जैसे अगर हम लता जमीन पर अगर खेती कर रहे हैं कद्दू वर्गीय की, तो भी हमें कर सकते हैं मिश्रित खेती, या मचान विधि से कर रहे हैं तो भी खेती कर सकते हैं। इसमें कुछ मिश्रित खेती के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर, अगर इनकी खेती करेंगे तो खेत में ये हमारे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है कि धनिया, मेथी या पालक हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेल जो इसकी लता होती है उसके फैलने से पहले ही इसकी कटाई हो जाती है, धनिया या मेथी या पालक की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मक्का का उपयोग हम करते हैं। अगर मचान विधि की तरह मक्का का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, इन फसलों में हम मक्के का उपयोग मचान विधि से भी कर सकते हैं और हमें भुट्टा भी प्राप्त हो जाता है। अगला क्या है कि सूर्यमुखी या तिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे सूर्यमुखी या तिल अगर हम बीच में या किनारे लगाएंगे तो इससे जो हमारी परागण या पॉलिनेशन की जो समस्या होती है, फूल गिर जाते थे, उसमें कुछ हद तक सुधार आएगा। जैसे कि जो सूर्यमुखी होती है, इसका जो फूल होता है पीले रंग का होता है, जिससे देख के मधुमक्खियाँ बहुत आकर्षित होती हैं, वो आएंगी सूर्यमुखी के पास, तो परागण क्या नाम है जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें भी करेंगी, तो ये बहुत लाभदायक रहेगा। कुछ मैं क्या नाम है इसके जो लाभ हैं वो आपको बताता हूँ। कम समय में लंबी अवधि वाली फसलें एक साथ लगाएं, मतलब एक फसल लगाएं कि जो हमें इंटरक्रॉपिंग के लिए लगाना है कद्दू वर्गी में, उसका जो अवधि है वो कम समय का रहे, ताकि हमें पहले कटाई हो जाए लता फैलने से पहले। दूसरा क्या है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देती हैं और उत्पादन में आय तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि एक खेत में हम जैसे कद्दू वर्गीय फसल ले रहे हैं, अगर साथ में कोई फसल हम थोड़ा और ले लिए तो उससे हमारी आय बढ़ जाती है और खाली जगह का हम उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये फ़ायदे हैं इंटरक्रॉपिंग के, मिश्रित खेती के। किसान भाई बिल्कुल मिश्रित खेती करें।
0: जी, आप जानना चाहेंगे कि इन फसलों की बाज़ार में बेहतर कीमत कैसे पाएं, क्योंकि हमारे किसान भाई बहन जो फसल उत्पादन करते हैं उसको बाज़ार में इनकी कीमत कैसे पाएं और ये कैसे पहुंचाएं, हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
2: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि पैदा तो हर किसान कर लेता है लेकिन उसकी कीमत नहीं मिल पाती है उसको अच्छी, तो उसके लिए क्या करें। जैसे कुछ अर्ली यानी जल्दी की वैरायटियां होती हैं और कुछ देर की वैरायटियां होती हैं, तो वो लगाएं कि हम मार्केट में अन्य किसानों से जल्दी पहुंचें या अन्य किसानों से देर में पहुंचें, तो उसका हमें उसके जो पैसा होता है प्रति किलो हिसाब से उसमें हमें अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि आप सीजन में हम लगाएं। आप सीजन का मतलब ये हुआ कि जब सीजन ना रहे, बिना सीजनी वाली जो सब्जियाँ रहती हैं आप देखें होंगे मार्केट में शाहजी, उनका कीमत बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि जो काम हमारा वेंडर यानी जो काम जो बिचौलिया करता है वो काम हमको करना चाहिए, जैसे साफ़ सुथरा सब्जियां या ग्रेडिंग करना चाहिए। जैसे कद्दू लगा रहे हैं आप या लौकी लगा रहे हैं, तो जो दाग धब्बे वाली लौकियाँ उनको अलग कर दें, जो फ्रेश लौकियाँ हैं उनको अलग कर दें, और उनको हम क्या नाम ग्रेडिंग करके या साफ़ सुथरा करके उसका पैसा हमें थोड़ा अच्छा मिल सकता है। स्थानीय मंडी में ना बेचें, स्थानीय मंडी में बेचने के अलावा ये करें कि वो सीधे ग्राहक को बेचना चाहें, उससे हमें पैसा अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर हम मंडी में गए हैं तो मंडी में थोक में हमें बेचना पड़ जाता है, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो अगर हम बेच देंगे तो वही जो मंडी में बेचते हैं वो लोग 30-40 रुपए किलो शाम को बेचते हैं, तो ग्राहक अगर सीधे पहुंचेंगे और 10 के बजाय 20 में बेचेंगे तो किसान का दुगना फायदा है। और तीसरा चीज़ क्या है कि थोड़ा थोड़ा कर बेचें। और हम क्या करेंगे कि हम अगर जैविक या देसी तरीके से यानी ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसकी उगाई गई फसलों का हमें अच्छा पैसा मिलता है। या और दूसरा क्या किसान भाई क्या करें, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो सामान्य लौकी हमारी होती है, लौकी पे दे रहा हूं कि अगर सामान्य लौकी है अगर वो 10 से 12 रुपए किलो बिक रही है, अगर वही हम ऑर्गेनिक बताकर बेचें या सर्टिफिकेट हमारे पास रहे ऑर्गेनिक का तो 25 से 30 रुपए किलो बिक सकती है। और अगर हम ऑफ सीजन लौकी बेच रहे हैं तो उसका कीमत हमें 50 से 60 रुपए किलो तक भी मिल सकता है। तो अगर किसान भाई ऐसा करेंगे तो उनका फायदा ही फायदा रहेगा।
1: तो आज आप सभी ने जाना गौधुली स्पेशल में खेत खलिहान में कि कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, कैसी हमारी फसलें होनी चाहिए, कौन सी प्रजातियां हमें यूज करनी चाहिए और कौन से मौसम में इनको उगाना चाहिए और किस प्रकार से इनको हम मार्केट तक ले जा सकते हैं और उचित लाभ पा सकते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट थे धर्मेंद्र सिंह जी और साथ ही में हमारे को होस्ट थे इरफान शाह जी। अब दीजिए हमें इजाजत और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे, बिल्कुल वही थर्सडे स्पेशल आपका गौधुली खेत खलियान। तब तक के लिए नमस्कार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9281-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
4: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
14: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
15: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
14: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
15: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
14: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की ही नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला। फिलहाल आज आरजे बीना वाला नहीं है, आज मैं हूं आप सभी के साथ एक

विशेष प्रस्तुति के साथ। हमारे साथ इट्स कुमार जी हैं और सलीम जी को मैं देख पा रहा हूं अपने साथ। कुछ लोग चले जाते जैसे दिन रात गुजर जाया करते, कुछ लोग चले जाते जैसे दिन रात गुजर जाया करते, कुछ लोग शरद के बादल से चुपचाप बिखर जाया करते, कुछ लोग मगर भर जाते हैं रजनीगंधा मन प्राणों में, चुपचाप बसा जाते बस्ती खामोश पड़े वीरानों में। इस दुनिया के कुछ लोग आते हैं और सदा के लिए इस दुनिया के होकर रह जाते हैं। वो ये रहें या ना रहें, लेकिन उनकी आवाज गूंजती रहती है। न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे वो लता जी की आवाज़ हो, रफ़ी साहब की आवाज़ हो, मुकेश कुमार की आवाज़ हो, महेंद्र कपूर की आवाज़ हो। इंसान जाता है, आवाज़ इंसान को अमर करती है। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं पढ़ता हूँ कि साहित्य कभी नहीं मरता, और साहित्य के साथ ही अमर हो जाता है साहित्यकार। लेकिन उसके पश्चात ये भी जाना कि आवाज़ भी नहीं मरती, आवाज़ अमर हो जाती है। एक ऐसी ही अमर आवाज़ जो आज के दिन शांत हो गई और शायद उनकी शख्सियत से दोबारा कोई वाक्य सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो वो बोलकर चले गए वो वादियों में गूंजती रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाना पाटेकर जी की, जिनकी आज मृत्यु हुई। गोलोकवासी हुए वो, और सनातन धर्म कहता है कि पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे सीधा मोक्ष मिलता है। 75 वर्ष की आयु में हमने एक ऐसे अभिनेता को खोया जो अभिनेता होने के साथ साथ रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार और कुछ फिल्मों के निर्देशक भी थे। आइए, उनकी आवाज के, उनकी संवाद अदायगी के लोग दीवाने हैं, और उनका संवाद आपको सुनाता हूं, और उसके बाद बात करूंगा उस आवाज के मालिक के बारे में। जी, हमारे साथ आशु मिश्रा जी हैं लखनऊ से, शुभ संध्या आपको भी। आइए उनको उन्हीं की आवाज में पुकारते हैं, उन्हीं की आवाज में आपको उनका एक बहुत ही मशहूर संवाद अदायगी को सुनाते हैं, जिसको लिखा ही नहीं गया था। फिल्म जब बन रही थी तो ये हुआ कि फांसी देनी है। उस समय नाना पाटेकर साहब को 102 डिग्री बुखार था, टेम्परेचर था, और ये हुआ कि अब आज का ये सीन जो है वो रद्द किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक बदलाव करना चाहता हूँ। जो दृश्य फांसी का दिखाया जा रहा है जेल में, मैं चाहता हूँ उसे चौक में दिखाया जाए। और वहां पर जब वो पहुंचे तो पहुंचने के पश्चात उनके मन में जो आया वो बोलते चले गए। वो संवाद उस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं।
और एक ही बार बोला और शाह टोके हो गया। जब इंसान दिल से बोलता है साहब तो ऐसे बोलता है। कुछ दिमाग में नहीं था उनके। वो सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे और उसके पश्चात उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में न जाने कहां से ये एहसास आया और मैंने बोलना शुरू किया। मेरे मन में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, न मैं कुछ सोच कर गया था। तो जी हाँ, बिना कुछ सोचे समझे वो गए और उन्होंने जो बोला वो फिल्मों की दुनिया में अमर संवाद अदायगी बनी। आज के कार्यक्रम की इस प्यारी से शुरुआत करते हैं उस संवाद से। हो सकता है ये संवाद आपको भी पसंद आए, ध्यान से सुनिएगा। सुनते रहिए और रेडियो गणसलेट 9.6 FM, ये अब गोंडा ही नहीं बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। फिलहाल चलते हैं वो उस संवाद की तरफ जो लिखा ही नहीं गया था, सिर्फ दिल से बोला गया था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए लाचार चल,
1: बना लो कुछ, उठा के लेके जाएंगे मामा, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बना लो कुछ उठा के लेके जाएंगे, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को।

0: अरे जो है तुझ पर सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है। अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्य बनने में भी शर्म नहीं आएगी।
1: अरे चुप कर शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ कौन आएगा। अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली बाइक।

0: दे मुझे, कल से पानी भरे तो ही जाएगी।
1: हाँ मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊं। अरे कहाँ
2: छोड़ोगे? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो।
3: अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने पे
4: तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला, तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है।
3: भाई तेरा मुनि मुंह लोग क्या कहेंगे?
5: तो क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: आप
5: वो साले गुंडे मोबालियों के साथ में,
3: नहीं तो
5: तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती।
3: अरे क्या क्या मगमग कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है।
4: अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल।
5: क्या आसरा है? है? क्या आसरा है?
3: तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता।
4: अरे नहीं बैठे तो ना सही।
6: तू मेरे को एक बात बता पहले।
3: क्या?
6: मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो?
3: ना, ना, ना,
6: मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो?
4: बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर।
6: बेटे रंडी बाजी तो नहीं करते हो ना?
7: अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है?
6: ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है?
3: कन्फर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खाके गाना गाते।

जी हाँ, ये वो आवाज़ है जो हमेशा के लिए शांत हो गई। भरपूर भावपूर्ण श्रद्धांजलि नाना पाटेकर को। वो हंसी, शायद जो वो हंसते थे वो दुनिया पर हंसते थे। उनके उनकी संवाद अदायगी का ढंग, उनके चेहरे पर आने वाले भाव, उन्हें एक श्रेष्ठ अभिनेता बनाते थे। उनकी कुछ झलकियां हमने आपको सुनाई और अब उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारा ये प्यारा सा गीत समर्पित है नाना पाटेकर को।

0: जी हाँ, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा जिसको पहला काम जो मिला था वो बम्बई की दीवारों पर पेंटिंग करने का काम, 35 रुपये का खाना, 35 रुपये उनको मजदूरी मिलती थी और एक वक्त का खाना। चेहरा भी बहुत साधारण लेकिन आवाज, अभिनय, और संवाद से नाना पाटेकर ने ये साबित कर दिया कि अभिनय से इंसान की महानता है, न कि वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, चॉकलेटी टाइप का हो, हीरो हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जब तक मुझे याद आता है वो कोई भी रोल उनको दे दिया जाए तो आज तो पूरी मुंबई शोक में डूबी हुई है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्रांति की बात करते थे, वो मोहब्बत की बात भी करते थे। और यकीन मानिए जो मोहब्बत के संवाद उन्होंने बोल दिए हैं, एक ऐसा संवाद मुझको याद आ रहा है, मैंने एक फिल्म देखी थी और उसका एक संवाद आपको सुनाता हूँ। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। जी हाँ, आप इस पंक्ति को अगर नाना पाटेकर की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, अमिताभ बच्चन को हमने उस दृश्य में देखा जहाँ पर वो बात कर रहे हैं देशभक्ति की, आंदोलन की, और यहाँ बात हो रही है मोहब्बत की। आइए, मोहब्बत के पर्दे पल्ले चलते हैं नाना पाटेकर को और आपको उनका संवाद सुनाते हैं। उम्मीद है उनका ये संवाद आपके दिल को छुएगा। जी हाँ, मोहब्बत वही जो रूह में उतर जाए, और देखिए ये रूह में उतरने वाला डायलॉग किस तरह से निभाया है नाना पाटेकर ने।
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। ए, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां है ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो, तकता हूँ मैं हर पल जिसे तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या है? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला।
1: अरे क्यों है तुझ पर सर, ये आप एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है।
2: मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा।
1: अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है, ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी।
0: अरे चुपकार चुपकार, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको, अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने, बचाओ बचाओ कौन आएगा। अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको, अरे वो डंडा उठा फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई।

0: मुझे, मुझे बेचना चाहती थी।
1: मुझे क्या? अरे मुझे
0: बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी।
1: हाँ, मैं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे।
0: अरे कहाँ छोड़ोगे?
2: देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो।
3: अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात एक होने पे तेरा

दो अंदाज में आपने नाना पाटेकर को देखा, एक जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एक प्रेमी है। इतनी कशिश है उन पंक्तियों में, मुझे माफ करेंगे लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि शायद तुम जिंदगी तुम बंदगी, जिस एहसास के साथ नाना पाटेकर ने वो संवाद अदायगी की, मुझे लगता है कि ये किसी साधारण अभिनय करने वाले के बस की बात नहीं हो सकती। एक रूप जो आपने देखा उनका माधुरी दीक्षित के साथ, और दूसरा वो क्रांतिवीर का सीन जिसकी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। ये आवाज, अब जितनी बातें इन्होंने की हैं, जितनी बातें कही हैं, वो हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी वादियों में। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि शायद अब हम पुनः किसी नई आवाज को, उनके किसी नए संवाद को नहीं सुन पाएंगे। ये थोड़ा सा अफसोस रहेगा, लेकिन विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु तू जीव निसंक, तो वो तो वहां पर आकर प्रत्येक व्यक्ति हारता है। और आइए अब आपको ले चलते हैं बहुत ही प्यारी सी फिल्म उनकी, और उस फिल्म की का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जो मुझे बेहद पसंद है। मतलब अमिताभ बच्चन पर जितने भी गीत बनाए गए, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे अच्छा गीत आपको कौन सा लगता है, तो मैं कहता हूं कि उनकी एक फिल्म आई थी गुलामे मुस्तफा 1997 में, और कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ हरिहरन ने आवाज दी थी इस प्यारे से गीत को। पर्दे पर नाना पाटेकर के साथ रवीना टंडन है, और इस नगमे को सुनकर कहीं ना कहीं जो कोने में उदास बैठा हुआ दिल है वो थोड़ा सा हरा हो जाता है। जी हाँ, आइए अब हमने आपको उनकी संवाद अदायगी से रूबरू कराया, परिचित कराया, और अब उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम गुलामे मुस्तफा, पर्दे पर नाना पाटेकर जी के साथ रवीना टंडन, बैकग्राउंड से आवाज है कविता कृष्णमूर्ति के साथ हरिहरन की। सुनते रहिए, और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुकी है हमारे और आपके दिल की धड़कन। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

रुकिए,

0: अरे गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अस्सलाम वालेकुम।
1: क्या हो रहा है मुस्तफा?
0: कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब है।
1: जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो?
0: मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद।
1: जा बेटे गाड़ी ले जा मेरी।
0: नहीं अब्बा ठीक है, हम चले जाएंगे।
1: मुस्तफा अब्बा का हर लफ्ज़
0: सर आंखों पर। अब्बा
1: जा बेटे जा। और सुन, इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा

निसंदेह है। जिंदगी का जो सफर होता है वो न कोई जान पाता है, न कोई इसकी हकीकत जानता है, न असलियत जानता है। जी हाँ, हमारे साथ भाई कमल नैन जी भी हैं। कमल नैन जी प्रणाम करते हैं आपको। पप्पू जी हैं भाई हमारे साथ जी, नमस्कार आपको भी। जेके शाह जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या आदाब करते हैं। और आशुम शाह जी का सर जी बहुत अच्छे दिन गए, नाना पाटेकर जी को उनको मोक्ष की प्राप्ति मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सही कहा आपने। और गुनगुन जी हमारे साथ हैं भाई, और नेहा जी भी आ चुकी हैं। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ भाई अरविंद जी भी हैं, जी हाँ प्रणाम करते हैं आपको। और अब आगे की फरमाइश के लिए भाई अब तो गोंडा मैसेज मसाला का समय हो रहा है समाप्त।

तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: Action! Bow!
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

जब जब भोजपुरी लोक संगीत की बात होला तो कुछ ऐसा गीत जौन की हमन के भोजपुरी लोक संगीत के अमर गीत बड़सन, जौना कि आज भी सुनल जाए तो ही पुरान जमाना, पुरान मिठास, पुरान भाव याद हो जाला। ऐसा एगो गीत और कई गीत लेके आपके सामने आज हम बैठब। सबसे पहले एगो गीत की झुलनी के रंग साँचा हमार पिया, लिखे वाला कोने कोने भाव में लिखले बाटे, कोने कोने भाव में लोगों के समझत बड़ा। मानव शरीर के विषय में कितनी सुंदर बात कितनी तरह से बढ़िया ढंग से कहल गई बाटे, ध्यान देब जा थोड़ा सा।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281-976-9860। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

तो सभी का स्वागत है बहारे गजल में आरजे बीना के साथ। आज आपकी शाम महकाने और आपके साथ कुछ अल्फाज फरमाने, आरजे बीना आपके साथ है आपके शो बहारे गजल में। जी हाँ, जहाँ गजलों की धुन पे यादों के तराने पलते हैं, जहाँ गजलों की धुन पे यादों के तराने पलते हैं, सुना है वहाँ बड़े सारे टूटे दिल मिलते हैं। टूटे दिलों का क्या कहिएगा, टूटे दिलों का क्या कहिएगा, हर शाम एक उम्र सी गुजरती है। टूटे दिलों का क्या कहिएगा, हर शाम एक उम्र सी गुजरती है, रह रह के मन में एक अधूरी आस पलती है, रह रह के मन में एक अधूरी आस पलती है, सोचता है दिल हर दफा दफा दर दफा, सोचता है दिल हर दफा दफा दर दफा, क्या ये दर्द कम होगा किसी दफा, पर मुंह मांगी हर मुराद कहाँ मिलती है, हर शाम एक आस पलती है, हर शाम एक आस पलती है। तो चलिए एक गजल सुनाती हूँ।

तो ये मेरे लिसनर्स के लिए था, आप लोग जहाँ भी हैं, चाहे कोई महाराष्ट्र में है, चाहे कोई दिल्ली में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, कोई पंजाब में है, कोई तेलंगाना में है, कोई सिक्किम में है, कोई असम में है, कोई कश्मीर में है, कोई आंध्र प्रदेश में है, हर उस शहर में जहाँ ये धड़कन बज रही है, उन सभी के लिए ये पंक्तियाँ थी, अंतिम पंक्तियाँ मेरे बिहाफ से, कि

तो भाई ये शाम अल्फाजों की शाम है, तो मैं चाहती हूँ ये शाम अधूरी ना रहे अल्फाजों के बिना। आज मैं हर नाम के साथ कुछ ऐसा पढ़ूँ जो अधूरेपन को पूरा करे। कहने को तो ऐसी बहुत सारी गज़लें हैं जो दिल के दर्द को बयां करती हैं। गज़लें तभी लिखी जाती हैं जब दिल टूट जाता है। हर टूटे एहसास को पिरोने का एक ज़रिया है गज़ल। और आज दिल सच में सबका टूटा होगा। एक वो शख्सियत जिसने देश भर को अलग अलग रूप में एंटरटेन किया है, हर अंदाज में देश को मनोरंजन की दुनिया तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जन्मे नाना पाटेकर अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हुए कभी उन्होंने गिवअप नहीं किया। एक दफ़ा वो तिरंगा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 6 महीने मिलिट्री से ट्रेनिंग ली थी। मिलिट्री से ट्रेनिंग लेने के बाद एक बार सरहद पे युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध छिड़ने के बाद ऐलान हुआ कि सिविलियंस को भी इस युद्ध में अगर हिस्सा लेना है, देश को बचाने के लिए आगे आना है, वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं। क्योंकि इस 6 महीने उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली थी, वो एक बार नहीं सकुचाए, वो सरहद पे जाके सीना तान के खड़े हो गए कि देश की रक्षा के लिए मुझसे बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ट्रेनिंग ले रखी है। तो ऐसे व्यक्तित्व को खोना बहुत कुछ खोने जैसा है। दिल अधूरेपन में है आज। शब्द बहुत है कहने को, पर किसी की याद दिलाते हैं। तो चलिए एक गाना जो एक दर्द को बयां करता है, नाना पाटेकर के नाम, जिन्होंने हमें वो दौर दिया जिसे हम सभी जीना चाहते थे। और मैं चाहूँगी आज आपके नाम के साथ कुछ पंक्तियाँ पढ़ने को मिलें, जैसे जेके शाह जी ने लिखा है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। क्या बात!

0: सुश्रोताओं, आप सभी के साथ आज की शाम बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। हमारे साथ सविता जी हैं। शुभ संध्या, कैसी हैं सविता जी? स्वागत है आपका। आज ये जो गज़ल आप सुन रहे हैं, ये गज़ल नहीं है मात्र, इस गज़ल को मैंने फिल्म गुलामे मुस्तफ़ा से लिया है। आवाज़ है अफजल इकबाल की और इसकी लिरिक्स है आनंद बख्शी की। बताना चाहूँगी बतौर ख़ास इसमें अपने लीड एक्टर के तौर पे काम करते नाना पाटेकर आपको दिखेंगे, अगर आपने फिल्म देखी होगी। और इसके साथ इनकी हमनवा बनी है रवीना टंडन।
1: मुबारक तुझे हमनवा मिल गया।
0: तो सुन के बताइएगा ये कैसा है गीत। खास तौर पे किसी को याद करने का अगर जरिया हो तो हम उसकी यादों पे ही अपने छाप छोड़ के उसे अच्छा ट्रिब्यूट दे

तुम्हारा चेहरा चरागों पे कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आंखों पे कौन रखता है, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। ये अपने बच्चों के पहले खिला के खाते हैं, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी, इन्हीं मिसरों की तह में है गजल की रोशनी, हमारे दिल का सारा गम हमारी शायरी में है। गरीबी, भूख, ठोकर और फिर दौलत भी है, कहानी में जो होता है वही जिंदगी में है। बहुत सजने सवरने की जरूरत लड़कियों को क्या है कि सच्चा रूप शोखी में नहीं सादगी में है। और अगर किसी को अपने को बुलाना हो तो एक ऐसी गजल है जिसे आप पढ़कर किसी को भी बुला सकते हैं। अक्सर ये गजल इस शाम की शान हुआ करती थी। सुनिएगा।

भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। अक्सर जब दिलों में रंजिशें होती हैं और हम उन रंजिशों को जब मिटाना नहीं चाहते,

और अब मैं एक अधूरे रिश्ते की बात करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार रिश्ता पूरा हो गया है, वो फीलिंग नहीं रही। अच्छा, वो फीलिंग जाती कहाँ है वो तो हम सभी को पता होगी। कहते हैं कि

दोनों का प्यार एक जैसा ही है। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भी ला दूं अगर तुम कहो। अगले मतले अक्सर हम लोग दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, पर मैं सच्ची बताऊं क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी में कमियां निकाल रहे हैं, किसी को बुरा भला कहने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप कहेंगे अरे आरजे बीना ये कैसी आप बात कर रही हैं, ध्यान से सुनिए।

अच्छा भला कहना एक जज्बे की बात है, इंसानियत की बात है। किसी की कमियों को बताना ये इंसानियत की बात है, लेकिन सच कहूँ तो किसी की कमियों को उसी इंसान को बताना जिसके अंदर वो कमी है, ये इंसानियत की बात है। लेकिन किसी की कमियों को किसी और के सामने गिनाना ये इंसानियत की बात नहीं जनाब। अगर हमें लगता है कि सामने वाले में कुछ कमी है, तो हमें लगता है कि हम अगर उसे बताएंगे तो शायद वो कमी उसकी दूर हो जाएगी। अगर हम उसके हित में बात करना चाहते हैं, अगर हम उसके हितैषी हैं, तो अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो अगर हम उसके सलामती की, उसकी बेहतरी की कामना करते हैं, तो क्या कहते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे आगे गौर फरमाइएगा।

कहो। अक्सर इस कविता की ये पसंदीदा पंक्तियों में से एक रही है। जब भी मैं ये पढ़ती थी तो मेरे लिसनर्स मुझे ये हमेशा कहते थे, ये वाली लाइन बड़ी अच्छी है। अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते, लोग कमियां बहुत निकालते हैं, तो उनके लिए ये लाइन्स ध्यान से सुनिएगा कि दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी

कहो, आखिरी मतले इस गजल के कि अक्सर हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं। वो डिस्टेंस जानते हैं कहाँ होता है? वो हमारे दिमाग में होता है। और अगर उस डिस्टेंस को दिमाग से हटा के एक पॉजिटिव दुनिया को हम शुरू करें तो शायद दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हमें लगती है। एंड सच बताऊँ, नेगेटिव थॉट्स हमेशा नेगेटिविटी को बुलाते हैं। आपने भी देखा होगा कि साफ पानी ही गंदे पानी की गंदगी दूर कर सकता है, तो नेगेटिविटी को एक अच्छी सोच से ही दूर किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा ये पंक्तियाँ सभी के लिए।

सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग हर चीज़ बताना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो चीज़ें हम बताना भूल जाते हैं जो हमें बतानी चाहिए, और जो नहीं बतानी चाहिए एक झूठी दुनिया बना के हम दूसरों के सामने पेश करते हैं।

जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, मतलब पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो सामने वाले को उसके बारे में कुछ अच्छा भी बताओ। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूँ।

बिछा दूं अगर तुम कहो। बहुत दिनों बाद मुझे मेरी शाम मिली है, तो मैं आज अपनी पसंदीदा हर वो पंक्ति पढ़ूंगी जिससे मैं आप लोगों के दिल तक पहुंच पाती थी। और एक बड़ी अच्छी सी है गज़ल, वैसे फिल्मी गज़लें तो हम लोग सुनते रहते हैं, पर कुछ ऐसी हैं जिनको सुन के बहुत अच्छा सा लगता है। कहते हैं गज़लें शांति में सुनो तो बड़ा अच्छा सा लगता है, टूटे दिलों की लिखी हुई गज़लें और बेहतरीन होती है। पर मुझे ऐसा लगता है गज़लें सुन के इंसान को जितनी भी ज़िंदगी की मतलब भसड़ है, भाग दौड़ है, उन सब से शांति मिलती है। तो चलिए एक और पढ़ती हूँ आप लोग के लिए। एक बड़ी प्यारी सी कविता है जिसको पढ़ना मुझे बड़ा पसंद है, उसके अल्फाज बड़े अच्छे हैं, आप लोग रिलेट करेंगे। मतलब रिलेट क्या करेंगे, वो ऐसी है ना जो मतलब कहते हैं ना कि जिसको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। आज़म शाकरी की ये कविता बड़ी प्यारी सी है, जब भी आप इसको पढ़ने का सोचेंगे आपके मन में एक अलग सी सिहरन सी होगी, सुनेंगे तो भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ठंडक का मौसम भी शुरू हो गया तो ये कविता डेडिकेट बनना तो बनता है बॉस। कि बस पानी में हलचल थी, आँख से मछली

तो चलिए एक और कविता पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, बड़ी प्यारी सी कविता है। आई होप ये कविता भी आपके दिल तक जाएगी और मन तो कर रहा है कि बहुत सारी कविताएं आप लोग के लिए निकाल निकाल के लाऊं, लेकिन टाइम की कमी और शाम भी कहती ना कि गवाही नहीं देती, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। तो गौर फरमाइएगा अंतिम मतले इस प्यारी सी शाम के।

कि मोहब्बतों के दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ ना मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। तमाम रिश्ते को मैं घर पे छोड़ आई थी, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आई थी, फिर उसके बाद कोई अजनबी ना मिला, फिर उसके बाद कोई अजनबी ना मिला। खुद की इतनी बड़ी कायनात में मैंने, खुद की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वो भी ना मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा पर फिर वो मुझे ना मिला, वो मेरे साथ रहा फिर वो मुझे ना मिला। तो अब समय है इस शाम से अलविदा लेने का। कहते हैं कि अगर शाम शुगफ्ता करनी हो तो अपनों के साथ बैठो, दिल के दर्द बांटने हो तो अपनों के साथ बैठो। वक्त दर वक्त सब बदल जाते हैं, पर गम में मिले साथी हमेशा साथ निभाते हैं, गम में मिले साथी हमेशा साथ निभाते हैं। गज़ल गायकी, गज़ल पढ़ना, गज़ल लिखना, ये तीनों ही हुनर उसी को आते हैं जिसने ज़िंदगी को करीब से देखा है। तो आज की शाम को यहीं पे विराम लगाते हुए मैं आरजे बीना आप लोगों से विदाई लेती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि अश्क रवा की नहर है और हम हैं दोस्तों, अश्क रवा की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। अब इरशाद इरशाद करके ही चैट रूम में जाइएगा कि अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, ये अजनबी सी मंजिलें और रफंगा की याद, ये अजनबी सी मंजिलें और रफंगा की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। लाई है अब उड़ा के गए मौसमों की बस, लाई है उड़ा के गए मौसमों की बस, बरखा की रुत का कहर है और हम हैं दोस्तों। फिरते हैं मिसले मौजे हुआ शहर शहर में, फिरते हैं मिसले मौजे हुआ शहर शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। शाम आलम ढली तो चली दर्द की हवा, शाम आलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों की पिछली पहर है और हम हैं दोस्तों, रातों की पिछली पहर है और हम हैं दोस्तों। आँखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, आँखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत सराए दहर है और हम हैं दोस्तों, इबरत सराए दहर है और हम हैं दोस्तों। इसी के साथ इन शब्दों को विराम लगाते हुए अलविदा कहती हूँ दोस्तों, अलविदा कहती हूँ दोस्तों।